107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 23 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कवि बर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जुगाड़ों के नायक हैं, स्वामी हैं और जिनका मुख सुंदर हाथी के जैसा है, वे बुद्धि के सागर और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये संसार प्रभु ने कर्म की प्रधानता करके रचा है, जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल प्राप्त करेगा, अर्थात जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। इसी धारणा से अपने कर्म सदैव न्याय संगत रखिए और न्याय देवता शनिदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस कलयुग में मात्र दया ही धर्म का आधार है और सभी पापों का आधार अभिमान है, इसलिए स्वयं को प्रभु का दास मानकर उसके बनाए जीव संसार की सेवा दया कीजिए, आपका जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा।

अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देख्यो चाहती कमल नैन को, निस दिन रहती उदासी, निस दिन रहती उदासी। सांसारिक दृष्टि से जो नेत्रहीन थे सूरदास, उनके पदों ने, उनकी रचनाओं ने इस संसार को हरि के सबसे मनोहर दर्शन करा दिए। उनके नैनों को जो सुख प्राप्त हुआ, वह हमारी कल्पना, हमारी भावनाओं, हमारी आकांक्षाओं के परे है।

सर्वे मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार के कल्याण करने वाली हमारी माँ हे कल्याणमयी, हमारे सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है हे तीनों लोक की देवी गौरी, हमें अपनी शरण के योग्य बनाए। नारायण की शक्ति हो आप, हम भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें।

सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहें, जहां सुमति तहां संपति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना। पुराण और वेदों में ऐसा कहा गया है कि सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि और कुमति अर्थात बुरी बुद्धि सभी के हृदय में रहती है। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की सुख संपत्तियां वास करती हैं, और जहां कुमति होती है वहां अंत में विपत्ति ही हाथ लगती है। इसीलिए सदैव प्रयास करें कि आप अपने जीवन में सुमति से हर कार्य करें, ताकि सदा ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।

तुलसी भरोसो राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। अर्थात ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर निडर रहना चाहिए। जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, और जो होना निश्चित है उसे कोई टाल भी नहीं सकता। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य सदैव करना चाहिए।

जीवन में जब हम अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन में सारा बोझ हट जाता है। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही है वह ईश्वर आपको सही समय पर अवश्य देंगे।

3000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर वह आयोजन को संबोधित भी करेंगे। इस रोजगार मेले का आयोजन राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों में चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। जनगणना 2027 के तहत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी विशेष रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल और झांसी किले को भी जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की भी गणना की गई है। इससे पहले 7 से 21 मई तक चली स्वगणना की प्रक्रिया में लगभग 47,96,000 परिवारों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBI ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा और प्रयागराज 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म जिले बने रहे, जबकि आगरा, झांसी, उरई और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51

उसकी अहमियत क्या है बताना भी जरूरी है, है इश्क अगर तो जताना भी जरूरी है। अब काम अल्फाजों से कब तक चलाओगे, अब काम अल्फाजों से कब तक चलाओगे, उसकी झील सी आंखों में डूब जाना भी जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आकांक्षा इस्तकबाल करती है आपका प्रोग्राम सदाबहार गीतों में, जिसमें हम गुनगुनाएंगे बेहतरीन गीत और बेहतरीन बातों के साथ। आज मैं हूं आपके साथ, तो बस कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कुछ लाइंस इतनी बेहतरीन होती है ना कि वो हमें बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं। थोड़ी सी होप, और आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन चल रही है कि होप है तो स्कोप है। बिल्कुल, थोड़ी सी आस, अगर बहुत ढेर सारी नेगेटिविटी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, और उसमें थोड़ी सी आपके पास उम्मीद हो कि नहीं हम कर लेंगे, वो उम्मीद आपके दिल की हिम्मत बन जाती है, और फिर आपका दिल कह देता है कि ये सुनिए।

इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ।

भाग में या फिर आसपास भंवरे गूंजते हैं, गुनगुनाते हैं या दिखते हैं आपको, तो आपको फिर उम्मीद होती है कि भाई यहीं कहीं आसपास बहुत सुंदर सा बगीचा है, बहुत सुंदर से फूल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सब बरकरार रखना, बनाए रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। बेशक हम बहुत सी चीज़ों से अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो निस्वार्थ होकर, जो एकदम बिना कुछ सोच के आपको सब कुछ देती है, वो है आपकी कुदरत। तो कोशिश करिए कि आप उससे भी प्यार करें, क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है, कितनी खूबसूरत है कुदरत इस जहां की, ख्याल सबका बेमिसाल रखती है, जुनून और मंजिल के लिए दिन की तपिश, गम और सुकून के लिए तारों की महफिल सजती है।

जी हाँ बिल्कुल, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के लिए कुछ लोग साथ देते हैं ना, जहाँ पर आप एकदम कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पर ये एहसास या ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लेकिन अक्सर हमें ऐसा लगता है कि लाइफ अपने हिसाब से चलती है, सब कुछ पहले से तय है और हार कर हम अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो। मगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक आपका कुछ ऐसा है कि आप जो कुछ भी चुनते हैं, जैसी थॉट चुनते हैं, जैसा एटीट्यूड चुनते हैं, मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, वही चीज़ आपके पास आती है। जैसे आपने मैग्नेट का रूल पढ़ा है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, उसी तरह से अगर आप जैसा एटीट्यूड रखते हैं, आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो वही हो जाता है और वही रिजल्ट आपको मिलता है। तब आप कहते हैं कि देखा, मैंने यही सोचा था और यही हो गया। तो मानिए ना कि आपने ऐसा सोचा था इसलिए ऐसा हो गया, फिर किसी और को क्यों कोसना। और एक बात ये भी बहुत सटीक है कि कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में लिए गए फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बस अगर अपनी जिंदगी के फासले कम करने हो तो फैसलों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अहमियत दीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है, अब चाहे उम्र वो कोई भी हो।

जी हाँ, इस गीत के साथ आपकी बहुत सी यादें, बहुत सी बातें जुड़ गई होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से, जी हाँ, अपनी ज़िंदगी के उन चुनिंदा लोगों से बस हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि बस वो हमारी ओर मुड़ कर देख लें या फिर उनका दीदार धो जाए। आज का तो अलग ही प्रॉस्पेक्ट है पूरा, लोगों के तरीके का, लोगों की फीलिंग्स की बातों का बहुत जल्दी जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं। लेकिन पहले पहले के टाइम पर, जिस दौर के हम गीत बजा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा होता था कि बस थोड़ा सा दीदार हो जाए मेरी तरफ, अगर वो इंसान मुड़कर भी देख ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ, और इसी में उनका दिन खूबसूरत हो जाता है। तो बस यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने वक्त को खूबसूरत बनाती हैं, और आपकी ये छोटे से एहसास आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं।

जी हाँ, इस गीत को सुनकर आपको ये लगा ना कि इस गीत में जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। फीलिंग्स कुछ ऐसी ही होती हैं कि वो अपने आप जाहिर हो जाती है, उन्हें कहने की या फिर स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गुस्सा हैं तो आपके चेहरे से पता चल जाता है, आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आपकी आंखों से पता चल जाता है, और ऐसी बहुत सी बातें जो फीलिंग्स बिना जुबां के बता देती हैं। और इसी पर क्या खूब किसी ने लिखा है कि ना आए तो खलिश सी उठती है, आए तो खलिश और भी जवां होती है, बात दिल की आंखों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है।

जाने किस शय के इंतजार में हैं हम, ना रास्ते में हैं ना गुबार में हैं। जाने किस शय के इंतजार में हैं हम, ना रास्ते में हैं ना गुबार में हैं। इतनी तेजी न कर मोहब्बत में, लोग मुद्दत से इस कतार में हैं। अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को आप इतना अच्छा बनाइए कि आपका दुश्मन भी कहे, कुछ पॉइंट्स पर कह दे कि यार नहीं, वो शख्स, वो इंसान इन मामलों में तो अच्छा था। कुछ यही लाइंस आपसे कहती हैं, और शायद मोहब्बत, प्यार इसी को कहते हैं जो सबका दिल जीत ले।

और भाई मोहब्बत इसको भी कहते हैं. देखिए आपके मेल्स हमारे पास आ गए हैं. मनोज विश्वकर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, स्पेशली पुष्पांजलि आपको अच्छा लगा. ग्राम ताराशिव से आप हमें मेल कर रहे हैं. बबीता राव, थैंक यू सो मच, बहुत कलरफुल मेल किया है आपने. और पुष्पांजलि सदाबहार गीत सुनने के लिए थैंक यू सो मच, फेवरेट है आपका, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए. मोनू सेठ जी, गुड मॉर्निंग आपको भी. और हाँ, जेएमएल में कौन रहेगा, उनका नाम भी ले लिया है. जी हाँ, अंजू जी रहेंगी हमारे साथ. तो बस इंतज़ार करते हैं हम आपका प्रोग्राम जेएमएल में. थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए. और हाँ, 7:57 और ये वक्त कह रहा है कि आकांक्षा को सदाबहार गीत से दीजिए अनुमति. 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. और हाँ, 8:15 पर अपने दोस्त के साथ होंगे हम प्रोग्राम लेकर. गुड मॉर्निंग लखनऊ.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट यूसीसी

0: mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी, जो

0: है आपका ज्ञान, जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जवाब तो था मेरे पास उसके हर सवाल का, मगर खामोश रहकर मैंने उसे लाजवाब कर दिया।
1: जी हाँ बहरहाल, लेकिन यहाँ पर खामोश नहीं रहना है, और आवाज से आप पहचान गए होंगे कि क्या तोहफा आया है आपके लिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। अंजू आए हमारे साथ और आकांक्षा तो सुबह से ही है आपके साथ।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100.7 एफएम रेनबो पर। आपने ट्यून किया है आपका अपना पसंदीदा चैनल एफएम रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की। देश दुनिया कहीं पे भी आप हमें सुन रहे हैं, आप सबको प्यार भरा नमस्कार आदाब, और ये है प्रोग्राम है आपका अपना, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ। स्टे ट्यून्ड।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
0: दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
2: जी हाँ, 8:21 और इस पूरे प्रोग्राम को एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए, आप तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाने के लिए आज का मॉर्निंग मंत्रा है हाजिर।
3: जी हाँ, आज का मॉर्निंग मंत्रा आपसे कहता है कि रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। जी हाँ, क्योंकि तेज चलने वाले कई बार थक जाते हैं, लेकिन लगातार चलने वाले इतिहास बना जाते हैं। और कहते हैं ना कि धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। तो रुकना नहीं है,
2: चलते रहना है। और एक बात कही जाती है ना, कंसिस्टेंसी किसी चीज की, उसको जरूर से जरूर सक्सेसफुल बनाती है।
3: बिल्कुल। तो सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, हम लोग लगातार आपके साथ बने रहते हैं और इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते हैं। देखिए, सुबह 6 से रात 12 बजे तक, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट साथ में इन्फॉर्मेशन, यानी फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज हमारे पास रहता है। रेडी, स्टे ट्यून्ड।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
3: 8:27 का वक्त हो गया। 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है आपने और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। अंजू और आकांक्षा हैं आपके साथ।
4: जी हाँ।
3: और अगर आज के दिन की बात कर लेते हैं आकांक्षा, तो आज विश्व कछुआ दिवस है और इसी से जुड़ी एक बचपन की मशहूर कहानी तो याद ही है ना।
4: बिल्कुल। और जब भी कछुए की बात होती है तो दिमाग में जैसे ही आपने कछुआ बोला ना, तो पूरी कहानी एक सीन आ गया, उसका पोस्टर आ गया कि कैसे खरगोश भागता हुआ एक नैप ले रहा है और कछुआ धीरे धीरे चल रहा है,
3: पेड़ के नीचे सो जाता है खरगोश, है ना। चित्र बना हुआ था हमारी किताब में।
4: बिल्कुल।
3: और कछुआ धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। तो भाई विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे है और उसके बारे में तो हम आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे ही कि ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है और क्या उद्देश्य है। लेकिन जब ये इस कहानी का जिक्र किया है आकांक्षा ने, तो जब कहते हैं ना कि सबको वैसे मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको शॉर्ट में हम ये बताएंगे कि एक खरगोश था जो अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था और एक कछुआ था जो धीरे धीरे चलता था लेकिन लगातार चलता था। और दौड़ शुरू हुई, दोनों में रेस हुई। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, वो धीरे धीरे आ रहा है, और खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़कर काफी दूरी तय कर ली थी और उसने सोचा कि बस अब तो मंजिल बहुत नजदीक है, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और वही आराम उसकी हार बन गया। धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया और जीत गया।
4: बिल्कुल अंजू, लेकिन हमने वो जो कहानी पढ़ी थी उस दौर के लोग भी कुछ वैसा ही एटीट्यूड रखते थे, बहुत शांत से रहते थे, धैर्य रखते थे, हर काम करते जरूर थे धीरे धीरे ही सही, और अगर कुछ ठान लिया तो उसे भले एक बार नहीं सफल हुआ लेकिन दोबारा कोशिश करते करते करते जरूर थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है।
3: कैसे
4: भाई? रफ्तार की दुनिया है, टेक्नोलॉजी, आप फटाफट मैसेजेस भेजते हैं, फटाफट बात करना चाहते हैं, बहुत से काम है जो आप फटाफट चाहते हैं। तो वैसे तो कहें कि यहाँ पे खरगोश हमें सही लगता है आज की सिचुएशन के हिसाब से।
3: अच्छा। लेकिन अगर और लोगों की सोच, बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि खरगोश तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कछुआ भी कहीं गलत नहीं था, कछुआ भी सही था।
4: बिल्कुल।
3: धीरे धीरे चल रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, लगातार आप किसी काम को करते रहे वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि बस स्पीड में आपने आधे से ज्यादा काम निपटा लिया और फिर बैठ गए शांत।
4: तो क्या बात है, आज तो दो थॉट्स भाई क्लैश कर रही है। क्योंकि पहले तो कह दिया जाता था कि भाई खरगोश देखो हार गया क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ा, उसमें धैर्य नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर दोनों थॉट क्लैश कर रही हैं। हमें लग रहा है भाई खरगोश भी कहीं कहीं सही है और कछुआ भी कहीं कहीं सही है।
3: तो चलिए देखते हैं कि हमारे श्रोता क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार है, तो फिर जोड़ लेते हैं इसी इसको आज के मुद्दे से।
4: बिल्कुल।
5: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
3: जी भाई, आज विश्व कछुआ दिवस है, तो जैसे ही इस दिन का जिक्र हुआ हमें खरगोश और चूहा नहीं, खरगोश और कछुए की कहानी याद आ गई और उसने हमें बहुत कुछ आज के जमाने के हिसाब से सिखाया और हमसे पूछा भी, है ना। पूछा ये कि क्या आज की तेज भागती जिंदगी में आपको लगता है कि कछुए वाली सोच सही है, यानी धैर्य, निरंतरता, स्थिरता, लगातार आप काम करते रहिए पेशेंस के साथ, सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल

0: में मिलेगी, या फिर खरगोश जैसी तेज रफ्तार आज की नीड है, जरूरत है।
1: बिल्कुल, और इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं आप किसके पक्ष में हैं, इसके बारे में हमें बताना है आपको आज के मुद्दे में। और साथ ही साथ अपना रीजन जरूर लिखिएगा कि भाई आपको कौन सी जिंदगी, कौन सी स्टोरी का जो पक्ष है वो ज्यादा सही लगता है आज के परिदृश्य के हिसाब से। तो हमें
0: लेकिन जानते हो आकांक्षा, मुझे लगा कि खरगोश लापरवाह भी बहुत था, सो गया तो सो गया
1: सो गया, एक नैप होता है ना कि कहीं
0: एक पावर नैप है ना, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए एक पावर नैप लेना भी जरूरी है ना, ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन लापरवाही करते ही बर्दाश्त नहीं है ना।
1: वो सारी बातें और भी बहुत सी बातें यहाँ से
0: अभी तो निकलेंगे। अभी तो देखिए आप किसको पसंद करते हैं, कछुए को या खरगोश को, जल्दी से आइए और बताइए हमें fmakashwani@gmail.com पर। आज का मुद्दा है कि कछुए और खरगोश वाली कहानी से आप कितना सहमत हैं, कि क्या सीखते हैं आप, कछुए की सोच रखते हैं जिंदगी में के लिए जरूरी है, या फिर आज के जीवन के लिए आज के दौर को देखते हुए खरगोश वाली सोच और तेजी यानी रफ्तार ज्यादा जरूरी है। हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: जी 8:36 और ये वक्त है कि आपको खबर में ये बताया जाए कि आपके शहर में आज क्या क्या खास है, क्या सुंदर सुंदर आयोजन होने वाले हैं जहाँ का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर आयोजन है साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नव परिमल का स्थापना दिवस एवं लोकार्पण समारोह है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या खास बिंदु है, आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: जी, और इस आयोजन की जानकारी, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काव्यश्री राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश जी, अध्यक्ष नव परिमल संस्था के। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
2: नमस्कार
1: सर, नव परिमल संस्था के विषय में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए और आज इसका स्थापना दिवस है, आपको आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। क्या विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: नव परिमल का ये 49वां स्थापना दिवस है। आज 4 वर्ष के अंतराल के बाद संत सिद्धि नाम से पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसके लोकार्पण का दिन भी है। और ये लोकार्पण स्थानीय गोमती नगर में ऐसी जगह हो रहा है जिस स्थान को विशेष रूप से इस रूप में जाना जाता है कि स्मरणीय लोगों की यादगार या संस्थाओं के आयोजन वहां होते रहे हैं। और ये संस्था रोपित तो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, लेकिन वहां से आकर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद होते हुए फिर लखनऊ में स्थापित हुई जी। इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व निदेशक श्री मदन मोहन सिन्हा मनोज
1: जी।
2: मनोज जी आद्योपांत हिंदी के पक्षधर थे, प्रबल पक्षधर थे और कतई उनको ये स्वीकार नहीं था कि हिंदी के साथ भी कोई समझौता किया जा सकता है जी। हिंदी हमारी माँ की तरह है, उसी से हमने बोलना सीखा, हंसना और रोना सीखा, तो हिंदी ही हमारे लिए सब कुछ है
1: जी। बिल्कुल। तो सर, आज स्थापना दिवस के अवसर पर जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका समय और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि इस सम्मान समारोह में, इस समारोह में शामिल हो रहे हैं
2: जी। अतिथि के रूप में हिंदी के एक ऐसे विराट पुरुष को याद किया गया है जो उत्तर भारत में हिंदी में इतनी गहरी पैठ रखने वाला दूसरा कोई नहीं दिखता। आदरणीय प्रोफेसर गुरुवर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी मुख्य अतिथि हैं। पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कुलाधिपति सुशांत विश्वविद्यालय श्री जयशंकर मिश्र जी विशिष्ट अतिथि हैं। निदेशक संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर झा जी विशिष्ट अतिथियों में हैं। श्रीमती सुमोना पांडे जी निदेशक आकाशवाणी केंद्र विशिष्ट अतिथियों में, श्री राजेश अग्रवाल महासचिव कबीर शांति मिशन लखनऊ, ये कबीर शांत मिशन में आयोजन हो रहा है विपुल खंड पंक्ति नगर में
1: जी।
2: प्रमुख अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर विद्यावीर सिंह जी और श्री महेश चंद द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन वक्ताओं में है। हमारे संपादक मंडल में से डॉक्टर कुंवर वीर सिंह मार्तंड जी, डॉक्टर अरुणी चंद त्रिपाठी जी, डॉक्टर अनिल मिश्री जी और संचालक हैं चिरंजीव संजय मोहन जी। तो ये आयोजकों के बीच में आज ये 4 बजे ये लोकार्पण और स्थापना दिवस का आयोजन संपादित होगा
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम के लिए, अग्रिम शुभकामना।

0: आप सभी को. और क्या हमारे जो हिंदी प्रेमी श्रोता है वो भी सम्मिलित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में?
1: जी जी बिल्कुल हो सकते हैं
0: जी. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. जी सर.
1: नव परिमल का अस्तित्व आए आज 49 साल हो रहे हैं. अगला साल इसकी स्वर्ण जयंती का वर्ष होगा. बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस का आयोजन किया जाए
0: जी. तो सर आप जैसे महानुभावों को सुनने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है लखनऊ शहर के वासियों के लिए. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां.
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद. साधुवाद.
0: थैंक यू सो मच सर. नमस्कार सर.
2: जी हाँ दोस्तों, नव परिमल दिवस की स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं. और जैसा कि बोला अंजू ने, अभी इन्होंने बताया हमें कि अगले वर्ष इसका जो स्वर्ण होगी, स्वर्ण इसकी जयंती मनाई जाएगी और हिंदी के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, तो हिंदी का सम्मान बढ़े और हर कोई इससे जुड़ा रहे.
0: बिल्कुल. तो हमारे साथ बात कर रहे थे नव परिमल संस्था के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए थे काव्यश्री राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश जी. उन्होंने बताया इस कार्यक्रम के विषय में. तो जरूर जाइएगा, अगर गोमती नगर के आसपास आप हैं तो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनिए. इस तरह के कार्यक्रम देखने सुनने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है ना.
2: बिल्कुल.
0: तो चलिए एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपको और बहुत सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे. सुंदर ये गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 एफएम रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की.
3: I will tell you a story, but everybody will sing with me.
4: Okay.
3: Ready? Come on. One, two, three, four.

0: अच्छा कोई रोकता है तो रुक जाना चाहिए, नहीं हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आपको कि आगे आगे जो है चालान हो रहा है,
1: हाँ।
0: है ना, आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो दाएं बाएं से निकल जाओ,
1: आगे ऐसी स्थिति है भाई कुछ पड़ा हुआ है कि आप गिर सकते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए।
0: हाँ, रुक जाना चाहिए। वैसे जब आप सफर पर निकले तो कोशिश करेंगे भाई, गर्मी अपने पीक पर है और अगर कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है तो निकलना है तो निकलिए और थोड़ा सुबह ही निकल आइए, सारे काम निपटा आइए या फिर शाम को जाइए, मतलब 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले तो अच्छा, और खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को तो बिल्कुल मत निकलने दीजिए।
1: बिल्कुल, अगर निकलना भी पड़ रहा है तो कुछ चीजें अपने पास इमरजेंसी के लिए जरूर रखिए कि आप हाइड्रेट रहें, इसके लिए पानी रखिए और अपने आप को कवर करके निकले, और बाकी चीजें तो आप खुद ही समझदार हैं और
0: अंदर से अपने आपको आप इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए, अंदर से ठंडा रखिए, कूल रखिए, अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखिए क्योंकि अगले 5 दिनों तक प्रचंड गर्मी और रात में भी लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से।
1: बिल्कुल अंजू, एक टाइम था जब हम लोग शाम को, कितनी भी गर्मी पड़ती हो शाम को हम इवनिंग के टाइम पे मतलब जाते थे और कहते थे चलो अब सुकून आया, हवा चल रही है, कहीं पेड़ की छांव है, बच्चे खेल सकते थे। लेकिन आज के टाइम की जो गर्मी हम देख रहे हैं, जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं, उससे ये एहसास हो रहा है कि आप शाम को क्या, आज सुबह 5 बजे भी ऐसा लग रहा था कि पूरा गर्म है माहौल, कहीं भी फ्रेशनेस नहीं है और एक कहते हैं ना कि मॉर्निंग वाली फीलिंग नहीं आ रही थी,
0: मतलब सुबह होते ही दोपहर हो गई है,
1: दोपहर हो गई,
0: गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो चलो लेकिन क्या किया जाए, ये जो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं, हमेशा हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से आपसे बात करते रहते हैं, इस विषय में अवेयरनेस के लिए जरूर हम बात करते रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए एसी ऑफ कर दीजिए मोहतरमा, जो घर में एसी चल रहा है अभी भी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है लखनऊ की, अगर हम खासतौर पर बात करें तो जिलाधिकारी के ऑर्डर से तो सभी जो बच्चे जिनकी क्लासेस बाकी थी, ड्यू था कुछ सिलेबस वगैरह, खासतौर पर जिनके बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th के, तो उनके ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे स्कूल्स चला रहे हैं और अच्छी बात है कि घर में रहकर बच्चे पढ़ाई करें लेकिन मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ाई ही कर रहे हैं, ये भी देखते रहिएगा,
1: देखते रहिए,
0: कुछ और तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल, और आपकी परेशानी का सबब जैसे कि गर्मी है, उसी तरह से कुछ लोगों की, यानी कि आपको बता दें कि वो बच्चे जिन्होंने CBSE के कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा कि उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और परेशान हो रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो लास्ट डेट है उसको एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया है और इसके साथ आप जो भी आवेदन है आवेदन कर सकते हैं और अपनी कॉपी स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, इसका पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 2 दिन का समय मिल गया है आपको, आप आराम से आज और कल आराम से आप ये टेक्निकल फॉल्ट जो थी वो सुधार दी गई है तो आप आराम से अपनी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स और ज्यादा आने चाहिए थे तो वो आवेदन कर चुके होंगे, तो आज का दिन आपके पास और है और उसके बाद फिर आप जो भी अभी न्यूज में बताया गया उन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाइए, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी जानकारी वहां से मिल ही जाएगी। फिलहाल गर्मी की बात की है हमने और मोनू जी ने कहा अंजू जी अगर नौतपा के बारे में थोड़ी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाए तो खुशी होगी। भाई खुशी किस बात की होगी, नौतपा के विषय में अगर जानकारी देंगे तो मुझे लगता है

0: और ज्यादा सब परेशानी हो जाएंगे. वैसे अब नौदपा जो 9 दिन की बात होती थी वैसा कुछ है नहीं अब तो, मतलब मुझे लगता है कि
1: सारे दिन
0: बहुत भीषण गर्मी से हम त्रस्त होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में. बस कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे. लेकिन पशु पक्षियों का ख्याल रखिए, छत पे पानी डालाइए जो रखा हो कहीं बर्तन मिट्टी का, आपने गमले के नीचे रखिएगा उसको, पेड़ पौधों के नीचे रखिए, छांव में रखिए, और दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार पानी बदल जरूर दीजिएगा.
1: बिल्कुल,
0: वरना वो खोलता हुआ पानी पशु पक्षी भी नहीं पी पाएंगे. और उन अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखिएगा. वैसे अगर इस समय हम कहेंगे नंगे पैर छत पे चले जाओ, मतलब थोड़ी देर बाद, अभी तो फिर भी
1: जब आपने बोला ना कि छत पे जाके पानी रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए, तो अब कई बार होता है कि इंसान भाग जाता है या नहीं चप्पल भी पहना है तब भी इतनी तेज धूप होती है कि ऐसा भागते जैसे लगता है डांस कर रहे हैं.
0: नहीं, मतलब नंगे पैर छत पे भेज दीजिए जिसको डांस नहीं आता है है ना, कपड़े उतार लाओ, कुछ कर लाओ, जाके चिड़ियों को पानी में डालाओ, दाना डालाओ,
1: नंगे पाँव जाओ.
0: हाँ, लेकिन नंगे पैर जाओ फिर क्या होगा है, लोग डांस
1: यही होगा.
0: वैसे आप अगर घर में भी है कुछ भी कर रहे हैं तो डांस वांस कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट अगर एक्सरसाइज नहीं की है तो थोड़ा सा कर लीजिए, है ना. हमने आपके लिए गाना बजा दिया है.

0: हाँ भैया पसीने पसीने यहाँ हो गए होंगे आप लोग डांस वांस करके, तो थोड़ा पानी पी लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, नींबू पानी पीजिए, नीम छाछ पीजिए, नारियल पानी पीजिए, कुछ भी, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। और अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज मुद्दा हमने कुछ इंटरेस्टिंग सा लिया है।
1: जी हाँ, आज क्योंकि हम वर्ल्ड टर्टल डे मना रहे हैं, जिसपे हमने पूछा था कि भाई वो खरगोश और कछुए वाली कहानी आपको याद है, तो कैसे आप किसके पक्ष में है, या तो आप खरगोश की रफ्तार से इम्प्रेस्ड हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई धीमे चलो लेकिन निरंतरता धैर्य बनाए रखो। तो आज के परिपेक्ष से आपको क्या लगता है, इस पर हमने आपसे आपकी राय पूछी थी।
0: और हमारे पास राय तो बहुत सारी आ गई है, मतलब राय राय ही आई है जी इतने सारे ईमेल्स आए हैं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि इन सब मेल्स को हम पढ़ेंगे अपने न्यूज ब्रेक के उस पार। मनीष कुमार जी, आकाश कुमार, महेंद्र दीपन जी, वकील अहमद जी, मोनू जी, कृष्ण कुमार जी, अंजू जी भी आ गई हैं, अच्छा, और शैलेश कुमार जी, सुधन बाबा जी और बबीता राव, बहुत सारे ईमेल्स हैं, आप सबको हम शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले बढ़िया सा गाना, वापस आते हैं समाचार के पत्रों की सुर्खियों के उस पार, सुनते रहिए 100.7 FM।

जी इतने सारे ईमेल्स आए हैं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि इन सब मेल्स को हम पढ़ेंगे अपने न्यूज ब्रेक के उस पार। मनीष कुमार जी, आकाश कुमार, महेंद्र दीपन जी, वकील अहमद जी, मोनू जी, कृष्ण कुमार जी, अंजू जी भी आ गई हैं, अच्छा, और शैलेश कुमार जी, सुधन बाबा जी और बबीता राव, बहुत सारे ईमेल्स हैं, आप सबको हम शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बढ़िया सा गाना, वापस आते हैं समाचार के पत्रों की सुर्खियों के उस पार। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी, नीट मामले में सीबीआई की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की समर्थ और संपन्न परिवार के लोगों को आरक्षण देने को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ी खबरें आज समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी को प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, माँ बाप आईएएस अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत। अमर उजाला लिखता है, संपन्न परिवारों के बच्चे आरक्षण लेते रहे तो इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहा, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत परिवारों को इससे बाहर आना चाहिए। हिंदुस्तान ने भीषण गर्मी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, यूपी गर्मी बिजली कटौती से बेहाल, शहर से लेकर गांव तक बढ़ती मांग से चरमराई आपूर्ति। अमर उजाला लिखता है, बरस रही आग, दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर भारत में, इनमें 26 यूपी के। नवभारत टाइम्स ने खबर पर सुर्खी दी है, 5 दिन प्रचंड गर्मी, रात में भी चलेगी लू। मौसम विभाग का अलर्ट, पछुआ हवाएं बढ़ाएंगी रात का तापमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ईडा क्षेत्र के निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र देने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री के बयान को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, यूपी के विकास के सहयात्री हैं निवेशक। अमृत विचार ने कल मुख्यमंत्री के देवरिया में कार्यक्रम में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री के संबोधन को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, बेटियां सुरक्षित, व्यापारी बेखौफ, मिट्टी में मिले माफिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई

आई की कार्रवाई की खबर को हिंदुस्तान ने हेडलाइन दी है, भौतिक के जाल सवाल लीक करने वाली मनीषा गिरफ्तार। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से जुड़ी खबरें भी आज कई समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अमेरिका ईरान समझौते के बेहद करीब, रिपोर्ट। 24 घंटों में होमबुर्ज से 35 जहाजों को निकलने की मंजूरी मिली। स्वतंत्र भारत ने लिखा है कि होमबुर्ज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में ईरान। हिंदुस्तान ने लिखा है, ईरान अमेरिका समझौते का खाका तैयार, दस्तखत जल्द। इसके अलावा पांचवें छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए बढ़ने की खबर ने भी आज समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। इसी के साथ ये अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: लखनऊ हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
6: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
7: गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आपने ट्यून किया है 100.7 MHz पर। आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं या लाइव रेडियो के माध्यम से कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन रहे हैं, तो आप सबको एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून कहें।
8: बहरहाल देखिए, वक्त के हिसाब से हम कहेंगे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम का भी नाम है, और टेम्परेचर के हिसाब से गुड आफ्टरनून के हिसाब से आप सोच सकते हैं मन में कि गुड आफ्टरनून।
7: चलिए, दिमाग को ठंडा रखिए, गर्मी बहुत है बाहर, दिल और दिमाग को ठंडा रखिए, कूल रहिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब की अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं हम, कल्पना करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, कामना करते हैं।
8: बिल्कुल।
7: और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
8: जी हाँ, आज का मुद्दा हमने पूछा था आपसे कि भाई देखिए, आपको कछुए की चाल पसंद है या खरगोश की चाल पसंद?
7: अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने छत की बात की थी, धूप की बात की थी। मुझे तो लगता है कि इस गर्मी में तपती हुई छत पर या तपती हुई सड़क पर अगर हम कछुए को छोड़ देते हैं तो भी खरगोश बन जाएगा।
8: बेशक भाई, ये तो लॉजिक बनता है कि
7: मजाक अपनी जगह। ऐसे कछुआ इतना प्यारा सा प्राणी है, बहुत ही मतलब क्यूट लगता है कछुआ, टर्टल, और बहुत कुछ सिखाता है हमें। और जो कि कछुआ दिवस मनाया जा रहा है आज, और जब बात करते हैं कछुआ दिवस की तो वो है क्या और क्यों मनाया जाता है, ये आप तक पहुंचाना है बेहद जरूरी। तो उसके विषय में हम बात करते हैं कि जब कछुए की बात आती है ना दोस्तों, तो अब जब हर वर्ष 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू संस्था ने इसकी शुरुआत की थी, और रेस्क्यू शब्द जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य कछुओं और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और जब बात की जाती समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, कितना कुछ समुद्रों में या नदियों में फेंका जाता है, और अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन की वजह बनती है। बहुत सारे जीव जंतु जो समुद्रों में, नदियों में, पानी के अंदर रहते हैं, उनकी प्रजातियां खतरे में है, उन्हीं में से कछुआ भी है। और भारत में विशेष रूप से ओडिशा के तटीय इलाकों में ऑलिव रेडली टर्टल्स के संरक्षण के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, और कछुए को हम लोग पालते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके विषय में ज्यादा जानते नहीं है।
8: बट बहुत देखने में क्यूट लगता है, और एक कहानी ही है जो हमें सब कुछ बताती है उसके बारे में। और मुझे लगता है कि उतना काफी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर जिस हिसाब से चीजें हैं, और हमें लगता है कि अपनी जनरेशन को बहुत कुछ पता होना चाहिए कि किस तरह से एक छोटा सा भी कोई प्राणी हो वो आपके पर्यावरण संतुलन में

0: क्या रोल निभाता है ये आपको पता होना बेहद जरूरी है, और ऐसी कुछ चीजों के लिए ये दिन चुने जाते हैं आपको अवेयर करने के लिए.
1: और जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में टर्टल और टॉर्टोइस दोनों को कछुआ कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि जैविक रूप से इनमें काफी अंतर होता है. और मुख्य अंतर यह है कि टर्टल अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताते हैं, और जबकि टॉर्टोइस पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जीव हैं. और जैसे कि अगर हम बात करें कि समुद्र, झीलों, नदियों में रहते हैं और टॉर्टोइस जमीन पर रहते हैं, केवल नहाने या पानी पीने के लिए वो पानी में जाते हैं. और शारीरिक बनावट में भी इसमें अंतर होता है दोनों में, और आहार की दृष्टि से भी अंतर होता है.
0: क्या बात है. और देखिए ना अंजू, इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि टर्टल के बारे में. और मुद्दा भी आज हमने आपसे यही पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है कि कछुआ की जो चाल है स्लो है, बट एक टाइम पे हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसको आप आज भी मानते हैं या फिर भाई आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अपना आपने माइंड सेट चेंज कर दिया है.
1: और ईमेल्स हमारे पास बहुत सारे आ गए इस मुद्दे पर कि हमारे जो आज के दौर की ज़रूरत है, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में क्या हम कछुए जितना धैर्य रखें लेकिन निरंतरता रखें, कंसिस्टेंसी रखें, तो हम सफल होंगे, या फिर हम खरगोश की तेज़ी यानी रफ्तार को अपनाएं तो हम सफल होंगे. तो ईमेल्स पढ़ें.
0: बिल्कुल, नीलू शर्मा भी कुछ ऐसी बात लिख रही है, गुड मॉर्निंग आपको भी, और कह रही है कि कहानी सुनकर मुझे दो लाइन याद आ गई. समुद्र का घमंड था कि पूरी दुनिया को डुबो सकता हूँ, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई. मेरे अनुभव से अपने हुनर पर, अपने टैलेंट पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए. और ये कछुए की साइड पे है.
1: बिल्कुल सही है, और कछुआ भी कहीं ना कहीं जीतता ही है. और नेक्स्ट मेल किसका है?
0: जी हाँ, अंजू, आप मुझे लग रहा है आपने अपने आप को ही मेल कर दिया.
1: ये दूसरी अंजू है, सिर्फ एक ही अंजू नहीं है दुनिया में
0: जी. ओके, अंजू जी का हमारे पास मेल आया, कह रही है कि खरगोश आलसी था इसलिए हारा, और ना कि रफ्तार की वजह से. और आज की डेट में जो प्राइवेट कंपनीज के वाले लोग होते हैं वो तेज रफ्तार में कामकाज की वजह से आम लोगों की लाइफ वो आसान कर देते हैं, बल्कि जो कछुआ है कि धीमी रफ्तार वालों जैसे हैं कुछ लोग जो बहुत स्लो काम करते हैं, बहुत बार उनको बोलना पड़ता है कि भाई मेरा ये काम कर दीजिए. चाहे कई ऑफिसर्स में अभी ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका पर्पस ये है, कछुआ का रियल पर्पस रफ्तार की तेजी नहीं है, बल्कि कछुआ को लोगों की लाइफ में लक एंड फॉर्च्यून से रिलेटेड होता है. लोगों को इंटेलिजेंसी एंड सर्वाइवल, पानी एंड लैंड में कैसे सर्वाइव करना है ये भी सिखाया जाता है. अच्छा, इन्होंने एक तरह से कहें कि वास्तु से भी जोड़ दिया है, एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ दिया है कछुओं की. भाई कई लोग कछुआ रखते भी हैं, उसकी स्टैचू रखते
1: हैं. बिल्कुल.
0: और जहाँ की इन्होंने तारीफ भी कर दी कि भाई कछुआ और दोनों के पक्ष में है ये, कि आज की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो खरगोश की रफ्तार में काम करती हैं और कछुआ भी अपनी जगह बिल्कुल सही है.
1: बिल्कुल, और खरगोश आलसी भी था थोड़ा सा काम करके फिर आलस आ जाता है, सो जाता है. लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक ये भी है कि अगर हम हमेशा दौड़ते ही रहेंगे या भागते ही रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो स्टेमिना है या हमारा जो शरीर है, जो ताकत है, वो हमारी जवाब दे जाएगी एक ना एक दिन. तो एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है. आलस या लापरवाही गलत है और बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, लेकिन कभी कभी ब्रेक्स जरूरी होते हैं. आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और एक पावर नैप लेना बहुत जरूरी होता है. फिर देखिए, पावर नैप लेके आप वापस आते हैं या म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, कहीं आउटिंग करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, या एक अच्छी सी नींद सो लेते हैं, एक कप चाय ही पी लेते हैं, कॉफी ब्रेक ले लेते हैं, फिर देखिए दोबारा आप नई ऊर्जा और नई रफ्तार के साथ अपना खत्म करते हैं ना.
0: जी हाँ बिल्कुल. और ऐसी मेल्स हमें भेजिए कि आपको भाई किसकी चाल पसंद है, किसकी साइड आप ले रहे हैं आज, क्योंकि आज वर्ल्ड टर्टल डे. तो देखिए, आप जो आपकी स्पीड हो उसके बारे में जरूर बताइएगा.
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए कछुए के पास भी और सिखाने के लिए, और खरगोश के पास भी. आप क्या कुछ सीखते हैं हमें बताइए. 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, और हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो है FMAKASHVANILUCKOW, दैट इज FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com. आपके मेल्स का इंतजार है और भी बहुत कुछ है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए. स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो.

0: बोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 9:14 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ. अंजू और आकांक्षा है आपके साथ और दिन है खास क्योंकि भाई देखिए आपको बहुत ढेर सारी चीजें हमने पहले घंटे में बता दी और जो लोग अभी भी सो रहे हैं जिनके अभी मॉर्निंग नहीं हुई है बल्कि आपको बता दें इतनी तड़कती धूप में भी कैसे सो सकते हैं आप. और अगर आप
1: वो
0: कछुआ मिस कर दें
1: वो कछुआ है तो आराम से सारा काम करते हैं.
0: तो कछुआ बनने का दिन है कि खरगोश बनने का दिन है ये आज आपको मौका मिला है अपनी बात खुलकर रखने का. अगर आप आराम से रहते हैं कि भाई धीरे धीरे करेंगे हमें रफ्तार की तेजी में मत बढ़ाओ तो वो बात भी आप यहाँ पे एकदम मन की बात खुल के बोल सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं बस हड़बड़ी में बहुत तेजी से हमें काम करना है और जल्दी से सब कुछ हासिल कर लेना है तो उसके बारे में भी आप अपनी मन की बात यहाँ पर कह सकते हैं.
1: बिल्कुल. तो जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है जल्दी से कुछ मेल्स और पढ़ते हैं. कृष्ण कुमार जी का मेल आया है. सुप्रभात आपको भी. लखनऊ प्रातःकाल 7 बजे से धमाल मचा रखा है. मस्ती के साथ दिन की शुरुआत अच्छा लगता है. जैसा कार्य वैसा ही अपने आप को खरगोश और कछुआ समझ लेना चाहिए. ये भी बात सही है भाई. अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तरीका जैसा भी हो परंतु संवैधानिक होना चाहिए. कृष्णा गोमती नगर लखनऊ से. बिल्कुल सही बात है. सही तरीका होना चाहिए संविधान के अनुसार और इंसानियत के अनुसार भी है ना.
0: बिल्कुल. वकील अहमद भी कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आपको भी कछुआ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कह रहे हैं कि भाई कछुए की तरह चलते रहिए. तेज तो खरगोश भी चला था सोचा कछुए को पीछे छोड़ने देंगे आराम कर लें और खरगोश को फिर क्या हुआ कि नींद आ गई. कछुआ चलता रहा और आगे निकल गया खरगोश सोता ही रह गया. तो भाई इनको लगता है कि आप कछुए की तरह चलते रहिए और अपनी मंजिल को आप हासिल कर लेंगे. जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद. और नेक्स्ट मेल है हमारे नियमित श्रोता है गांव रुण राजस्थान से. ये हमें जिला नौगढ़ राजस्थान से मेल कर रहे हैं महेंद्र दीपन जी. आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग और लिखते हैं कि मैं आपका नियमित श्रोता महेंद्र दीपन अपने गांव रुण जिला नौगढ़ राजस्थान से लाइव कार्यक्रम सुन रहा हूं और हमेशा की तरह आज की सुबह भी आपकी इस शानदार शो ने बेहद खुशनुमा बना दी है. आज विश्व कछुआ दिवस पर आपने जो मुद्दा रखा है उस पर मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं. कहते हैं कि मेरा मानना है कि आज के इस तेज तर्रार समय में खरगोश वाली स्थिति और रफ्तार ही सबसे सही है. अच्छा मूल कहानी में खरगोश की गलती उसका रफ्तार नहीं थी बल्कि उसका अति आत्मविश्वास और लक्ष्य से पहले रुककर आराम करना था. उसे अपनी दौड़ पूरी करके जीत हासिल करने के बाद ही आराम करना चाहिए.

0: ये था। आप अगर उस समय होते ना तो कछुए को माफ कीजिएगा खरगोश को सलाह दे देते, लेकिन खैर मेरा भी यही उसूल है। आगे लिखते हैं, मैं अपने कामों में चाहे कितना भी बड़ा काम हो, थका देने वाला क्यों ना हो, उसे पूरा खत्म करके ही दम लेता हूँ। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए आराम का सवाल ही नहीं उठता। और हाँ, काम जल्दी पूरा होने से जो समय बचता है उसमें मैं आराम करने के बजाय अपने दूसरे जरूरी कामों को निपटाता हूँ। डिजिटल और आधुनिक युग में वक्त बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
1: क्या बात है,
0: अच्छी बात है आपने लिखी। आपका अपना नजरिया है और बहुत सही है आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन भाई आराम भी जरूरी है और कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी एनर्जी को सेव रखना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल अंजू, यहाँ पे हम लिसनर्स की राय तो ले रहे हैं लेकिन हम भी इस कहानी का हिस्सा रहे हैं और हमने भी बहुत कहानियां सुनी है, तो क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए कि आप आज किसके पक्ष में हैं।
0: भाई देखिए, हम अपनी जो बात है वो हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। बहुत सारी बातें हमारे पास कहने के लिए,
1: सारी बातों का निचोड़
0: आप बता दीजिए, आप बताइए।
1: भाई मुझे तो लगता है कि आज के हिसाब से जिस तरह से खरगोश था और आज के टाइम पे रफ्तार की जरूरत तो है, क्योंकि वक्त जिस तरह से भागता है ना, और आपको बीच में थोड़ी थोड़ी नैप ले करके अपना काम करते रहना है, भागते रहना है। बहुत स्लो हम नहीं हो सकते। अगर आप बहुत स्लो हुए ना तो बहुत सी चीजें हैं, भले आप सक्सेसफुल हो जाएं, आप अपना काम निपटा लें, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी रफ्तार के कारण मिस हो जाएंगी।
0: ये आज के दौर की डिमांड है मुझे लगता है। और लेकिन इस कहानी में बहुत सारे लोगों ने हमें ये याद दिलाया कि खरगोश आलस की वजह से हारा था, अंजू जी ने याद दिलाया था। लेकिन यहाँ पर आज हमने इस कहानी में सिर्फ रफ्तार, खरगोश की रफ्तार और कछुए की जो गति है, धीमी गति लेकिन निरंतरता, इसकी बात की है। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप किसके फेवर में है? मुझे लगता है कि रफ्तार बनाए रखिए, अपनी आज की डिमांड है, लेकिन आलस, आप आलस और लापरवाही, इन दोनों को अफोर्ड नहीं कर सकते।
1: इसे आलस नहीं कहेंगे, उसने पावर नैप लेने की कोशिश करी, वो बाई चो हो गया ना।
0: लेकिन महेंद्र दीपन जी ने भी सही बात कही है। हाँ। उसको अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस में भी लोग अक्सर हार जाते हैं या चूक जाते हैं, ये कह सकते हैं।
1: उसको लगा कि अगर कछुआ मेरे से चार कदम भी पीछे होगा और मैं उसको देख लूंगा तो मैं तो भाग लूंगा
0: तुरंत,
1: ये ओवर कॉन्फिडेंस
0: के पहुंच जाऊंगा,
1: तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह थी। बहरहाल आज की जो सिचुएशन है, कंडीशन, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर रफ्तार ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, इस तरह से चीजें ना हो, तो हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंची?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है। और हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी से गाना सुनाते हैं, वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर हम खरगोश वाली गति को फॉलो करते हैं ना, तो इस गाने के बाद वापस आएंगे तो और बहुत कुछ है हमारे पास जो आप तक है पहुंचाना जरूरी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। गाना बहुत बढ़िया वाला है ना, बहुत दिनों बाद इस गाने को हम लेकर आए हैं, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा।

0: दे टू यू, गा दो भाई।
1: मैं सोचती हूँ ये पहले सुर ताल मिल जाए।
0: अरे कोई बात नहीं, ये ये बर्थडे सॉन्ग आप बिना सुर लय ताल के भी गा सकते हैं।
1: चलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू,
0: हैप्पी बर्थडे टू
1: यू। क्या बात है, आज सैटरडे भी है और भाई देखिए कुछ लोगों की छुट्टियां भी होती है सैटरडे को, तो अगर ऐसा है तो आपको तो आज कहते हैं ना चार चांद लग गए आपके बर्थडे में।
0: अरे आठ चांद लग गए भाई, वैसे चांद आ जाए अच्छे से समय पर और वो आपको कूल कूल रखे, ये ज्यादा जरूरी है ना।
1: बिल्कुल।
0: और आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो रात 8 बजे के बाद इनवाइट करिएगा सबको, मतलब घर से 8 बजे के बाद ही निकलिएगा, पूरा मौसम ठंडा हो जाएगा।
1: अच्छा। जिनको जल्दी होती है वो बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, कहते भैया ठीक है जल्दी से निपटाएं, जल्दी से घर जाएं। और आजकल तो बहुत लेट नाइट का ट्रेंड ही है कि चीजें शुरू ही 8 बजे के बाद करते हैं,
0: शाम 8 बजे के बाद शुरू हो रही है आजकल, और दोपहर जो है सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती
1: है,
0: सुबह मिसिंग है। तो खैर अभी फिलहाल सुबह चल रही गुड मॉर्निंग लखनऊ में 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, हम आप सबको जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे उन्हें विश करना चाहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर आपकी है एनिवर्सरी तो आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, विश करिएगा और ये साथ हमेशा बना रहे, बरकरार रहे। उसके साथ ही अगर है आपका कोई खास दिन, एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके लिए आपको बेस्ट विशेस।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से बताना चाहते हैं कि आज किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था जिनके साथ आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे महारानी गायत्री देवी जी का। 23 मई यानी आज ही की तारीख थी साल 1919 में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी अपनी शालीनता, खूबसूरती और समाज सेवा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीति में भी उनकी अलग पहचान रही और 1962 में वो लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीती भी थी। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं।
1: इसी के साथ एक और नाम जो बहुत खास है, जी हाँ, प्राणनाथ थापर। इनका जन्म हुआ था 23 मई 1906 को और जनरल पीएन थापर भारतीय सेना के चौथे सेना प्रमुख थे। उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं सब कार्य के लिए, उनके योगदान के लिए हम आज उन्हें याद करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं।
0: और अब जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी उनका है बर्थडे, और अगर आपने शुरुआत में गाना बजाया था, हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तोहफा तोहफा लाया लाया, है ना, और तेरे रूप रंग में अंग अंग के मतलब सजे हैं कल से, खूब ढेर सारे कल से नजर आते हैं स्क्रीन पर, है ना, मतलब तबला बड़ा वाला, इतना बड़ा तबला तो मैंने उसी प्रोग्राम में, उसी मूवी में, उस गाने में देखा है, उस मूवी में, मतलब जो सेट्स होते थे इतने ह्यूज, इतने ज़्यादा खूबसूरत, और जो हीरोइंस होती थी इतनी सुंदर, इतनी

0: सजी धजी की क्या ही बताऊं मैं। और अगर श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को सुपरहिट और लोकप्रिय बनाने का किसी को क्रेडिट जाता है तो वो इनको है। हम बात कर रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक, खासतौर पर तेलुगु और बहुत सारी हिंदी फिल्मों के लिए भी वो प्रसिद्ध रहे, और नाम है उनका के राघवेंद्र राव, जिन्होंने मनोरंजन जगत को कई यादगार फिल्में दी।
1: बिल्कुल, और उन फिल्मों का आपको अगर हम नाम बताएं तो जैसे कि हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस चौधरी, मवाली, मास्टर जी, धर्म, अधिकारी, सुहागन, होशियार, फर्ज और कानून, आमदनी, ठन्नी, खर्चा, रुपया और मेरे सपनों की रानी जैसे फिल्मों का निर्देशन किया। और जो मुझे याद है एक और बात कि जो ज्वेलरी का भी टाइम था, जो हैवी ज्वेलरी भी इन्हीं के टाइम से, ऐसा कहते हैं कि उस तरह से पहनना ओढ़ना और वो मुकुट वगैरह लगाना, तो गानों में दिखता है।
0: हालांकि बॉलीवुड की बहुत सारी और भी फिल्मों में ये सब चीजें दिखाई पड़ी, लेकिन के राघवेंद्र राव की मूवीज की ये विशेषता रही कि उनके जो सेट्स होते थे वो भव्य, खासतौर पर गानों की शूटिंग के समय, और हीरोइंस का जो गेटअप होता था वो बहुत शानदार और क्या कहते हैं रॉयल होता था। और डांस तो फिर आप क्या ही कहिए, गानों पर खास तौर पर वो बहुत मेहनत करते थे। और बपी लहरी साहब के साथ उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट थी, म्यूजिक कपिल दा का और उनकी फिल्में। तो फिलहाल ये जो गाना है ये सेलिब्रेट कर रहा है के राघवेंद्र राव जी का जन्मदिन। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की हम कामना करते हैं, और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे।

0: गुड मॉर्निंग लगता है सुन रहे हैं आप. गाना तो बड़ा बढ़िया वाला था लेकिन समय कम है इसलिए इस गाने को बैकग्राउंड में बजने देते थे.
1: एंजॉय भी करते रहिए और आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा. साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है.
0: आज विश्व कछुआ दिवस मना रहे हैं हम लोग और प्रोग्राम में सुबह से बात कर रहे हैं आज के मुद्दे पर कि कछुए की जो स्पीड है स्लो एंड स्टेडी विंड्स ऑलवेज या फिर रफ्तार, तेज रफ्तार में आप खरगोश की तरह दौड़ना चाहते हैं तो इस पर आपकी राय बहुत सारी आ रही है. लेकिन सड़क

0: पर सड़क पर कछुआ बनकर चलना
1: कछुआ बनकर चलना
0: ठीक है। फिलहाल हमारे साथ हैं टीएसआई विकास सिंह जी, वो क्या कहते हैं कि कछुआ बनकर रहिए सड़क पर या खरगोश बनिए, क्या बोलते हैं सर? गुड मॉर्निंग सर।
2: वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार
0: जी।
2: आज मैम अगर देखा जाए तो वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, सभी जगह कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। पीक आवर्स के समय में थोड़ा प्रमुख मार्ग जो हमारा लखनऊ अयोध्या मार्ग, लखनऊ सीतापुर मार्ग, लखनऊ कानपुर मार्ग और लखनऊ रायबरेली मार्ग, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कमता हो गया, अयोध्या कमता चिन्हट, यहाँ पर पीक आवर्स में थोड़ा प्रेशर रहता है, बस बाकी यातायात सामान्य गति से कहीं जो है अतिरिक्त तो उस तरह का जो डाइवर्जन नहीं है दिन में। लेकिन शाम के समय में आज आईपीएल मैच है और आईपीएल मैच के दौरान हम लगभग 3 बजे से डाइवर्जन रखते हैं, जो हमारा कमता से शहीद पथ वाला मार्ग है, साथ ही सुल्तानपुर अहिमा मऊ या सीएल से अहिमा मऊ वाला जो मार्ग है, यहाँ पर हम भारी वाहनों का तथा कमर्शियल वाहनों का डायवर्जन रखते हैं। बड़े वाहनों का तो लगातार हम डायवर्जन रखते हुए इनको हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अथवा किसान पथ का यूज कराते हैं। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि जैसा कि शाम के समय में 2 महत्वपूर्ण मार्ग हमारे शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड, ये रोड जो है कंजेशन में रहता है, अधिक ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर मैच देखने के लिए लोग आते हैं, तो ऐसे में आप इस मार्ग को शाम के समय में अवॉइड करें। और यदि आप भारी वाहन चालक हैं तो आज के समय में आज रात में नो एंट्री आपकी लगभग 2 बजे तक जाने की संभावना रहती है, तो इस दौरान यदि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सुल्तानपुर रोड का प्रयोग करें, अथवा अगर आप शहर के अंदर से जो है कोशिश करना चाह रहे हैं कि सुल्तानपुर रोड होते हुए अन्य स्थानों पर जाएं, तो ऐसे में आप कृपया विशेष ध्यान दें कि आप किसान पथ का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े
0: जी।
2: वहीं जो काम पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था है मैम, मैं उसके बारे में बता दूं कि हमारा कमता के पास में अवध बस स्टैंड के पीछे वहां पर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाया गया है, दूसरी तरफ थाना सुशांत गोल सिटी के पास में पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, और हमारा मातृ जो सुसैया मातृ हॉस्पिटल है वहां पर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाया गया, जो हमारा पुलिस मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय के पीछे
0: जी।
2: तो शहीद पथ पूरी तरह से पिक एंड ड्रॉप के लिए प्रतिबंधित रहता है, तो श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया आप जो है इसी के अनुसार अपना शेड्यूल बनाए ताकि आपको असुविधा न हो। दूसरा, हमने पार्किंग की लगभग 18 पार्किंग की व्यवस्था रखी है, तो अपने वाहन को पार्किंग में ले जाने के लिए आप एससीएल तिराहे का यूज कर सकते हैं, और एससीएल तिराहे से होते हुए संस्कृति चौराहा हो करके आप समस्त पार्किंग में जा सकते हैं, तो कृपया अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पे ही पार्क करें, यत्र तत्र ना पार्क करें, तथा किसी को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी है तो हम अनुरोध करेंगे सभी श्रोताओं से कि आप जो है कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454-5155 पर संपर्क कर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं
0: जी। सर, इसके अतिरिक्त आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सड़क पर जो हिदायतें दी जाती हैं कि तेज रफ्तार हमेशा घातक होती है और कछुए की रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे भी, सुरक्षित भी रहेंगे, तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है, और तेज रफ्तार जो है आज के समय में अगर देखा जाए सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से सर्वप्रथम कारण में आता है कि हम जब तेज रफ्तार पकड़ते हैं। तेज रफ्तार जैसे कि जो है आपको हो सकता है आप सोचते हो कि हमें जो है घर जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन वो आपके घर की तरफ नहीं, वो उसका रास्ता जो है दूसरी तरफ होता है। सड़क पर कृपया कहीं कतई भी तेज रफ्तार को ना अपनाएं। तेज रफ्तार से आपने मानता हूँ 5 से 10 मिनट का अगर समय बचाया तो वो 5 से 10 मिनट का समय आपके जीवन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा जितना महत्वपूर्ण आपका जीवन है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है सच कहा गया है कि स्लो स्टडी जो है लगातार निरंतर चलता रहना, और स्लो जो है अगर चल रहे हैं तो आप जो है अपने गंतव्य तक लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए रोड के मानक के अनुरूप जो हमारा रोड का मानक है, जितनी स्पीड वहां की लिमिट है उस स्पीड से यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे तो अपने गंतव्य तक सुरक्षित सकुशल पहुंचेंगे। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: धन्यवाद.
1: तो हमारे साथ थे TSI विकास जी, जिन्होंने ट्रैफिक को लेकर हिदायतें दी. तो आप ख्याल रखेंगे आप सारी बातों का. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं 100.7 FM रेनबो पर. सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ.

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 9:38 प्रोग्राम चला गुड मॉर्निंग लखनऊ, और अभी आपको मिली ट्रैफिक अपडेट। उसके बाद चलते हैं मौसम का हाल जानने के लिए, क्योंकि डाई टेम्परेचर तो अपने पैरामीटर से ऊपर भी जा रहा है और आपको गर्मी परेशान कर रही है, लेकिन क्या इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है या फिर ऐसे ही बना रहेगा? तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी से और जानते हैं मौसम का हाल। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: जी गुड मॉर्निंग
3: सर। मौसम जो टेम्परेचर है जिस हिसाब से, क्या इससे भी ज्यादा जाने वाला है या फिर कुछ राहत हमें मिल सकती है?
4: देखिए, मौसम की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से काफी गर्मी का सबब बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है ये अपने पीक लेवल पे चल रहा है इस वक्त। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, हालांकि 1-2 डिग्री ऊपर नीचे जाने की संभावना है। कुल मिला के कहें तो अब एक तरीके से यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे डाउनफॉल की स्थिति रहेगी, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। और 1-2 डिग्री कम होगा, थोड़ा सा नॉमिनल, लेकिन गर्मी बनी रहेगी
3: जी।
4: और बीच में थोड़ा 2-3 दिन बाद जैसे पूर्वी हवाओं का आगमन आएगा तो उसमें थोड़ा तापमान में कमी आएगी, लेकिन उमस बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गर्मी का सबब बनता है, इम्पैक्ट उसका भी रहता। तो कुल मिला के कहें तो अभी 4-5 दिन तक गर्मी का असर बना रहेगा।
3: जी हाँ, तो थैंक यू सो मच सर मौसम की जानकारी देने के लिए।
4: धन्यवाद।
3: तो श्रोताओ, हमारे साथ मोहम्मद दानिश जी, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक, और उन्होंने तो बता ही दिया कि भाई गर्मी का सबब ऐसे ही बना रहेगा, आप अपनी तैयारी रखिए, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, वरना घर में रहिए, और जो काम है, आवश्यक कार्य है, वो सुबह और शाम के समय ही आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपके ईमेल्स पढ़ेंगे आज के मुद्दे पर।
5: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
6: भाई अब मैच का क्या होगा?
5: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
7: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
8: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
7: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
8: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
11: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: मतलब बाहर आने तक से लेके यहाँ तक गाना बड़ा बढ़िया वाला था। हम लोगों के दौर में बहुत धूम मचाई थी इस गाने ने, और अक्सर इस गाने को हम लोग सुन लेते हैं। काली तेरी चोटी, जब चोटी बनाते हैं और परांदा लगाते हैं लोग ना, तो ये गाना लहराते हुए जाते चोटी को,
12: भाई ऑल टाइम फेवरेट।
3: लेकिन अब ये पति पत्नी और वो दो में आ गया है, तो इस नए वर्जन को एंजॉय करते हैं। वापस आइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
6: जी हाँ, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है 100.7 FM पर, गुड मॉर्निंग लखनऊ। और आज तारीख है 23 मई, और 23 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अपने श्रोताओं से। तो इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम आज याद करना चाहेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार को, जो पुरातत्वविद भी थे और उनको हमने पढ़ा है अक्सर हिस्ट्री की बुक्स में, आपने उनके विषय में पढ़ा होगा, और उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं हम सभी, राखल बंदोपाध्याय जी। प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्वविद भी रहे और उनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है। भारतीय इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन उनका निधन हुआ था 23 मई 1930 में, तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक चाहते हैं।
7: जी हाँ, आपको बता दें, आज ही के दिन 23 मई 1984 को बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के साहस और आत्मविश्वास का

0: प्रतीक बनती है।
1: बिल्कुल, तो उन्हें हम उन सैल्यूट करते हैं, उन्होंने बहुत सारी लेडीज को, महिलाओं को, लड़कियों को मोटिवेट किया, प्रेरणा दी कि वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हैं और इस तरह की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को फतह कर सकती हैं। तो और इसके अतिरिक्त आज का दिन जुड़ा है 2016 की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी RLV-TD का सफल परीक्षण किया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई थी। और अगर हम बात करें अपने श्रोताओं के ईमेल्स की आज के मुद्दे पर तो बहुत सारे मेल्स हैं।
0: बिल्कुल, और आज हमने आपसे पूछा था कि भाई टर्टल डे पर आप किसकी साइड पे हैं, किसकी स्पीड आपको अच्छी लगती है। तो आकाश कुमार लिख रहे हैं, जी हाँ, आंचल वर्मा का मेल है हमारे पास हरदोई से, और मेल आईडी जो इन्होंने यूज़ करी है आकाश कुमार की, सुप्रभात आपको भी। और कहते हैं कि जब आप उधर हंसती हैं आपकी हंसी से मुझे इधर बहुत एनर्जी मिलती है, मुद्दा अच्छा लगा। संक्षेप में कहेंगे, धीमे चलें लेकिन सही दिशा में चलें, धैर्य के साथ कदम बढ़ाने से आप न केवल अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति और अपनी सेहत को भी सुरक्षित रखते हैं। मुझे तो कछुए वाली चाल पसंद है, ऐसा आंचल वर्मा जी का कहना है कि इनको कछुए वाली चाल पसंद है।
1: थैंक यू सो मच आंचल, इतने प्यार के लिए। और वैसे कछुए की चाल बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन कभी कभी कछुए की चाल से आप में चलते रहते ना तो आप काफी पीछे छूट जाते हैं। जब बात आती है कुछ, मतलब जो कहते हैं ना फास्ट ट्रैक टारगेट पूरा करने की, तो चलिए, गुड मॉर्निंग लिखा है हमें मुनेश कुमार राज जी ने, और ये हमें लखीमपुर खीरी में सुन रहे हैं, गांव भानपुर हरहुआ में। दोनों को इन्होंने प्रणाम भेजा, गुड मॉर्निंग भेजा है, प्रोग्राम्स की तारीफ की है। मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि आज के दौर में हर किसी की रफ्तार तो खरगोश जैसी तेज है, मगर काम देखे यही होता है, ज्यादा स्पीड में अगर भागने लगो तो अटक भी जाते, ठोकर खा के गिरते भी हैं। देखिए सबूत मिल गया आपको। तो कहते हैं कि आज के दौर में हर किसी की रफ्तार खरगोश जैसी तेज है, मगर कामों में लापरवाही बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने काम को धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से भी करें तो भी वो समय पर और सही तरीके से पूरे हो जाते हैं। जल्दी के चक्कर में अक्सर मंजिल छूट जाती है, धीरे चलो तो कामयाबी खुद कदम चूम जाती है। थैंक यू सो मच मुनेश कुमार राज जी, बहुत बेहतरीन बात आपने भी लिखकर भेजी।
0: रोशनी रावत जी, गुड मॉर्निंग, हम दोनों बढ़िया एकदम चकाचक है और प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है आपको, थैंक यू सो मच। गाने अच्छे लगे, सुगंध माटी का इंतजार करिए, बिल्कुल
1: इंतजार का फल बहुत मजेदार होगा आज।
0: हाँ, कह रही है कि इनकी दीदी की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 13 साल हो गए तो हैप्पी 13th वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब 14th, और बहुत खुश रहिए आप दोनों, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से।
0: बिल्कुल, और मुद्दे पर लिखती है कि पहले के जमाने में कछुआ जीत गया था लेकिन आज के जमाने में खरगोश ही जीतेगा, कॉम्पिटिशन बहुत जोर शोर से चल रहा है, कछुए की चाल चलोगे तो पीछे रह जाओगे।
1: ये बात
0: मिला,
1: देखिये ये बात हम भी कह रहे थे। अच्छा, पिंकी बारी जी का भी अमीनाबाद से मेल आ गया है, दोनों प्यारी मैम को गुड मॉर्निंग, शो बहुत अच्छा लग रहा है, टॉपिक पर बोलना है कि सोच कछुए जैसी स्थिर रखो और मेहनत खरगोश जैसी तेज, क्या बात है, ताली बजा देते हैं हम आपके लिए, है ना,
0: क्या बात है,
1: बढ़िया बात आपने कही। जैसे कि खरगोश तेज था मगर उसके अंदर घमंड था, भले वो तेज दौड़ा मगर अपने घमंड के चलते उसने गलती की और रास्ते में सो गया, बट कछुआ अपने ऊपर भरोसा रखकर बिना रुके चलता रहा और जीत गया। दोनों ही जगह पर दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पिंकी जी के मेल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, मतलब हमारे जो हमने सोचा था कि इस प्रोग्राम का, इस टॉपिक का, इस मुद्दे का जो सारांश हम लास्ट में रखेंगे वो पिंकी जी ने भेज दिया।
0: बिल्कुल। छविराम सिंह जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी फरुखाबाद से आप हमें मेल कर रहे हैं, नियमित श्रोता है और कह रहे हैं कि भाई जय श्री राम आपको भी। और कछुए को लोग कछुआ कहते हैं लेकिन गलत कहते हैं, तो क्या कहना चाहिए कछुए को। और आगे इन्होंने लिखा है कि कछुआ हमेशा ही जिंदगी की रेस में हमेशा आगे दौड़ता है, आदमी को कछुए से ही सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, कछुए से सीख लेनी चाहिए, लेकिन एक सवाल रह गया हमारे दिमाग में,
1: क्या
0: कछुए को क्या कहना चाहिए।
1: हाँ, ये भी बताकर भेजिए छविराम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेज बहादुर यादव जी ने हमें मेल किया है, अंजू शुक्ला और आकांक्षा दी को प्यार भरा नमस्कार, हम लोग बहुत अच्छे हैं और मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं कि खरगोश और कछुआ कछुआ दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हुए ये बोलते हैं कि आज सबने, आप लोगों ने स्कूल की याद दिला दी। मेरा तो मानना है कि जैसा काम वैसा समय, कई काम होते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी और टाइम पर करने चाहिए, कुछ काम आराम से, वो उस काम पर निर्भर करता है। कछुआ हमारे गांव में तो देखने को मिल जाते हैं, हमारे कुएं में भी हैं, लेकिन शहर में नहीं देखने को मिलते हैं। तेज बहादुर यादव जी हमें लिख रहे हैं, गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, अभी ये गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। मालूम है लोकल शहर में जो दिखते हैं वो कहाँ दिखते हैं, एक्वेरियम में, आपके घर में, सब बहुत सारे लोग पालते हैं कछुओं को।
0: जी हाँ, बहुत सारे लोग पालते हैं। और गुलफशा सिद्दीकी हमें लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी, और कह रही संडीला से प्रोग्राम सुन रही है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है,

0: तरफ हैं ये, क्योंकि हम जब भी कोई काम धीमी रफ्तार से करते हैं तो उस काम में जो निखार आता है वो बहुत अच्छा होता है, और तब तक काम बहुत अच्छा और सुंदर होता है, उसका मजा ही अलग होता है। और जल्दी के काम में शैतान का, वो कहते हैं ना कि
1: हाँ जल्दी का काम शैतान का ये कहावत बड़ी तेज है।
0: तो ये बात इनको सच लगती है।
1: अच्छा, जल्दी जल्दी मेल पढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, अपनी खरगोश बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मोनू जी लिखते हैं, जंगल में तेज भागने वाला खरगोश और एक बहुत धीरे चलने वाला कछुआ रहता था, खरगोश को अपनी गति पर बहुत घमंड था। ये कहानी तो हम लोग सबने सुनी, आपने कहानी लिख कर भेज दी है। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि खरगोश में अहंकार था, कछुआ अहंकारी नहीं था, उसमें कार्य के प्रति निरंतरता जो थी वो हिम्मत रखता था उसकी, और अहंकार से नहीं जीवन में अपने आप पर भरोसा रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, इन्होंने ये बोला है।
0: क्या बात है,
1: इट मींस कि ये भी कछुए के फेवर में है। अच्छा, सुदीप कुलश्रेष्ठ जी ने कहा है कि खरगोश कछुए की कहानी अधूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में कहानी आगे बढ़ गई है, जब कहानी पुरानी पूरी हुई तो कछुए और खरगोश ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, फिर जब जमीन पर चलना होता था तो कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठ जाता था, और नदी पार करनी होती थी तो खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ जाता था, इस तरह दोनों मिलकर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। नई कहानी की नई सीख, जब अवसर मिले तो उसके अनुसार मिलकर कार्य करें। क्या बात है, बेहतरीन बात आपने भी कहकर भेज दी सुदीप कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सावित्री देवी जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। और
1: सावित्री जी देवी जी का मेल आई थिंक पढ़ चुकी हैं आप, सिमरन जी का मेल पढ़िए।
0: नहीं, अभी हम सावित्री देवी जी को अभी नहीं पढ़ा इससे पहले। ठीक है, हम आगे मेल्स लेते हैं। और ये
1: हाँ,
0: कि हम कछुए के पीछे पक्ष में हैं, जीवन में निरंतरता की बहुत जरूरत होती है, खरगोश को अपनी स्पीड पर बहुत प्राउड था इसलिए उसने समय के साथ चलना जरूरी नहीं समझा, इसलिए हार गया। किसी को निरंतर करते रहने से ही हम सफल हो सकते किसी काम को। और सॉन्ग इनको बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिमरन क्या लिखती हैं?
0: जी हाँ, सिमरन सरांजलि जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। आज के दौर में धीरे धीरे काम करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए तेजी से अपने ख्वाबों को और कामों को करना चाहिए। फुल एनर्जी के साथ करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए खरगोश बनना जरूरी है आज के टाइम पे, ताकि आप खुद को भी टाइम दे सके। लेकिन कछुआ तेज दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो निरंतर चलता रहा, इसीलिए कछुआ भी सही था अपनी जगह। अच्छा हाँ, ये एक टेंडेंसी भी तो थी कि कछुआ भाई बहुत तेज भाग नहीं सकता।
1: हाँ, उसकी शारीरिक बनावट या प्रकृति ने उसे जो स्पीड दी है कुदरत ने, वो उसी के अनुसार चल सकता है। लेकिन जी क्या कह रहे हैं, जब अर्ज करता हूं, जब वो लौटा बिना जुर्म के सजा काटकर घर पहुंचकर उसने सारे पंछी रिहा कर दिए। क्या बात है, बड़ी गहरी बात कह दी आपने। मुद्दे पर कहते हैं कि मेरा मानना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और कार्य में निरंतरता होनी चाहिए, ये बातें कछुए में है इसलिए मैं कछुए के साथ हूं, जबकि खरगोश जल्दबाजी और आत्मविश्वास में था, और किसी काम में जल्दबाजी करना काम को बिगाड़ सकता है। संजय नगर ऐशबाग से आपका मेल।
0: ब्रजेश सिंह जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। और कह रहे हैं कि ये खुद ही डिसाइड करना होगा जिंदगी में कि हमको तेज चलना है या धीरे चलकर मंजिल तक पहुंचना, क्योंकि धीरे चलने वाले थकते नहीं, तेज चलने वाले थक जाते हैं, आराम करने लगते हैं, आलस नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि भाई कछुए की रफ्तार से ये इन्होंने अपने घर में श्रीमद भागवत गीता कथा का आरंभ हुआ है।
1: क्या बात, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: समय नहीं मिल पा रहा आपको, शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए।
1: बहुत सारे ईमेल्स, और हमने कोशिश की कि हमने लगभग सभी में शामिल किए, अगर किसी का रह गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई हम खरगोश की रफ्तार में बिलीव करते हैं और कछुए के धैर्य में बिलीव करते हैं, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल एक गाना और वापस आएंगे तो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं।
2: टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: बस इतना कहेंगे कि अहंकार, अति आत्मविश्वास, झूठ, आलस, इन सब चीजों से बचिए. जो काम है आपकी जिंदगी के, जो लक्ष्य है, उनको पूरा करने के लिए निरंतरता, धैर्य के साथ और एक जानी मानी जो स्पीड, जो रिक्वायरमेंट है जिस स्पीड की, उस स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहिए.
1: बिल्कुल, और इसी के हिसाब से एंटरटेनमेंट का ख्याल तो हम आपका रखते ही रखते हैं, साथ ही आपके हेल्थ का भी ख्याल रखने का जिम्मेदारी हम मानते हैं. हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम लेके आते हैं हर रविवार, और इस बार 24 मई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के जो हमारा टॉपिक होगा इस बार का, गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें ख्याल, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर मनीष झा, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं. और आप गर्मियों में अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आपको हमें मेल करना होगा, इसी के साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से

0: रविवार, और इस बार 24 मई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के जो हमारा टॉपिक होगा इस बार का, गर्मियों में हार्ट का कैसे रखे ख्याल, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर मनीष झा, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और आप गर्मियों में अपने दिल का ख्याल कैसे रख सकते हैं इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमें मेल करना होगा, इसी के साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक विशेष कार्यक्रम आप तक हर महीने पहुंचता है सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रविवार को, और कार्यक्रम का नाम है पद चिन्ह आकाशवाणी के। और इस बार कल के एपिसोड में आप सुनिएगा श्रीमती महजबी जैदी जी को, सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका। इनकी जीवन यात्रा के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और श्रीमती महजबी जैदी जी से बात करेंगी, भेंट करता है सुमोना पांडे जी। तो कार्यक्रम को सुनना मत भूलिएगा 100.7 FM रेनबो पर रविवार यानी कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच। फिलहाल स्लो एंड स्टेडी विंस ऑलवेज, और स्पीड एक नियंत्रित है ना।
0: बिल्कुल, और मैं स्पीड पकड़ती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम एंजॉय करिएगा। और अगला प्रोग्राम सुगंध माटी, आपका फेवरेट, आपकी रेडियो से तक पहुंचने वाला है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।
1: जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आज बस इतना ही। आकांक्षा को बाय कहते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम सुगंध माटी की में एक बहुत ही प्यारी मेहमान के साथ जो आप सबकी फेवरेट है। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। इस रोजगार मेले का आयोजन राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुर्मुज जल डमरू मध्य के व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश के में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में चित्रकूट में 1,926 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। कार्य के सफल संचालन के लिए 40 जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न ग्रामों और वार्डों में लगाई गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना अभियान में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि विकास योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े तैयार किए जा सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। काशी की कला संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान देने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अर्बन हार्ट विकसित करने की योजना बनाई है। ये परियोजना चौकाघाट वाराणसी पर स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल परिसर में विकसित की जाएगी। प्रस्तावित अर्बन हार्ट में बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, धातु शिल्प, गुलाबी मीनाकारी सहित विभिन्न पारंपरिक और GI टैग उत्पादों की दुकानें स्थापित की जाएंगी, जहां स्थानीय कारीगर और बुनकर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। परिसर में एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा, जहां लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: बड़े बुजुर्गन का लड़का बच्चा मेहरारू मनसेदो का सबका प्रणाम। एफएम रेनबो के सरफ सोता पंचन का आरजे अंजू शुक्ला की तरफ से राम राम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में टेम हो गवा है 10:04 और हम लेके आए गए हैं सुगंध माटी की कार्यक्रम का है से कि आज है शनिवार। और हमेशा की तरह भैया बहनी हमारे साथ ही बहुत बढ़िया मेहमान आई है जिनका कहा थे आकाशवाणी के नगीना अपनी बोली से अपनी मीठी बोली से सबके दिल जीते वाली आए गए हमारे साथ जिज्जी मीना। जिज्जी राम राम, बहुत स्वागत है आपका।
4: राम राम अंजू, राम राम, कैसी है बहनी?
3: अरे हम तो बहुत नीक है बहनी। जिज्जी पहले ये बताओ आप रही कहाँ?
4: हम कहाँ रहे?
3: अत्ता इंतजार करवावा तू ये गलत बात।
4: सोता पंचे बताइए कि उनके जिगर में उनके दिल में रहन कहाँ रहन।
3: अरे तो तब की सनिचर का देखा हम अकेले प्रोग्राम करे रहे हैं, कहूँ की उबे उबे उबे इंतजार है करत रही।
4: तो तुम क्या सोचती हम सनिचर का कहूँ ना कहूँ रहन नहीं का यही आकाशवाणी के कोने स्टूडियो में हम
3: अपनी छुटकी बहनिया तो याद के लेते इंतजार करत रही है बताओ।
4: छुटकी बहनिया हमका मिला थी, हम उनका चीना थन और प्यार कर थन। छुटकी बहनिया लाड से प्यार से दुलार से आज बुलाये ली समकन, हमका बहुत काम है। ये ना सोचो कि हमारे पास काम नहीं ना, नहीं आओ सुबह सवेरे तुमका आए का पड़ी और ये जो सूरज की तपिस है। अरे बहनी कहा बताई ऐसा कपड़ा निकालत रहन कौनो सूती कपड़ा ढील ढाल जो चटक रंग के भी हो मतलब चटक आई कि लाल पीला हरा
3: सही बात
4: हल्के रंग के जो उन्हें कहा जाते हैं अंग्रेजी में सूदिंग।
3: सूदिंग एंड कूलिंग है।
4: सूदिंग एंड कूलिंग। तो आज के कार्यक्रम भी ऐसा ही हो सूदिंग एंड कूलिंग और बने रहे हमरे और अंजू शुक्ला के साथ हम मन तुमरी प्यारी नीना सुनकर।
3: और जी पहले ये जो है हमारे सबके जो आप बात करूं गर्मी के है तो यही से शुरुआत कही दी भैया गर्मी तो बहुत प्रचंड बनती पड़ती है।
4: हाँ ऐसे लगता है कि जैसे अगिया जो है बिल्कुल कपाल का बिल्कुल फोड़े दे रही मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि जैसे कपाल मा सूर्य देव बिल्कुल कपाले पे बैठ गए हैं। तो जो है हमारे पंच सुन रहे कार्यक्रम बहुत ध्यान दे 44-42-43 डिग्री हो करी। अब देखो उत्तर प्रदेश के बांदा जो है ऐसा जीव जान मने के हल्कान 48 डिग्री चलेगा। ऐसे में तो कहा जाते हैं अंजू कि अपने आप सुलगा लागत है सब चीज जो घास वास ही यार बाहर वो अपने आप पर सुलगा लागत है। इतनी गर्मी कि और मन ही देखो एक दूसरे का दुत्कार रहा। प्यार मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं ना। सब करे जरा जरा दूर
3: हटा दिमाग गर्म हो गया
4: बिल्कुल बढ़िया जो गर्म होती उनके परिणाम तो बहुत है बुरा।
3: अरे तो भैया अपन दिमाग ठंडा रखत जा और सुनत रह जा एफएम रेनबो कह से की शुरू हो गया कार्यक्रम सुगंध माटी की।
4: अंजू सुनो हम लेके आए हैं का एक बर्फ की का कहते हैं एक देखो ये जो गुम्मा के तनिके है गुम्मा के तनिके एक बर्फ के जो
3: है
4: बड़ी नहीं भाई
3: कपाल में रखे के लिए
4: कपाल में रखे के लिए कहा है ना गर्मी होती तो अंदर की गर्मी है इस कपाल मचड़ा थी कि मैंने सोचा था कि की के ऊपर उतारी जाए
3: तो जो ज्यादा गर्म हो ओकरे ऊपर सिल्ली रख दी जाए।

0: हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम खवा बच जा भैया।
1: हाँ तो गर्मी के दिन आए हमारे पिया, तो पिया क्या करें जब बत्ती बत्ती काटे जाए रात में रात,
0: पता चला बेना हकी है, पिया बेना हकी है
1: अब बेना तो ठीक है ये वाली भी ड्यूटी अच्छी है। देखो मेरिया जो ना एक बनाए बनाए खियाए पियाए गल का है, और क्या कहते हैं चना की दाल की जो पूड़ी उड़ी होती
0: है, पना बनाए
1: पना बनाए और पुदीना की चटनी बनाए, खिचड़ी गरम गरम खियाए, देसी घी उम्मा डाल दे, लेकिन थोड़ी एनर्जी वनर्जी कम रखा भैया, नहीं लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा एनर्जी होती है गर्मी के मौसम में, तो फिर उम्मा कहा है ना कि कहीं तो निकलाती एनर्जी। तो
0: जी जब लेके आई यहाँ बर्फ की सिल्ली वाली टिप सब सुन ले,
1: गर्मी अर्मी है जो न्यूरो सिस्टम है वो पूरा तहस नहस हो जाए बच्चे, कहाँ की बात कर रही हो।
0: हाँ तो मतलब कुल मिलाए के जो है सब जान गए हैं कि ये वाला उपाय बढ़िया है। वैसे एक बात बताई

0: कि एफएम रेनबो बढ़िया बढ़िया गवने सुनत रहा, दिमाग ऐसे ठंडा रहा,
1: वैसे ही ठंडा रहा था। लेकिन एक बार बता दी, तो मजाक की बात है, ये ना सोचो कि हम लोग गर्म मतलब बर्फ की सिल्ली रख के बैठे हैं स्टूडियो में। ये स्टूडियो है, यहाँ देखो माइक है, पूरे देखो टेबल वेबल लगी है, नीके तनीके कंप्यूटर चल रहा, हम सब चीज देखो, तुमने मेल वेल हम प्रपंचन के रिफ्लेक्ट कर रहा कि दिखाई दे रहा कि काका लिखे हो, तो यहाँ नहीं सब बिजली का काम होता, तार होता, यहाँ बिजली के वजह से इनको बर्फ वर्फ के कामों नहीं होता। ये ना सोचो कि ये उपाय बतावा जा रहा, नहीं तो पता चले कि हंसी खुशी के नोक झोंक का आप सोचो कि उपाय बतावा गा है, एक ढीला जौन है बर्फ के, हमको पड़िया पैसा कुछ ना करे।
0: तो हंसी मजाक के बात रही आपका, ऐसे जीजिए एक बात बताइए, गर्मी आवत है ना, गर्मी छुट्टी बहुत याद आवत है हमका सबका।
1: तुमका का याद आती, ऐसा का करे हो तुम ये बताओ।
0: अरे जिज्जी का बताई, पहले नानी खिया जात रहे, जाने तो जिज्जी हमारे यहीं छठ ही मौसी,
1: अच्छा,
0: और सबके लड़कियां बच्चा जब इकट्ठा होत रहे तो जौन धमाल होत रहा, जौन मजा आवत रहा, का बताई, हर दाई याद आवत है, गर्मी छुट्टी में जात रहे बगिया में, चिल्होर जाने तो चिल्होर खेला जाते, डंका बोला
1: था
0: खेला जात रहा, पेड़ चढ़ के जौना एमोर से उमर उमर बनरन नहीं जौना, हम सब कूदत पूदत रहे, और उसके बाद यही में कूदत कादत के चक्कर में जौना एक जने के आम के डार टूट गए, अवय डारी लई के मतलब उमा सब लाग रही टिकोर, और लई के पहुंचे नानिक लगे, और बाद फिर सब लड़के जैसे डरिया टूट, हम सब भगे और चुप चुप लुकाए गए छता पे, कोठा जो ना एक कमरा रहा वहां सब लुकाए बैठी है, हम सब टेबल फैन चलाए के है, और नानी हेरत हेरत पहुंची कि केक चढ़ा रहा के चढ़ा रहा है, कैसे वह शिकायत लेके पहुंचे, तो नानी के डंडा जो सोटा पड़त रहा हमारे सबके, भागत रहे हम सब, जौन के पूछा ना
1: जौन तुम बात बताए रही हो,
0: लेकिन मजा बहुत आवत।
1: लेकिन यू तो बताओ कि जब आम तोड़े के लिए तुम चढ़ी रही हो अमिया, उनका जो ना टिकोर सब सोता पंच का बताए दी, अवधि में कहा जाता है कि आम की केरी अमिया है, तो ये छोटे छोटे अमिया होती ना, एक तोड़े के मजा अपन होता है,
0: और नहीं, और जो, अपने बात नहीं दूसरे के बात के।
1: और बताए ये अंजू ही नहीं बताई ना आपका की पंचे का की ये गिर भी पड़ी रही, गोल मोल करके ये बात बताया रही की कोनो का चोट लग गई रही, कोनो गिर पड़ा रहा, तो नानी जौन है वही डंडा रहा है, खपच्ची कहा जाता है, संटी कहा जाता है, और संटी जल्लाई के जो पीटिन है, तो इके जो ने
0: जिजी सारी पोल खोल दे, कहे जिजी चुप रहा भाई,
1: तो बरेता बन गया है इके।
0: हाँ जिजी सब नहीं बता रहे,
1: अच्छा अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा ढक ले, चलो थोड़ा थोड़ा बता, थोड़ा थोड़ा ढक ले, चलो ठीक।
0: वैसे गर्मी छुट्टी मजेदार बहुत होते हैं, और मामा खिया जाए वाली प्रोग्राम बहुत मजेदार होते हैं, और लेकिन ये बात एक बताई दी, जब मामा खिया पहुंचा थी नंद हरे, और जो है मतलब अपने लड़किया बच्चा के लेके, तो यो मतलब डिवाइड कर ले चाहिए, कुछ दिन मामा खिया चला जा, कुछ दिन चाचा खिया या ताऊ जी खिया चला जा,
1: सब है? सही है, लेकिन देखो पंचे का मतलब गर्मी की छुट्टी में जैसे लड़का बच्चन का लेके तुम कहीं जाए के प्लान बनाए रही हो, लेकिन एक बार बता दे कि सब कुछ सही है, लेकिन गर्मी का ख्याल रखो, सूती कपड़ा पहनो, खुद का जौन है पानी से बिल्कुल तर बतर रखो, मतलब अपने शरीर के अंदर से है ना, ढीला ढाला कपड़ा पहनो, 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलो, धूप में निकलो बस, मतलब आप पंचे का करे का है, सर का ढके का है, और पानी और जो तरल पेय है उनका बढ़ाए का है, भरपूर पिए का है, और दिन भर में कहा जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर भैया बहनी बहुत से कार्यक्रम भी आप सुने हो कि 8 से 10 गिलास पानी जरूर पियो, और अगर घरेलू अगर उपाय बताई तो शरीर के अंदर ठंडा करे के लिए नींबू के शरबत है, नारियल के पानी है, छाछ है, मट्टा है, लस्सी है, बेल के शरबत है, ये सब पियो, तरबूज खरबूजा है, खीरा ककड़ी संतरा, और देखो अब यहू आई सहतूत भी आवा है, सहतूत बतावा है, हाँ सहतूत है, और एक छोट छोट आवा था ना फालसा, उन्हें वो जो छोट छोट होती जो उन मटकी होती उम्मा डालत है उनका हिलावत है, फिर उनका देत है पत्ता पे जो कितना नीक लागत है, तो ये गर्मी से बचे के लिए प्रकृति जो उन्हें सारे उपाय सही से, और हम पंचे का उनका अपनाए का है, हल्का और आसानी से पचे वाला भोजन करे का है, ज्यादा मसालेदार जो उन्हें शाकाहारी है वो तो ठीक है, लेकिन जो मांसाहारी है थोड़ा कम दूरी बनाए लो भैया, है ना, तली हुई बासी वासी खाए से बचो, बाहर के कटा हुआ फल खुले में मिले जो जूस मिलत है ना उसे पिए से बचो, रस मिला था ई कहा जाता है, और जो सिल्ली की बात किया तो सिल्ली के तो ई है कि जो उन्हें ठेला पे सिल्ली रखी रहती ऊपर खरबूजा तरबूज जो काट काट के ऊपर ठंडा ठंडा और काला नमक के छिड़क के दिन जाता है, तो उससे भी बचे का है, आपका खाए का है तो बिल्कुल ताजा ताजा खाओ, काट के खाओ, और जो आइसक्रीम है उससे भी बच्चे का जाने कौन कौन सी आइसक्रीम आजकल चल गई है तो मने के पेट के इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर निकले पहले अच्छी तरह से अपने सर का ढक लो, आंखिन के चश्मा लगाओ, और घर का कैसे ठंडा रखो, घर की खिड़की है दरवाजा है वो बंद रखो, पर्दा से ढक के रखो ताकि बाहर की गर्म लू ना आवे, और शाम और रात का खिड़की जरूर खोलाओ, और देसी तरीका अगर हम मंजू भाई नहीं बताई तो तेज धूप में खिड़की

0: पे कहा जाता है कि खस के जो पर्दा है वो लटका सकत हो, गीला करके घर में सादा पानी से पोछा लगा सकत हो, नहाना बहुत ज्यादा ठंडे पानी के बजाय सामान्य जी का कहा जाता है नॉर्मल पानी उससे चाहिए, और गर्मी से राहत के लिए सबका मालूम है काका करे का है, बस करे का है, यो ना सोचो आलस छोड़े का है, और ठेले वाले से कोनो कुछ लेकर नहीं
1: बाहर खाए इनके नहीं, सिंपल सादा घरे दाल चावल दाल भात खा बस बहुत मजेदार रहा हुआ है। और बड़े बढ़िया बढ़िया गौने सुनत रहा 100.7 FM रेनबो पर जहाँ चलता है कार्यक्रम सुगंध माटी की।

0: भैया बेना बेना हाँक दियो, पसीना पोछ लियो, है ना। और सुनंत रहा सुगंध माटी की कार्यक्रम जयमा चलता है, अजय हम सुगंध माटी कार्यक्रम चलता है। अंजू और नीना जी जी हाँ हमारे साथ है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले तैया है, तनिक ब्रेक ले और तुरंत लौटा भाई, तुरंत सुनत रहे।
1: फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: देखा कहे रहे ना, तुरंत लौट अब देखा लौटी आए है जी।
3: तो कहाँ जाइयो लौटियो ना,
0: अरे आप छोड़ के जाए
3: नहीं सके, स्टूडियो छोड़ के कहीं जाइयो का
0: कत्तौ नहीं जाए,
3: ड्यूटी लगवा के नहीं ना का।
0: अरे जी जी 12 बजे तक यहीं चपकी रहबे हम,
3: चपकी
0: कुर्सी बेल्ट पेटी ओटी बांध के बैठी यही।

0: जाने हम का तुम्हारे लई के कहा है नहीं तो जाना
1: हाँ, बतावा बताओ
0: हम तुम्हारे लई के आए हैं ना अमिया के पना डाल के है ना तो पिए अभी जब पूजा ही कार्यक्रम तो पिए अच्छे से निकलते
1: अब तो मन ना लागे कार्यक्रम
0: जी का कहा जाता है कि हाइड्रेट रहो आज तुम्हारे वजह हम लई के आए हैं गलका जाना था ना गलका
1: कहा जाने थे जी
0: अरे जो बच्चे पानी जो बच्चे नहीं जाना थे गलका वो जान ले की गलका हो का है गल का होत है आम की लौंजी कहा जाते गल का की पुदीना की चटनी है और आम की लौंजी है गर्मी का सब भोजन है ये सब खाओ खिचड़ी है कचौड़ी है गर्मी की बेहतरीन पारंपरिक थाली बना थी और गल का अगर बनाए का है देखो सब पंचे वैसे जानत है कि आम की खट्टी मीठी चटनी जो खाए के स्वाद का बढ़ाए देती देखो
1: आम का काटा लेके
0: आम का काटा जाते हो जरा से कल्हार ले छौक ले छोटा चम्मच एक आधा का लौंजी डाल दो जीरा डाल दो और गुड़ अपन मीठा के अनुसार जितना आपका खाए पिए का है और उका चढ़ाए दे जब पक जाए तो उम्मा आप थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाए उम्मा मेवा जरूर डाल है ना मेवा हमका बड़ा नीक लागत है जाने बचपन से हम का खात रहे बहुत चिलगोजा गोजा खात रहे और अकोर रखरोट इतना खाए कि हम रहे जम्मू कश्मीर में है और वन रहे तो हम खूब खात रहे कहा जाते उससे दिमाग बहुत तेज होता है तो हमारे दिमाग जो है हमारे आशा के अनुरूप बहुत तेज दौड़ा
1: और आशा के अनुरूप की आशा के विपरीत
0: दौड़त है और देखो पंची आज हम बताए दे बिल्कुल आलस वालस छोड़ दे मंडी अगर जा रहे हो कौन सब्जी मंडी या आपके घर में खेत आपके खेत खलियान है आप ग्रामीण क्षेत्र से कार्यक्रम को सुन लो सुन रहे हो तो लिखाओ कि कैसे लग रहा हमका मेल करो और ये बताओ कि कौन कौन बनाई से अपन घर में गलका है ना तो आप गलका अगर बनाए नहीं हो तो बनाओ ये स्वादिष्ट होता है गलका और हम आपको यह बताए दे कि के साथ जो ने चना की दाल की कचौड़ी हो थी वो खाई जाती लेकिन चलो उनका बहुत
1: ज्यादा तेल मसाला
0: ज्यादा तेल मसाला ना करो हल्का हल्का ऊपर तेल लगाओ सरसों के तेल या उनका तवा पे अलट पलट कर ले गरम गरम खाओ जो ने चीज खाओ गरम गरम खाओ और खाए के पहले हाथ वतनी के तरीके से धोए ले नहीं तो जाने तो क्या होता है इन्फेक्शन
1: बहुत इन्फेक्शन होता है जी इतना सुंदर सुंदर जो रेसिपी बताए दे है ना तो अब मुहम पानी आवत है का बताई बताओ
0: लेकिन ये बताओ कि मोगरा की चमेली की भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही बहनी
1: अब ये तो आपके नाक ज्यादा तेजी है
0: हाँ अरे हमका लग रहा है कि तुम फूल रखे हो सुबह जब आई हो आठ बजे मतलब आठ बजे पहले आई हुई है जो
1: हमारे जन छोट के बगिया है घरे में ओमा लगाई है अब बहुत ध्यान रखे थे पेड़ पौधन का चिड़िया उड़िया का सवेरे पानी उन्हें दही के सब आई थे
0: बड़ा अच्छा करती हूँ जैसे देखो अंजू बहनी प्रकृति के संतुलन है ये चिड़िया चिरौटा जो चिड़िया बरैया हो थी या फिर जौने भी पशु पक्षी है ये सब प्रकृति में संतुलन बधे है और ये ना सोचो कि मनाई मनाई का केवल धरती या प्रकृति पैदा करी इनका भी बराबर से पैदा करे
1: बिल्कुल सही
0: और यही कहा जाता है कि इनके भी उतना ही ध्यान रखो जितना कि आपन रखो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और देखो ये मोगरा चमेली की हम बात किया है तो हम तो देखा है कि तुम्हारे वन भी हमरे वन भी ये जो ने गुड़हल के फूल है वह बहुत सुकून दे सदाबहार के बिना ज्यादा पानी के हरा
1: सब लगाए
0: हो ना लगा हुआ है और गर्मी में जो ताजे ताजे फूल है उनका मुरझाए से बचाए के लिए उनका हमेशा साफ और ठंडी जगह रखा हो ठीक है और इका अपने आसपास भी रखो उसे कहा होता है कि आपका मन जौन है वो संतुलित रखत है और मन में दुर्विचार का दूर करत है कहे से गर्मी जब दिमाग पे चढ़त ही ना तो जानो कि बर्फ की याद आती
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहो और गर्मी जब ज्यादा चढ़े ना तो गगरी भरे के लिए जब उन पानी वाली भरे को ना तो तनी सहयोग कई दे जाए है अकेले न वही के जिम्मा ना दिया नहीं तो फिर जो उन्हें का हो ले सुना गौने में सुनाई दी
0: ऐसा ना हो कि तुम्हारी गगरी को फोड़े के लिए पीछे पीछे
1: कन्हैया कन्हैया वैसे हिया जब बात होती है वो नाजुक कमरिया के हो
0: चलो बहनी
1: सुना।

0: अब भैया नाजुक कमरिया कहूँ लचक वचक जाए ना, इतना अत्याचार करिए तो नैहरे चली जाइए हैं, तो पता लागे फिर।
1: हम तो ध्यान से सुनत रहे कि नाजुक कमरिया रिसिया है यो जाने काका इमा, थोड़ा सा तुम तड़का जाऊन है, थोड़ा सा भोजपुरी की बधाई दिए।
0: अरे सब ये अवधि भोजपुरी से मौसेरी बही यही ना, आई जाती घर में छुट्टियों चलती है,
1: सही समझो जैसे हम अवधि है तुम भोजपुरा।
0: बिल्कुल,
1: और देखो अंजू बहनी हम लोग टाइम बिल्कुल नष्ट ना कर, अब कैसे टाइम अगर इधर उधर होता है ना तो बहुत पंचे नाराज हो जाते हैं। ये देखो बहुत सारे हमारे पास मेल आए हैं, ये शैलेश कुमार भैया इनके मेल पढ़ा जाए।
0: अच्छा मेल आईडी बताने की जरूरत नहीं रहते, लेकिन जो नए श्रोता पंचायत हैं उनके लिए बता देते हैं, fmakashwanilakhnow@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है। कौनो बात कहा चाहता है कार्यक्रम से संबंधित, हमारे सबसे संबंधित, तो आप जरूर लिख के भेजा। के मेल आवा जी,
1: हाँ ई आवा है नीना दीदी, अंजू दीदी का राम राम, सभी श्रोता पंचन का भी राम राम। आज की जी मेल बहुत अच्छा लगा, अच्छे गाने सुगंध माटी कार्यक्रम के इंतजार करत रहे, आपकी आवाज सुने के और सारा पीहू मन रोशनी बबीता, अच्छा अच्छा ये नाम है सारा पीहू मनु रोशनी बबीता स्नेहा वंदना पूजा अनीता तनु सब लोग कार्यक्रम सुन रही। रंजीत भाई आपका चरण स्पर्श बोल रहे हैं, अंजू दीदी से कह दो जल्दी जल्दी आवा करो और भूला ना करो अंजू भाई।
0: अरे काहे भूला बाबू,
1: अच्छा एक और पढ़ दे, विजयपाल यादव भैया आए रहे जब भंडारा हुआ रहा ना अभी मंगलवार का,
0: तो आपके साथ फोटो खिंचवा रहे डाले रहे सोशल मीडिया पर, बिल्कुल
1: विजयपाल यादव इनके रेडियो क्लब है, उनके साथ साथ देखो पोस्ट ग्राम व पोस्ट ललुआ लखीमपुर खीरी के हैं, इनके साथ बबलू यादव संगीता शर्मा और सब मित्रगण। लेकिन है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करे वाली दीदी का परिणाम पाए लगी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रोचक ज्ञान वर्धक है। अब हम खेत महन भैया ध्यान रखे हो, मिठास की फसल गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं और सब लोग सुगंध माटी के कार्यक्रम के आनंद ले रहे हैं, आप लोगों की मिठास भरी आवाज सुन के धूप जाऊन है दूर भाग रही, आप दिनों आकाशवाणी के नगीना बहुत मधुर बोलती हो, धन्यवाद थैंतु भैया।
0: अब ध्यान रखो, ऊंचा ऊंचा बांधे रहे हो,
1: और यदि हो सके तो जेड की दुपहरिया में पांव जले वाला गीत सुनवाए दो, बहुत गर्मी पड़ रही।
0: अच्छा चला देखा कोशिश की जाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद नीलू बहनी का भी नहों का। और देखा एक ऐसी जब मुनेश कुमार भैया का लिखा था, कहा था कि शादी वाले पंडाल तो उजड़ गए ठंडक पाकर, अब तो सूरज राजा लगे हैं सबको तपाकर है, और कहा थे कार्यक्रम सुगंध माटी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लागत है इनका, और कहा थे शादियों का झोंका तो लगभग निपट गया मगर गर्मियों का झोंका बड़ी मुश्किल से डाले मुश्किल में डाले है।
1: अच्छा।
0: हाँ भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर में सुनता है। हाँ।
1: अच्छा ये देखो ये विकास है कहा लिखी है कि ये लिखी है सफीपुर जिला उन्नाव से, लिखत है कि कार्यक्रम लाजवाब चल रहा झक्का सब सांग जौन है सांग सांग के सलेशन बहुत निक है।
0: अच्छा मतलब गाँव नहीं आए। हाँ। अच्छा देखा हम सब अंग्रेजी बोल रही थे।
1: अच्छा थोड़ा थोड़ा हम लोगों का आती है ना, ये देखो प्रमुख कुमार है, अंजू दिदिया नीना जीजी गुड मॉर्निंग राम राम नमस्कार कैसी हो दोनों, लेकिन 28 अप्रैल को लुधियाना से अपन गांव आए रहे, 29 तारीख का बाइक से हमारे एक्सीडेंट हुएगा, हमारे चेहरे की दो हड्डी टूट गया ऑपरेशन था, अब तक टाका नहीं कटा चेहरे पर पट्टी बंधी भाई है, यही कारण आपके प्रोग्राम से नहीं जुड़ पाए, 27 मई का टाका कटी, ये समय हम अपन घर के बरामदे में लेट के

0: प्रोग्राम बड़े स्पीकर पे सुन रहे हैं भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। राम राम, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओ, दुआ है तुमका और बिल्कुल नीक हो जाओ जैसे पहले रहे हो। यही भी देखो प्रमुख कुमार भैया कहा जाते कि हेलमेट लगाए के चलो, सड़क पे निकलो तो बहुत भड़बड़ाओ ना, घर में भी तो मतलब पटाए के बैठा था तो बाहर जब निकला तो कहा इतनी रोड रेस में लग जाते। सबके लिए संदेश है जो हमारे श्रोता पंची कार्यक्रम सुन रहे हैं कि जब सड़क पे निकलो तो ये जरूर ध्यान रखो कि घर में कोई तुम्हारे इंतजार कर रहा है, तुम्हारी फैमिली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और प्रमुख कुमार भैया हमारे पूरी टीम की ओर से आप सबका आपका शुभकामना, बहुत जल्दी नीक हो जाए और ध्यान रखे अपन। और देखा रमा शंकर भैया हमका सुनता है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में और गुड मॉर्निंग भेजे हैं बस खाली, और तो कुछ नहीं लिखे हैं लेकिन कार्यक्रम सुनता। मोनू भैया का कहा था माटी सुगंध प्रोग्राम में अंजू बहनी और नीना बहनी का प्रणाम, और हमारे नानी की तरफ से भी राम राम। अवधि भाषा में ये प्रोग्राम बहुत नीक लागत है, सुनने में आनंद बहुत आवत है सबका। और नौतपा के बारे में नानी जी बतावत रही, नौतपा भी बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताप दो की बाजी जलर हरे दो बिस्वर दो वाय। और कहा थे कि जैसा कि प्रसिद्ध दोहे में बतावा गया है कि अगर ये नौ दिन न तपे तो चूहों टिड्डियों कातरा कीटों और विषैले जीवों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि वे फसलों और इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। प्रकृति इस तपन के जरिए उनकी आबादी को नियंत्रित रखती है।
0: देखो अंजू बहनी, यही बात हम कहा कि जो प्रकृति है वो सब चीज के नियंत्रण रखती है और प्रकृति जो है संतुलन है ना। तो जैसे नानी बताई ये घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। यही में कहा जाता है संयुक्त परिवार में रहो और सुख दुख जाओ।
1: नानी राम राम भाई, नानी बहुत धन्यवाद।
0: राम राम इनोतपा के बारे में बताएं, इंटेलिजेंट नानी।
1: सही कहे हो, इंटेलिजेंट नानी है नानी। हमरे सबकी तरफ से धन्यवाद बोल दिया।
0: हाँ, ई अशोक कुमार है, राम राम लेकिन है रायपुर उडारा मेटवली लखीमपुर खीरी से, लेकिन है हाँ हाँ लेकिन है कि का बालिस्तर राज चाचा नियामत रेडियो सुनते हैं। हर घंटे में देश विदेश की जानकारी मिलती है, प्रोग्राम अच्छा चल रहा, मैं पढ़ने का आजाद क्या अंदाज अच्छा मेरे पढ़ने का अंदाज अच्छा है। सॉन्ग जो उन्हें पसंद आ रहे हैं भैया, तो उन्हें हम लोग सॉन्ग बजाई था सॉन्ग जी का कहा जाता है गाना गवाई, यही लिए बजाई जाती कि तुम आप पंचे जो उन्हें पसंद रहो। हम लोग जो 100.7 FM रेनबो पर आता तो आप सबका पसंदता बांटे के लिए आता है और ये प्यार मोहब्बत बांटे की चीज होती है। आज के दिन आप दो चार मनाई का पकड़ लो और उनका प्यार है बांटो, लेकिन देख लियो कैसा प्यार है, मतलब कौन का ऐसा वैसा ना हो को छेड़े उड़ो ना भैया। नहीं कहो कि नीना जी कहें रखे प्यार बांटे चलो, एक गाना है हम तो याद किया प्यार बांटते चलो।
1: लेकिन ए जी जी, प्यार प्यारी वाली जो हमारे मतलब जैसे श्रीमती जी रहा है श्रीमान जी के, और नैहरा जब चली जाते वैसे तो सब सोचा थे मेरी बीवी मायके चली के बड़ा प्रसन्न होते हैं, और दिन में औकात याद आ जाते
0: हैं। ये शब्द के इस्तेमाल ना करो,
1: मतलब पता चल जाते कि हमारे हमका जो बना बनावा खाना मिल रहा है, अब खुद रोटी बेलक पड़ती है मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है। एक दिन बड़े आनंद से पेले थे, और फिर याद आवा थी ए मैडम जी कब आ रही हो वापस।
0: ये जो टिफिन उफिन मन जाता है ना, ये मेरिया घर की बनाए के दे थी उम्मा, देखो खीरा काट के रख दे, मूरी काट के रख दे, टमाटर काट के रख दे, एक नींबू आधा काट के रख दे, और ये सब एक मेरिया एक सुगण ग्रहणी कर सकती है। और ऐसे ही देखो एक मेल पर आएगा, ये मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से सुन रहे हैं, कहीं ने सुगंध माटी की कार्यक्रम प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगा थे। ये प्रोग्राम सुन के हमको अपने गाँव की याद आ जाती, जो गाने बजाए थे बिल्कुल गांव पहुंचाए देते। मैं बाराबंकी के छोटे से गांव रजा कटरा अहमदपुर का हूँ। धन्यवाद भैया, आप हमका इतनी दूर थे, यानी मोहम्मद आसिफ जी हैदराबाद तेलंगाना से हमका मेल करें। ये सावित्री देवी यहू का पढ़ लो बहनी।
1: अच्छा देखा, हम तो मेल पढ़ते हम तो सोचते रहे कि एक ठीक गाँव नहीं सुनाई दी पहले,
0: अरे सुना
1: पहले गाँव नहीं सुनाई दी फिर बाकी सबके मेल पड़ी जाए। तो चला गाँव नहीं सुना और हमें गाँव कहा जाता है यो सुना फिर है।

0: घोड़े गिरे तो हाँ बताओ नहीं रहना चाहूँ
1: देखो अंजू बहनी तुम एक बात सुरमा करे रहे हो कि जब मैके मतलब जब हम छोटे रहें तो ऐसा धमा चौकड़ी करत रहे अपन घर मनानी के घर जाते रहे और बड़ा मजा आता रहा मौसी उसी तमाम तने मतलब तमाम मौसी रही तमाम तने की नहीं वैसे तो तना तना के मनाई
0: हमारी छठी मौसी
1: तरह तरह के मनाई होते उनके विचार अलग अलग होते हैं लेकिन बात वहीं तक नहीं ना देखो मनाई होता है बेटे वह बड़ी होती है उनकी शादी ब्याह होता है वो अपन नैयर का छोड़ के अपन ससुर जाती है और एक बात हम कहना चाहते हैं अपन सोता पंचन से कि देखो जब बिटेवा का इंतजार करते हो कि बिटेवा आई तो फिर यहू सोचो कि जो आपके घर में बिटेवा आई है ना बहुरिया बन के वह का उस समय भेज दे तो नैयर जायका ये सब तालमेल से घर परिवार की जो है गाड़ी चला थी आप पंचे यही सोचा था ना कि आजकल लड़का बच्चा जो है साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी लड़का बच्चन के विचारन से भी अपन विचार का मेल खाओ मतलब कि अपन उनके विचार को खा मतलब एक बीच का रास्ता निकालो ऐसा थोड़ी होता है कि केवल अपन बिटेवा का इंतजार और का कहते बहुरिया से कि तुम खाना बनाओ और खाना तुम हमारे बिटिया आ रही दमाद आ रहा जमाई आ रहा है तो कौन खाना कौन बनाए ये सब बातें अच्छी नहीं ना घर परिवार की गाड़ी तबे चलाती और एक और बात बता दी कि संयुक्त परिवार टूटे का यही एक नतीजा यही एक कारण है कि हर इंसान ये सोचा था बिटेवा तो अपन ही लेकिन बहुरिया जो उन्हें पराई है
0: देखा जैसे प्रकृति के संतुलन की बात करूं ना जी वही तरह परिवारों में संतुलन बहुत जरूरी है ना अच्छा यही कहानी बयां करती है ये वाली गांव नहीं एक सुनाई और बाद तो बहुत श्रोता पंजन के ईमेल हाँ, हाँ,
1: ठीक है
0: वो बजावा जाए हाँ सुनावा जाए

0: अरे भैया चेन और साड़ी वाले ना दिया भले, तू 10 रुपया विदाई के धे दिया ओकरे हाथे में, लड़के बच्चा के बहनिया के हाथे में, लेकिन प्रेम सम्मान रखा। हाँ,
1: लेकिन, हाँ। लेकिन अंजू बहनी हम तुमको ये बताई कि हाँ। कुछ बहनिया ऐसी होती हैं कि लिस्ट लेके होती हैं कि हाँ। यही सामान लेवा जाए, मतलब हाँ। ले जाए, है ना, मतलब एक ताना से कहा जाए तो मुँह से आती है ना, टीका कहा जाता ना उदी में मुँह से थी। तो देखो बहनियन का हम कह रहे हम कोई की बहन है कि हम कहा प्यार मोहब्बत आपस में बना रहे और अच्छे विचार रहे और यही मतलब यही सही है। और ये जो उन्हें गिफ्ट वुफ्ट होता है, चैन दे दे, अंगूठी दे दे, पायल बिछिया, भौजाई का मतलब कहो कि ये बड़ी नीक लग रही, यही उतार के हमका दे दे, तो अच्छी बात
0: है। जो उन प्रेम से अपनी खुशी से दे दे वो हम खुश रहो।
1: एक बात और कहना चाहता हूँ, जो तो तुम घर परिवार की बात बता दी हो कि भाई भौजाई जी मतलब जो जो कुछ भी दे दे उपहार स्वरूप बहनी का, तो उम्मा खुश रहेगा चाहिए। आजकल जो हमारे बहनी लोग हैं बड़ी बड़ी, देखो तुम रील वील देखे हुई हो कि मार बाइक पे और गाड़ी पे बैठ के चौपहिया पे और लहंगा वंगा पहन के झकास रील बनाए रही। हम बहनी लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो सब कुछ करो लेकिन अपन जीवन की रक्षा सुरक्षा सब आपे के हाथ में है। ये जो रील के लिए ये कौन कौन के कितने व्यूज बढ़ाए और कितने घटाए ये सब मैं कुछ नहीं रखा है। जीवन अनमोल होता है, ये सब हमेशा जाने हो और ये अच्छी बात नहीं ना, कानून के पालन भी करो, रील वील बनाती हो तो, है ना, तो
0: सही
1: हाँ ये सब करना बुरा नहीं ना, लेकिन ये जानो कि अगल बगल में 33 ट्रक चल रहा है ना, गाड़ी चल रही है,
0: अपन सुरक्षा सड़क पे चले वाले बाकी मनाई है उनकी सुरक्षा,
1: बाकी मनाई की सुरक्षा। और लड़का बच्चन की अगर बात करी, देखो तुम घर परिवार की जब बात करती हो कि बचपन याद आता है और पेड़ के आम के पेड़ की डाली जो उन्हें टूट गए रही, धमाक सब गिर गए रहे और नानी जो उन्हें संटी से बहुत हम पिटाई करे रहा, लेकिन इनके साथ साथ यू है कि जो उन लड़का बच्चा है उनका संभाल के रखा हो। इस समय गर्मी बहुत ही, जो चुप्पे से निकल के तालाब वाला में नहाए ना जाए, नहीं पता चला कि पता चला कि गर्मी की छुट्टी मनाए आए हैं, नातिन है, पोती है, कोई भी,
0: अच्छा ज्यादा मन इकट्ठा होते तो लड़के बच्चन के लापरवाही हो ही जाती,
1: लापरवाही हो जाती, लड़का बच्चा भी यही कि एक रत्ता ढूंढ है कि हम इधर उधर हो जाए और सब अपन देखो सब अपन कंफर्ट जोन जोन है कि जिम्मा उनका मजा आए। दो चार लड़का बच्चा छह साल जहाँ घर परिवार के बराबर के मतलब हम जोली के भाई तो वही करप है, तो लड़का बच्चा के जरूर ध्यान रखे हो, खान पान के ध्यान रखे हो और देखो ये मेलों के ध्यान रखो।
0: अरे दैया जिज्जी का बताई, सावित्री देवी के बेला पढ़े वाली नहीं ना, का लिखे हैं?
1: हाँ सावित्री देवी लिखे है, देखो विविध भारती भी करती है, गुड मॉर्निंग कैसी हो दुनिया, और ये लिखे है अर्जुनपुर से, बरगदी अर्जुनपुर है, भरतपुर इनके गांव है और वहां से लिखे है कि बहुत अच्छा नीक कार्यक्रम लग रहा, भगवान हम लोगों का सुखी रखे, हम लोग सुखी

0: रहना चाहा तुम पंचे, हम लोग सुखी रहना चाहते तुम कभी पंचे कभी सुखी रहे के लिए हम लोग इनसे
1: और का
0: आशीर्वाद दे।
1: और कहा थी दीदी वाला गाना ऐसा कब फिर से सुनवा दे जय मैं सब भगवान के नाम। अरे बिल्कुल सुनोगे, अगली बार आओगे तो जरूर सुनोगे। अच्छा कोमल तिवारी बहनी कहा थी नीना दीदी और अंजू दीदी बहुत बढ़िया नोक जोक आपकी लग रही है, बड़ा नीक लगता है। और आप सभी को प्रणाम भेजे हैं कैसरगंज बहराई से कोमल तिवारी जी।
0: कोमल तिवारी जी भेजी नहीं, देखो मोहम्मद आसिफ भेजी,
1: इनके मेल पढ़ चुकी हूं।
0: अरे मोहम्मद आसिफ का फिर से आएगा मेल।
1: अरे भैया वो दाई मेल कर रहे थे,
0: अरे हद हो गई भैया, इक्के नाम करो।
1: हां और
0: बजे सिंह टीपू है इटहुआ कैसरगंज बहराई से, गन्ना के खेत के पिक डाली ना। लेकिन खेत में गन्ना के खेत है, पानी से सिंचाई कर रहे हैं, बेल खाए रहे, सुगंध माटी का आनंद ले रहे हैं। श्री मद भगवत कथा के श्रवण पान करत हैं और कल से आरंभ हुई कथा। भैया राम राम हम की तरफ से एक मतलब हम प्रणाम कर लियो,
1: जमाए कथा
0: हाजिरी लगा दियो। बजे सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच के हैं।
1: अच्छा मोहिनुद्दीन कोटरी से खैराबाद सीतापुर से सुनता है, नमस्कार भेजे, कहा था प्रोग्राम धमाकेदार चल रहा है।
0: अरे भैया कितना
1: थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना बनता है,
0: बढ़ा दो भैया बढ़ा दो, लेकिन ये देखे कि ट्रैफिक वैफिक पर तो नहीं है, कान में लगा के सुना तो
1: मोहल्ला वालन का जो है ना दिक्कत हो जाए।
0: गुलाबशाह सिद्दीकी है लेकिन है कि नीना अंजू दीदी, नीना दीदी को नमस्कार और अच्छा लग रहा है। गलका हाँ कहीं ना कि हमने
1: मायके गई थी,
0: मायके गई थी और खाई ली ना गलका, बहुत अच्छी बात
1: है, अम्मी से बनवाए रहे।
0: हाँ,
1: गुलाबशाह बहनी आपका नहीं बनावे आते, देखा नीना जी रेसिपी बताए दे रही है।
0: मिसेस गीता सेठ है, एफएम की दीवानी लिखी है, ऐसे लिखे ना अमिया की गलका बनाए रही रहन हम और उनमें गुड़ धनिया मंगरेल सौंफ लहसुन डाल के बहुत नीक बन रहा। बहनी देखो लहसुन तो हम नहीं सुना है लेकिन अब तुम लहसुन डाले हो तो तुम जानो, हर चीज में लहसुन नहीं डाला जाता है और खाए रन बहुत बहुत नीक लग रहा। अरे नीक तो लगी लेकिन लहसुन हम नहीं सुना भैया, कहो ऐसी रेसिपी हो तो बताए, कहो मेल करके की गलका मगर लहसुन, ये तो बड़ी बात है भैया।
1: प्रसाद वर्मा भैया कहते हैं कि आप लोग जिस तरह बात कर रहे हैं हमें जानकारी दे रहे, मुंह में पानी आ रहा है, रामपुर कटरा बाराबंकी में बताओ।
0: पिंकी बारी बहनी है लेकिन है कि धमाल जेठ के घाम में दाल भात के स्वाद निराला ला गए, सत्तू के घोल से तन मन ठंडावा पावे, ननिहाल के अंगना में बचपन फिर मुस्काए, अम्बवा के डाड़ तले बैठी मीठ आम खाए, अंजू मैम और नीना मैम के बतियन ऐसन प्यारी जैसे लू के बखत ठंडी छाव नहीं आ रही।
1: सुंदर सुंदर मेल कई दे धन्यवाद। अच्छा जावेद अख्तर भैया रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ में सुनता है, जानती है, कहते हैं शमसुल कमर राही बेगम रुखसारो सुनता है बहुत ध्यान से, हम दोनों जनी के बत कही सुनता है और इतनी खुशबू बिखेरत है कि मन तन मन सब तरोताजा हो गवा है, बताओ।
0: और देखो ये राम शंकर, देखो राम शंकर जी कहाँ से, अच्छा बाराबंकी से। राम शंकर जी नौ का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये है सुगंध माटी कार्यक्रम में लिखी ने आज की चर्चा सुन के बहराई से एक पैगाम, आदरणीय एफएम रेनबो की टीम राम राम नमस्कार, बहराई से आपका श्रोता माधव राज मेल भेज रहा हूँ, अभी इस वक्त सुगंध माटी सुन रहा हूँ, आप लोग आम के गलके पर चर्चा कर रहे हैं सुनकर मन गदगद होगा, भैया गलका हम लोग अच्छा लगा था। अच्छा हमको ये सुनकर बहुत खुशी भाई की आप लोग इस स्वाद की बात करो, संयोग देखो की आज हमारे घर पर बड़े चाव गलका बना हुआ।
1: अरे तो ये कितने जने के लिए गलका बन गया। अरे
0: और अभी हम रेडियो सुन रहे हैं और साथ ही साथ आपकी प्यारे प्यारे कार्यक्रम की सराहना करत भाई ईमेल लिख रहे हैं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग एक साथ बैठ के अपन माटी के खट्टे मीठे स्वाद के आनंद ले रहे हैं, सहज कर रखा था ना तुमरे मतलब सुगंध माटी की जो कार्यक्रम है और हमारी संस्कृति हर एक स्वाद का सहज के रखे की बात, दिल से दुआ मेरी सुगंध माटी का के मतलब इस अंदाज को आज के कार्यक्रम लगा है झकास, हमने संस्कृति और खान पान की सोंधी आदन का रेडियो पर इतने खूबसूरत अंदाज में जिंदा रखे के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का ये सुरीला सफर हमेशा यूं ही महकत रहे, आपके अपना हम नवा श्रोता
1: माधव राज भैया पता ग्राम गोबरा एतिहा थाना रानीपुर जिला बहराइच से, बहुत बढ़िया बात कही भैया, इतना मन प्रसन्न हो गया कि बढ़िया गौ नहीं सुनाई देते हैं आप सबका।

0: अब भैया देखा हर प्रांत के हर देश के हर जिला के कौनो न कौनो विशेषता होते हैं और कुल सब जगह की सब चीज नीक होते हैं और कार्यक्रम सुगंध माटी की में यही लिए हम सभी अवध में सब कुछ समेट के लेके आई थी ना जी।
1: बिल्कुल अपनी देखो माटी की सुगंध का भूले करना चाहिए और यही तो हमारी पहचान ही अपनी संस्कृति की और ये जानो कि जो मनाई अपनी जड़न का अपनी पहचान का अपने घर परिवार का भूलत है वो कहीं प्रसन्न नहीं रहा था जी। ये बताए दे हम
0: बहुत बहुत सही कहो ए जी जी मेल तो बहुत आए गए हैं सब
1: पांडे प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा है जुगलबंदी कमाल झक्कास लग रही है
0: धन्यवाद अमरावती महाराष्ट्र में सुना थी हम का
1: अच्छा अमरावती से अच्छा ई सुगंध माटी हिस्टोरिया चमकस झक्कास बिंदास और दिल भी भेजे ने हमरे पास भी दिल है भैया लेकिन दिल लेकर होता है उदय चुके हैं रोशनी रावत ये लेकिन हम जो जी
0: काओ काओ बात करे तू जी है सुना तो ही है
1: जाना एक दिल होता है एक प्रेम होता है एक और आपके ऐसे प्रोग्राम में चार चांद नहीं पूरा चांद सुगंध माटी में लग गया बहुत अच्छा लग रहा नीक लग रहा गौ नहीं बहुत लाजवाब सुन के मन प्रसन्न बस सुनत रहो और अंजू रावत ग्राम वापोस बमना तहसील सभीपुर उन्नाव से लिखिन है चंडीगढ़ से सुन रहे प्रोग्राम हमारी बड़की नीलू दीदी नीलू शर्मा और छोटी बहन बबीता राव दोनों सुनते हैं आपका राम राम बोले
0: ना देखो बबीता राव आए गई पता कि बेली कला पोस्ट सचरावा गोसाईगंज नवाबक्षर लखनऊ से अब मैम जी आपका मॉर्निंग से सुनती हैं सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे आपका सुगंध माटी की प्रोग्राम में बहुत नीक लगता है जब आपकी जितनी तारीफ की जाती कम है प्रोग्राम हमेशा काबिले तारीफ होता है अवधि बहुत पसंद आया इनका कहा थी सुगंध माटी की प्रोग्राम सुनना कबो नहीं भूलती इन्होंने सबके नाम लिखती है मम्मी पापा भाई रजनीश बहन विनीता रोशनी रावत नीलू दीदी सब बड़ी शिद्दत से सुन रहा है प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं बस ऐसे
1: ये देखो ये विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से लिखी है माटी सुगंध करे वाली दोनों दीदियन का प्रणाम सादर प्रणाम प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत नीक लग रहा अरे का बात ही और हम लोग प्रोग्राम का सुन सुन के आपका राम राम कर देखो भैया राम राम राम ऐस है कि राम तन मा है राम मन मा है और राम राम करत रहो भैया सबे का राम राम
0: और तेज बहादुर भैया भी सुनता है बहुत सुंदर प्रस्तुति इनके मुँह में पानी आएगा सुन के अमिया जामुन कही था बेल सब बहुत सुंदर फल होते सबके याद दिलाए दे नेहा वर्मा भी सुप्रभात भेजे हैं हरदोई से अर्पिता अर्षित हर्षिता अंजलि सुधाकर कोमल सियाराम गौरपुर बमना खेड़ा जिला हरदोई से सब मजा लेता है
1: प्रिंसी सिंह भी भेजी है लिखे ने विजयलक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से नीना जीजी और अंजू बहनी का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा माइक वाइक कर रही ना हम लोग वहीं पहुंच जाए
0: हम सब इतनी तारीफ आई गया अच्छा राम मोहन गुप्ता भैया जो ना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में कविता भेजे थे देखा यहू प्रोग्राम में भेज दिया कविता कहा थे सुगंध माटी केर खूब भावे जियारा लुभावे आप दोनों के बत कही बहुत है भले लागे कौनो लोक संस्कृति का गीत सुनाई दियो साची कहियो औरा औरो भला लागे।

0: भावे और राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरी से, बहुत धन्यवाद भैया।
1: देखो ये एमके राज है, इनके हम लोग मतलब उनका शामिल कर रहे हैं मेल। और भैया देखो हम नाम पढ़े दे रहे हैं, कैसे बहुत मेल की है भरमार। राजेश कुमार भैया है, यहू पर नाम भेजी ने। सत्यपाल पाल है, यहू पर नाम नमस्ते भेजी ने। और रॉयल अमित यादव है, ज्योति मौर्य है, अदिति सिंह है, और सबका हम राम राम प्रणाम। इतना प्रेम बरसायो कि आज गलका खाए की भी जरूरत नहीं ना।
0: और क्या, वो मिठास भूल गया, मेल छूट गया। अगले कार्यक्रम हम जरूर सबके मेल पूरा पूरा पढ़वे भाई। और नीना जी अगले सनिचर का फिर आऊ है, जावा न करा।

0: कि आज गल का खाए की भी जरूरत नहीं ना।
1: हाँ, और क्या, वो हम मिठास भूल गए, जैसे मेल छूट गया, अगले कार्यक्रम में हम जरूर सबके मेल पूरा पूरा पढ़वे भाई। और नीना जी अगले शनिचर का फिर आऊ, जावा न करा
0: बच्ची, देर देखो बहनी हमका ऐसे न बुलावा करो, हमका बड़ा गर्मी लागत है।
1: अच्छा जी जी, तब तक गाँव नहीं सुनाई, तनी गल का निकाल के देख खा।
0: अच्छा अच्छा, अब देखो कार्यक्रम करे के बाद चाटे हो।
1: ठीक है ठीक है बहनी, लेकिन जाऊ ना, हमारे गलका वलका सब यही दे दियो, और जो नाम के पना लाए हुआ है। अच्छा, पंचर का राम राम बोल देते नहीं
0: क्या? देखो सोता पंचर, हम तो आपके से कह रहे राम राम और यहाँ से जा रहे, लेकिन आपका कौन है चैनल पर मिला वो जरूर अपन स्वास्थ्य के रखो ख्याल, और यही हम बतावा है कि आपका गर्मी से बचे के उपाय करे का है, ऐसा सब व्यंजन खाए का है, भोजन खाए का है जो आपको गर्मी से बचावे और घर परिवार आपके स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना के साथ देव नीना सुनकर
1: का अनुमति, और हमका भी अंजू शुक्ला भी एक कार्यक्रम से, लेकिन अगले घंटा रहा वैसे मत रहा एफएम रेनबो।
0: सबका नमस्कार, तो कभी
1: नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। इस रोजगार मेले का आयोजन राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और बीएल वर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित झांसा गांव में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सो रहे परिवार को कुचल दिया। हादसे में घायल एक महिला को गंभीर हालत के चलते लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता

आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा और प्रयागराज के 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म जिले बने रहे। गर्मी को देखते हुए बलरामपुर में जिला प्रशासन ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी इंतजाम किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है संदेश आपके गीत हमारे।

नहीं दोस्तों, बुलंद हौसले से लिखी जाती हैं तकदीरें। किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं होती है, तो बस हौसला बरकरार रखिए। गाने तो एंटरटेनमेंट के लिए हम बजाते ही रहते हैं, और इस प्रोग्राम में, इस घंटे में कुछ ऐसे गीत जो शायद आप सबकी पसंद बनेंगे। और 100.7 FM रेडियो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, आपका अपना प्रोग्राम है, गीत हमारी पसंद के, संदेश आपका होगा। fmakashwanilakhnow@gmail.com पर हमें मेल कीजिए, या फिर 0522 2238 845 या 0522 2238 852 पर हमें फोन कीजिए। मैं हूँ आज अंजू शुक्ला, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंस अगेन आपका स्वागत है। और 11:06 हो गए हैं 6 मिनट।

0: जी किशोरदा की आवाज में इतना पावरफुल गाना सुन लिया कि क्या ही कहा जाए। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर कोई है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना, कहां से बात कर रही हैं?
1: प्रीति बिजनौर से।
0: प्रीति जी बिजनौर से बोल रही हैं, कैसी हैं प्रीति?
1: जी मैम ठीक है, गर्मी बहुत।
0: तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रही हैं?
1: मैम कुछ नहीं, हम आज बारिश में घर पर ही रहते हैं।
0: ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, और अगर सुबह और शाम तक उसको काम को टाला जा सकता है तो शाम को निकलें, है ना?
1: जी मैम।
0: क्या कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से संदेश के तौर पर जो आपको सुन रहे हैं?
1: संदेश यही है कि बच्चों को धूप से बचाएं, कुछ भी ना निकले, पक्षियों के लिए पानी दाना रखें, और पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, पेड़ पौधे कटाई नहीं करें।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है आपका और बहुत ज़रूरी मैसेज है आजकल के दौर में, इस बात पर सभी को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रीति हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी प्रीति हमारे साथ। रिंकी पिंकी ने भी फ़ोन किया था, लेकिन देखिए हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जो हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे बहुत प्यारे हैं, रिंकी पिंकी हैं, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो नियमित रूप से सभी प्रोग्राम्स में फ़ोन करते हैं, लगभग 11 से 12 भी उनकी बात होती है। प्रोग्राम हेलो एफएम जो शाम को 7 से 8 आता है उसमें भी उनकी बात होती है। तो बस हम उनसे इतना ही निवेदन करेंगे कि थोड़ा अंतराल रखें अपने कॉल्स को लेकर हर प्रोग्राम में, चाहे आप सुबह बात कर रहे हो या शाम को, क्योंकि चैनल तो वही है ना। और ऐसे में क्या होगा ना कि हमारे जो श्रोता है उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा और हम बहुत और सारे प्यारे श्रोताओं तक पहुंच पाएंगे जो अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारा भी कॉल लग जाए लेकिन उनसे बात हो नहीं पाती है। तो हमारा भी दायरा बढ़ेगा, आपके अपने एफएम रेनबो का दायरा बढ़ेगा। सुनते बहुत लोग हैं लेकिन सबकी यही शिकायत रहती है कि आपके प्रोग्राम्स में तो बस वही कुछ गिने चुने श्रोता ही हमेशा फोन करते हैं, उन्हीं से हमेशा बात की जाती है। तो देखिए हमें तो किसी का ना नंबर दिखाई पड़ता है यहाँ पर हमारे सेट पर, ना हमें किसी का चेहरा दिखता है, हम बस रैंडमली स्पीक करते हैं और आपसे बात करते हैं। तो बस हमारे नियमित जो श्रोता है, अगर आप एफएम रेनबो से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप सब, हमें पता है। हमारी रिंकी विंकी भी बहुत प्यारी है हमारे लिए, जैसे अभी उन्होंने जैसे ही मैंने बोला तो उन्होंने कहा मैम जैसा आप कहें, तो मैंने कहा आपको से कुछ दिन बाद हम बात करेंगे, तो उन्होंने तुरंत फोन रख दिया। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिल से हमारी रिंकी विंकी के लिए भी, और बाकी जितने भी नियमित श्रोता सुन रहे हैं उनसे भी बस इतना कहना चाहूंगी कि एक ब्रेक लीजिए, गाने सुनिए और बाकी लोगों को भी सुनिए, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या मैसेजेस आते हैं और कहां कहां से हमारे पास लिसनर्स आ रहे हैं, इन सबको भी सुनना बहुत जरूरी है। फिलहाल मेल्स की तरफ रुख करते हैं, मेल्स बहुत सारे आए हैं।

शुरुआत करते हैं पिछले प्रोग्राम्स में जो आपने मेल्स किए थे, जिनके मेल्स छूट गए थे, वैसे सबके मेल्स हमने लगभग पढ़ लिए थे। नेहा वर्मा जी ने भी प्रोग्राम की तारीफ की थी और घर में सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। बबनाखेड़ा जिला हरदोई से इन्होंने मेल किया था और प्रोग्राम सुगंध माटी की प्रशंसा की, थैंक यू सो मच। इसके बाद प्रिंसी सिंह, आपका मेल हम पढ़ चुके थे, आपने भी प्रोग्राम गजब लग रहा है तारीफ की। राजेश कुमार जी ने दीदिया को प्रणाम, खुश रहिए भैया, बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए हमेशा। सत्यमपाल जी का भी मेल आया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा था। और झंझटी भैया को भी लाएं, देखिए झंझटी भैया तो इस महीने आए थे, अब अगले महीने फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। और इन्होंने कहा कि कई दिन से आपके माइक्रोफोन की आवाज़ अच्छा क्लियर नहीं है। ओके चलिए, हम आपको आपकी जो शिकायत है अपने इंजीनियर्स की टीम तक जरूर पहुंचा देंगे, उम्मीद है प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएगी। और रॉयल अमित यादव की आईडी से श्रेया यदुवंशी ने हमें मेल किया है कि अभी अभी पेपर देकर आए और गूगल पर सर्च किया 100.7 FM, आपसे जुड़ गए। और अंजू मैम, ऐसा रिश्ता हो गया है आपसे कि पेपर दे रहे थे तो भी, लेकिन मैम आपके ही लगा था कि ये प्रोग्राम निकल गया होगा। हो एग्जाम देते समय भी यही ध्यान आ रहा था, अरे ऐसा ना किया करिए भाई। आगे लिखते हैं कि खैर छोड़ो, अब राहत मिली, पेपर बहुत अच्छा हुआ और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गवनई नहीं सुनी आपकी एक भी, अच्छा तो आपने सुनी ली होगी, कोई बात नहीं। और नीना जी को भी आपने थैंक यू बोला है, थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, बस यही हमारी दुआ है। ज्योति मौर्य जी कैसी हैं आप, इन्होंने भी नीना जी को और हमें नमस्कार भेजा है। और अभी अभी ट्यून किया, प्रोग्राम मिस कर दिया, अरे वैसे कहती हैं कल का हम बना चुके देवा बाराबंकी से। चलिए थैंक यू। अदिति सिंह का भी मेल आया है, अदिति सिंह हर गाँव सीतापुर से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आज मैं गलका बनाऊंगी, मम्मी से बनवाऊंगी। अरे बना लीजिएगा, मम्मी की हेल्प कर दीजिएगा। और ये हमारा प्रोग्राम सुनते सुनते सिलाई कर रही है, वाह क्या बात है। और ज्योति मौर्य जी, आपने हमें मेल किया है देवा बाराबंकी से, और अदिति ने भी मेल किया हरगांव सीतापुर से। अंगद यादव जी का भी हमरो मैसेजवा पढ़ दिया, अंगद यादव जी आपका मैसेजवा कहाँ गए भैया, यही एक मैसेज मुझे दिख रहा है, और भी अगर कोई मैसेज था अंगद यादव जी तो हम तक पहुंचा नहीं। अच्छा मिल गया, आपने भेजा है आजमगढ़ यूपी से, नमस्ते मैम बोला है, और गाना सुन के हमारे धर्मपत्नी जी कहा था कि हम नैयर चला चली जावे, गाना सुन के मजा आएगा। अरे वाह क्या बात है अंगद यादव जी, आपका मेल पढ़ के तो मजा आ गया, काश हमने उस प्रोग्राम में ये मेल पढ़ा होता। खैर थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमारे पास मेल आया है उस्मान अंसारी जी का, इन्होंने भी नमस्कार आदाब भेजा है पूरी टीम को, और कहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड के साइड में खड़ा करके आपको मेल कर रहे हैं। हाँ ये जरूरी काम आपने किया, अच्छी बात है। सुबह से सुन रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों की बातें, चर्चा बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन की याद दिलाती है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मेल किया अटवा नैमिषारण्य मिश्रिक सीतापुर से, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से आपने मेल किया है। प्रमुख कुमार जी का भी मेल इस प्रोग्राम में भी आ गया है, वंस अगेन इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इन्होंने संदेश इस प्रोग्राम में दिया है कि अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग केवल तसल्ली ही देते हैं, साथ नहीं। लेकिन भैया वो तसल्ली भी ना बहुत बड़ा कारनामा करती है, पता है, वो तसल्ली आपको हौसला देती है, आपको भरोसा देती है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो अगर कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं होता ना तो अक्सर आप हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर आसपास तसल्ली देने वाले ही हैं, कोई इतना ही कह दे कि कैसे हो, हालचाल पूछ, या कोई सिर्फ इतना कह दे कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, फिर देखिए आपकी हिम्मत बढ़ती है, आप और बुलंद हौसले के साथ अपनी जो मुश्किलें हैं उसका सामना करते हैं और उन मुश्किलों को पार पाकर आगे निकल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख कुमार जी, आपका एक्सीडेंट हुआ था, हमें पता लगा उस प्रोग्राम में, आपने मेल किया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्दी से रिकवर होइए, जल्दी से पूरी तरह से फिट हो जाइए, अपना पूरा ख्याल रखिए बहुत सारा। रामराज जी, ओम गणेशाय नमः, आपने भेजा है संदेश, आपके गीत हमारे प्रोग्राम में, आपका मेल है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू जी, मनीष जी, नीरज, मधु, बजरंगी काका, पवन कुमार, सब सुन रहे हैं हमें। और इनका संदेश है कि लोग बाइक चलाते हैं, उनसे निवेदन है धीरे धीरे चलाएं, एक दूसरे को दिखाने में धोखा खा जाते हैं। हमारी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत सारा नमस्कार प्यार भरा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनवाते हैं, क्योंकि बाबू अंसारी जी, रवि कुमार, बोनू जी सबके मेल आए हैं, महेंद्र दीपन, वकील अहमद जी, राजेश कुमार, रॉयल अमित यादव, राम नरेश, तेज बहादुर जी, सावित्री जी, गुलाबशाह सिद्दीकी, विमल राजपूत, ये इतने मेल तो मेरे पास पहुंच चुके हैं, तो इनको हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक, आप सबकी रेडियो सेट पर, एंजॉय दिस।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे। 11:25 का वक्त हो गया है। मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला और हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखें किसकी कॉल लगी है। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नाम से तो मतलब आवाज से बड़ी सुस्त लग रही है, नाम बता दीजिए अपना। वैसे
3: जी, और मैम आपकी आवाज को क्या हो गया?
2: आपकी आवाज को क्या हुआ पहले बताइए
3: जी। आपकी आवाज को क्या हो गया?
2: मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है क्या?
3: नहीं, आज मतलब कुछ फंसी फंसी सी लग रही है।
2: नहीं, मेरी आवाज सही है। कुछ हो सकता है नेटवर्क में इशू हो, यहाँ के ट्रांसमिशन के नेटवर्क में, सिग्नल में, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। सुबह से ऐसा लग रहा है क्या? हो सकता है। और एक लिस्नर ने और कंप्लेंट किया है, तो हम उनको उन कंप्लेंट जो है अपने इंजीनियर्स टीम तक जरूर पहुंचा देंगे। फिलहाल बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बात करें और क्या कहना चाहती हैं, जल्दी से।
3: मैं सबसे बात करूँगा,
2: क्या बोल रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बात कर रही है?
3: मैं नई गड़ी धारा में जिला सीतापुर से बात कर रही हूँ।
2: सीतापुर से? अच्छा, क्या कहना चाहती हो?
3: जी, कहना मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जो लोग लिसनर शिकायत करते हैं कि मेरा कॉल नहीं लगता या मेरा कॉल नहीं रिसीव करते, तो लिसनर से ये कहना चाहूंगी कि सब लोग शिकायत न करें, सब लोग प्रेम व्यवहार से रहें।
2: अच्छा।
3: और शिकायत आप लोग करते हैं। हमने एक विद्यार्थी को सुना था कि एक मतलब लिसनर थे जो बेटा से थे, और उन्होंने शिकायत की कि सब लोग कॉल करते हैं, ये है। तो देखिए, हम सबका प्रोग्राम है, हम सबका चैनल है और आरजे भी हम सबके हैं। तो देखिए, इससे शिकायत ना करें। हाँ, मतलब मेरा कॉल नहीं लगता या वो लोग कॉल लगाते हैं या हम सबको मौका नहीं मिलता है।
2: लेकिन देखिए, आपने नाम तो अपना नहीं बताया, लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर शिकायत करते हैं तो शिकायत तो हम भी कर रहे हैं, और दिक्कत वही है ना कि नियमित जो लिसनर्स हैं जो हमेशा फोन करते हैं, उनकी वजह से जो हमारे नए श्रोता हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो वंचित रह जाते हैं इस मौके से। तो इसलिए अगर उन्होंने ऐसी शिकायत की तो वो उनका मर्म रहा होगा। आप सोचिए, कोई एक व्यक्ति घंटों फोन मिलाता है और उंगलियां दर्द होने लगती हैं, बाकी किसी की इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो उसको रिजेक्ट करके वो मिलाए रहते कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पहले हम ट्राई कर लेते हैं। तो उनकी भी उन भावनाओं को समझना चाहिए ना, तो बस इसी वजह से उन्होंने शिकायत की होगी, है ना?
3: लेकिन मैम जैसे, हाँ, अगर शिकायत करते तो प्यार से शिकायत।
2: अच्छा, तो वो रिसिया रहे थे, नाराज हो रहे थे का?
3: हाँ, वो मतलब ऐसे
2: गुस्सा तमतमाए।

0: हुए थे।
1: मतलब अगर उन्हें जो नियमित श्रोता है जिनके फोन लगते हैं वो मिल जाएंगे तो बस वो मतलब कुछ कुछ कर देंगे है। चलिए अच्छा ठीक है, आपका प्यारा सा मैसेज था जिसे हमने ऑन एयर किया, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: यस मैम, और मैम आपको मेरा कॉल रिसीव किया इसके लिए आपका बहुत बहुत
1: धन्यवाद। कॉल तो हम सबकी रिसीव कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।
2: नमस्ते
1: नमस्ते। तो भाई ये तो हम थी हमारे साथ लिसनर, और भाई नाम तो नहीं बताया इन्होंने लेकिन आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिलहाल एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, नाम बताएं अपना। जी नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट परसंदी कैसरगंज बहराइच से।
1: सत्यम जी बहराइच से बोल रहे हैं, कैसे हैं सत्यम? सत्यम जी जल्दी से बात कीजिए अगर आपको आवाज मिल रही है, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और बहुत सारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं।
3: जी थैंक यू मैम, मैं संदेश देना चाहूंगा मैम कि जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है रेनबो में कि नंबर जो बताए जाते हैं वो नंबर मतलब नहीं होते हैं, कभी कभी नंबर बदल जाता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वो भी नंबर कभी कभी दोहरा दिया करें।
1: अच्छा,
3: कॉल आज कई दिनों के बाद लगा है।
1: तो आपने किस नंबर पे मिलाया है?
3: जी आज 845 और लगा, इससे पहले 845 और 852 पर एकदम लगता ही नहीं था, रिसीव ही नहीं होता था, ऐसा लगता है कोई दूसरे नंबर पर रिसीव हो रहा है।
1: अच्छा,
3: हालांकि मैं मेरा कोई शिकायत नहीं है मतलब।
1: चलिए बहुत बढ़िया, आपने शिकायत नहीं की, आपने सुझाव ही दिया है, बहुत अच्छी बात है, और ये सुझाव आपका आज का संदेश है ना। थैंक यू सो मच सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और भाई ये सत्यम जुड़े हुए थे, और उसके अलावा अब हमारे पास ईमेल्स पे बहुत सारे लिसनर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो आपकी ईमेल्स हम पढ़ेंगे। इस कट में सिर्फ मेल्स रहेंगे, फोन कॉल्स नहीं लेंगे, तो फोन मत ट्राई कीजिए आप लोग, है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी मेहनत बेकार जाएगी।

11:35 का वक्त हो गया है। इतने प्यारे से गाने के बाद क्या ही बोलूं। वैसे अक्सर ऐसे गाने जब हम सुनते हैं तो उसी में खो जाते हैं ना, अच्छा लगता है। कभी कभी दिल को सुकून देने वाले ऐसे गीत को भी सुनना चाहिए। वैसे एफएम रेनबो सतरंगी चैनल है जहां पर हर तरह का एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट आप तक पहुंचता रहता है। और उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं वीकेंड की, तो शनिवार है सुगंध माटी की स्पेशल प्रोग्राम अवधि में आपने सुना ही। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपने रविवार स्पेशल प्रोग्राम्स की यानी संडे स्पेशल, तो बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है हेल्थ एंड फिटनेस, जो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप तक पहुंचाया जाता है। समय होता है 12 से 1 के बीच में। तो कल का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, गर्मी भीषण पड़ रही है, हम सब जान रहे हैं, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और गर्मियों में आप अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखें, अपने हृदय का, अपने दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखें, ये कल का विषय है कि गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें ख्याल और क्या गर्मी दिल पर असर डालती है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो कितना पानी पिए, गर्मी में कौन सा खाना बेहतर रहता है उनके लिए, और क्या धूप भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है। ये तमाम जो सवाल हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर चर्चा होगी। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर होंगे, विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर मनीष झा हृदय रोग विशेषज्ञ, और आप अपनी बातें, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं हमारी इसी माध्यम से, यानी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। इसके अलावा 0522 2238 852 या फिर 0522 2238 845, ये दो फोन नंबर्स हैं। तो याद रखिएगा कल का प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस दोपहर 12 बजे से 1 के बीच। और इसके अलावा उससे पहले 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के, और जिसमें जो आकाशवाणी से जुड़े जो महान विभूतियां रहीं, जिनका योगदान रहा आकाशवाणी में, एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया शुरुआती दौर से लेकर अब तक, उनसे मुलाकातें करवाई जा रही हैं। तो कल हमारी मेहमान होंगी महज

रवि जैदी जी सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका और आपसे भेंट करेंगी सुमोना पांडे जी। तो इस प्रोग्राम को सुनना मत भूलिएगा कल 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और अब हम बढ़ते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल्स की ओर, जहां पर बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है, नमस्ते भेजा है इन्होंने, कहते हैं कि मेरा मेल थोड़ा सा लंबा हो गया है, अपने हिसाब से पढ़ लेना, अब कहां कहां हमें साफ करते फिरेंगे। खैर लिखते हैं कि मेरा संदेश यह है कि आजकल लोग जो स्टोरी या स्टेटस लगाते हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी ये दिखाते हैं कि मेरे जीवन में कितना दुख परेशानी है, और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबके जीवन में दुख परेशानियाँ होती हैं, मगर फिर भी हंसी खुशियों की चाबी है, इसे कभी ना खोइए। जीवन में खुश रहना मस्त है, और इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच अहमदपुर बाराबंकी देवकली से, आपने हमें देवकली बाज़ार से हमें मेल किया बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कुमार राहुल रवि, अच्छा ये एक ही व्यक्ति का नाम है क्या? जी नाम बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, पहले उन्हें पढ़ देते हैं। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के नाम जानकर, और आप इससे भी ज्यादा अच्छा ये लगा कि ये मेल आया कहाँ से है। आपने हमें मेल किया है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस ऐसे ही सुनते रहिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, ठीक 2 बजे आएगा, उसमें भी जरूर मेल कीजिएगा। मोनू जी कहते हैं कि अंजू बहन जी आज पौधा तो नहीं लगाया, लेकिन एक पाकड़ का पौधा जो आंधी की वजह से झुक गया था, उसको हमने मिट्टी डालकर फिर खड़ा करने का प्रयास किया है, और आज भगवान का नाम लेकर लड्डू भी बंटवा दिया है। कहते हैं कि पाकड़ एक विशाल छायादार और अत्यधिक ऑक्सीजन देने वाला जुझारू वृक्ष है, पौधों की देखभाल भी करना जरूरी है। बहुत ही प्यारा मैसेज आपका, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही कहते हैं कि आम, जामुन, नीम, पीपल, पाकड़ ये लगाइए पेड़। ये जो एक पंच क्यारी हमारे यहाँ चलती थी, हम लोग लगाते थे, तो ये 5 पेड़ लगाते हैं, 5 पौधे, और ये फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और इनका जीवन भी बहुत लंबा होता है। हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत हितकारी होंगे। थैंक यू सो मच। और देखिए एक बढ़िया से पोस्टर की तरह एक नई साड़ी मिल गई हमको। पिछले हफ्ते ग्रीन साड़ी पहनाई थी और आज मरून कलर की साड़ी। अच्छा मरून कलर वाली सड़िया वाला गाना याद आ गया। मरून कलर की साड़ी में सजा धजा के हमारी पोस्टर फोटो के साथ एआई के माध्यम से हमें एक पोस्टर भेज दिया है। और महेंद्र दीपन जी, आप लोग समझ ही गए होंगे, ये वही करते हैं हमेशा। प्रणाम आपको भी, गुड मॉर्निंग। लखनऊ के गाने बहुत अच्छे लगे। आज का संदेश है कि डिजिटल जमाने में सतर्कता और समझदारी। अच्छा ये जब सतर्कता की बात आती है ना, तो एआई पर जब हम लोग अपनी फोटोज यूज करते हैं तो ये कितना सही है कितना नहीं, एक दिन मुद्दा लेंगे। तो खैर अब आपने इतने प्यार से बनाया है पोस्टर, तो हम इसको भी शामिल कर लेते हैं और स्वीकार करते हैं। डिजिटल जमाने में सतर्कता और समझदारी जरूरी है, और ये कहते हैं कि डिजिटल क्रांति के दौर में हम जी रहे हैं, जहां पर एक क्लिक में सब कुछ हाजिर है, लेकिन इस चमक दमक वाले जमाने में सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। भेड़चाल का हिस्सा बनना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बहुत सही बातें आपने कही, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। गलत क्लिक या अंधविश्वास आपको मुश्किल में डाल सकता है ना, वो वाले नहीं कि आप 100 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो ये होगा, एक अभी लाइक करो, क्लिक करो तो कोई अच्छी खबर आएगी। हाँ बहुत लोग कर देते हैं ना, फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, तो सावधान रहिए। और महेंद्र दीपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से आपका मेल आया है। और इसके बाद हमारे पास मेल है वकील अहमद जी का। इन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश ये कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, गर्मी बहुत तेज है, पानी की सभी को बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है आपका वकील जी, और अक्सर हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील अहमद मंसूरी जी। कटका हथुरी, जिला सीतापुर से साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, आप सब ने इनके नाम, इन सब के नाम आपने लिखे हैं। राजेश कुमार जी हमें लिख रहे हैं, वाह दीदी गाने मस्त बजा रही हो आप। अच्छा तो चलिए इसी बात पे एक और बढ़िया सा गाना सुना देती हूँ ना, उसके बाद आपके बाकी मेल्स हम पढ़ेंगे। तो 100.7 FM रेनबो को ट्यून करके रखिए, दाएं बाएं कहीं भी जाइए हमें अपने साथ रखिएगा, ठीक है। गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर बढ़िया वाला, और बहुत दिनों बाद इस गाने को सुन भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं। 11:42 का वक्त हो गया है। 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे जारी है।

FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। अभी आप सुन रहे थे स्टंट और वापस आते हैं, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे 100.7 एफएम रेनबो पर। बहुत सारे ईमेल्स हमारे लिसनर्स के। रॉयल अमित यादव कहते हैं कि इस महीने को जेठ नहीं कहते, अच्छे अच्छों के सिर पर। अच्छा, समझ गए, ऐसे ही इस महीने को जेठ नहीं कहते हैं, अच्छे अच्छे के सिर पर घूंघट आ जाता है इस मंथ में। बात तो आपने सही कही है भैया, सब घूंघट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही हाल होगा। आगे कहते हैं कि चांद से पर्दा आप भले ही ना कीजिए, लेकिन सूरज से आपको इस टाइम पर्दा करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग लखनऊ, प्रोग्राम छूट गया था पेपर की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत बधाई आपके, ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। और कहते हैं कि लेकिन हाँ, सुगंध माटी की प्रोग्राम वेरी नाइस, तीना जी की बतकही भी बहुत नीक लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया यदुवंशी हैं गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नगटुआ बाराबंकी से, आपने हमें मेल किया है। और देखिए फोन कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी फोन रिसीव करने की कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की, तो फिलहाल आप लोग ट्राई करते रहिएगा, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। राम नरेश जी का मेल पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग भेजा इन्होंने, राधे राधे कहा है। और साथ ही कहते हैं मैं नरेश, राम नरेश, काली मिट्टी काटी घरा उन्नाव से ये हैं, और कभी कुवैत में जॉब करता हूँ, अभी ये कुवैत में जॉब करते हैं, एफएम रेनबो का नियमित श्रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा तेज बहादुर यादव जी ने भी हमें मेल किया है, संदेश कहते हैं कि सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आजकल सड़क हादसे बहुत सुनाई दे रहे हैं, इसलिए अभी समय आ गया, आप लोग सड़क पर चलते समय नियम कानून का पालन करें, दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाएं, चार पहिया पर सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए और इससे ज़्यादा आपके परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। और रिंकी और पिंकी बहनी को बुआ बनने पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, अगर ये है तो ऐसा तो हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच तेज बहादुर यादव जी। ममता जी भी आपके साथ हैं, आप गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं। सावित्री देवी जी गुड मॉर्निंग, और बहुत झक्कास सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। विलेज बरगद भरतपुर बरगदी अर्जुनपुर से आपने हमें मेल किया है, लखनऊ से, और संदेश है कि किसी को गर्मी की छुट्टियों में हम अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से घर के कामकाज करने में मदद करवाएं। बहुत सही बात आपने कह दी, इससे बच्चों को काम करने की हैबिट भी डेवलप होगी और उनको भविष्य में काम आएगा। जी हाँ, काम करने की आदत होनी चाहिए और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं समर वेकेशंस में बच्चे। और आई थिंक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगले प्रोग्राम में चंद्रकला आपको बताने वाली है ना। गुलफशा आपने भी हमें मेल किया है, और संडीला से आप हमें सुन रही हैं, और अपने बच्चों को बीच बीच में दोपहर में बाग भेज देते हैं आम बिनने के लिए, वो लोग प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि गर्मी बहुत है, उन्हें लू लग सकती है और जहरीले जानवर भी होते हैं। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, अब सब लोग को ध्यान रखना चाहिए जिनके छोटे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। विमल राजपूत जी ने कहा है कि मैम आज का टॉपिक मिस कर दिया, टॉपिक कोई नहीं है इस प्रोग्राम में, आप किसी भी विषय पर अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। आगे लिखते हैं कि वैसे तो मैं अपने घर के बगीचे में लेटा हुआ हूँ, एफएम एंजॉय कर रहा हूँ, आज पहली बार मेल किया है आपने, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा आई एम श्योर। विमल राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहाँ से आपने मेल किया, कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं ये आपने नहीं बताया। वारिस अली खान जी ने भी कहा है कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप नौतबा 25 से 2 जून तक है, नौतबा तो शुरू ही हो गया, मतलब वही वाली सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो ख्याल रखना है। आगे आगे देखिए क्या होता है, पेड़ पौधा लगा सोचता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, पेड़ पौधा लगा सोचता है क्या। सही कहा आपने, हम खुद प्रचंड गर्मी के जिम्मेदार हैं, कंक्रीट निर्मित घर, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और प्रदूषण, बिल्कुल सही है, सोचना ही है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। शैलेश, अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी आपका भी। और मनोज कुमार जी ने हमें मेल किया है और कहते हैं कि फ़ोन लगने की तो कोई उम्मीद नहीं है। देखिए हमने इसीलिए फ़ोन अभी लेना ही बंद कर दिया है, और क्योंकि मेल्स इतने सारे होते हैं हमारे पास, इतने लिसनर्स हमें मेल करते हैं और अक्सर मेल्स छूट जाते हैं, तो उम्मीद है कि हम सबके मेल्स मेहनत से जो टाइप करके भेजते हैं वो हम शामिल कर पाएंगे। तो मनोज कुमार जी आपने बिल्कुल सही कहा, फ़ोन पर तो पुराने श्रोता ही जुड़ पाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं, और इसीलिए पुराने लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा सा ब्रेक लें, अंतराल लें, और उसके बाद हमें कॉल करें। और इन्होंने दो लाइन लिखी है, पढ़ देती हूँ, हर श्रोता की बात हो सबको मिले सम्मान, मेल जोल से चले शो यही है अपना अरमान। तो भाई मेल जोल आपस में आप लोग बना लीजिए, हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। लखीमपुर खीरी से आपका मेल आया, थैंक यू। और रोमल कुमार जी का भी मेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक गाना। अच्छा ये संजू देवी जी हैं, और बहुत बड़ा मेल है, इसको हम कट शॉर्ट करेंगे, लेकिन मतलब पढ़ के सुनाएंगे है ना, इन्होंने क्या लिखा है वो सारी चीज़ें चेक करके कट शॉर्ट कर लेंगे। म्यूजिकल ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ तो आपके बहुत सारे ईमेल्स और आपकी जो बातें हैं वो हम

11:55 का वक्त हो गया है. वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं, लेकिन जल्दी से कुछ मेल्स पढ़ देते हैं. और इनकी एनिवर्सरी है, ये है संजू देवी जी, इनके पतिदेव राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. 2013 में इनकी शादी हुई थी और आपके हस्बैंड भी प्रोग्राम्स सुनते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. और देखिए जो गाना मैंने प्यार हमारा अमर रहेगा आप ही के लिए बजाया था, देखिए. थैंक यू सो मच विजेश सिंह दीपू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. बाइक चलाते समय अपनी परवाह नहीं करते जो लोग, उनके लिए इन्होंने संदेश दिया, हिदायतें दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. इसके अलावा पिंकी बारी जी, आपका भी मेल आ गया है. नए रोज वही कॉल वही बात पुरानी है, नए चेहरों को भी की भी अपनी एक कहानी है, थोड़ा मौका उनको भी दे, मुस्कुराने दो. रेडियो की दुनिया सबकी दीवानी है, कुछ लोग हर दिन महफिल में छा जाते हैं, नए लोग बस सुनते सुनते रह जाते हैं, जरा उन्हें भी तो बोलने का हक मिल जाए, शायद कई प्यारे रिश्ते बन जाए. कितनी प्यारी और महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, सबके लिए है इसका ये मैसेज. और माधव राज जी ने भी मेल किया, बड़ा लंबा मैसेज है आपका और अब वक्त नहीं है कि हम आपका मैसेज पढ़ पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. बहराइच से भारत तक बस अपनों का साथ रहे और सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, गर्मी में अपना ख्याल रखें. और इन्होंने ग्राम गोबरा पोस्ट एलिया थाना रानीपुर जिला बहराइच से हमें मेल किया है. और भी बहुत सारे ईमेल्स हैं, अनुज जी, इंद्र कुमार जी, सुरेंद्र सिंह जी, रोशनी रावत, अनमोल सिंह, सिमरन सुरांजलि, संदेश बहुत सारे प्यारे प्यारे आप सबके हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा. देखिए कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि अच्छे अच्छे गानों के साथ आप सबके ईमेल्स हम शामिल कर ले, और इसीलिए देखिए हमने फोन्स भी नहीं लिए हैं, और जो लोग फोन ट्राई कर रहे होंगे ना वो

नाराज हुए उनसे, हो गए होंगे हमसे, तो उनको हम सॉरी बोल देते, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं। हाँ ऐसे जो गाना है ना, तुम मुझे याद ना आया करो, मुझे याद कीजिएगा। बस थोड़ा सा लंबा अंतराल होने वाला है क्योंकि भाई छुट्टी हो गई है, तो हम भी जा रहे हैं घूमने, घूम फिर के लौटेंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे, जल्दी वापस आएंगे, ठीक है। यादों में हमें रखिएगा अपने, और अगले कुछ घंटे रहिएगा चंद्रकला के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मी से बचिए और अपनों के साथ खुश रहिए। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।

सीखने की जरूरत है ही। तो कहते हैं कि परिवार के साथ बिताया हर समय सिर्फ यादें नहीं बनाता है बल्कि रिश्तों को और गहरा भी बनाता है। और जब बात हो गर्मियों की छुट्टियों की तो ठंडी वादियों, पहाड़ की हवाओं, परिवार के साथ बिताई खूबसूरत पलों से बेहतर और क्या हो सकता है। और जब पहाड़ों की वादियों की बात करते हैं, कितने रिच हैं हम लोग भाई, क्या क्या मतलब क्या है, क्या हो गया? अगर हमारे नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है तो क्या हो गया? हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो ठंडी है, क्या हो गया? इधर तराई क्षेत्रों में बहुत गर्मी हो रही है, हमारे पास एकदम बर्फ वाले पहाड़ी क्षेत्र भी तो हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने ही लोगों के साथ खुलकर जीना भूल सा जाते हैं, है ना? ऐसे में एक फैमिली ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं होती है बल्कि एक दूसरे को समझने की, करीब आने की और दिलों को मजबूत, जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनको मजबूत बनाने की एक एक खूबसूरत प्रोसेस बन जाती है। और आज के इस खास फैमिली फन प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उन बेहतरीन ठंडी खूबसूरत जगहों की सैर पर, जहां आप इस गर्मी अपने परिवार के साथ सुकून, मस्ती और यादगार भरे पल बना बिता सकते हैं। तैयार होइए, लेकिन साथ में आपको ये भी बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि मतलब ट्रिप पे चल दिया जाए, प्लानिंग भी की जा सकती है और अगर प्लान नहीं बना है तो बन भी सकती है। जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो कुछ अच्छा हो ही जाता है।

12:11 हो गए हैं और फैमिली फन की बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए. फैमिली की बन, मुझे बन याद आ रहा है. कभी भी कुछ भी याद आ जाता है और ऐसा होते रहता है कभी कभी ना, खासकर गर्मियों में जब दिमाग एकदम गर्म हो जाए ना, तो तब ऐसी चीज़ें होते रहती हैं. तो दिमाग ठंडा

बिल्कुल, और ये गाना सुनने के बाद क्या खूबसूरत वाइब आई ना, मतलब एकदम दिल करता है कि यही गाना सुनते जाएं। और कितना कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी वाइब है इस गाने की, और जितनी बार सुनती हूँ उतना ही मज़ा आता जाता है। और ये जो वाइब है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है, और इस वाइब को बरकरार रखने के लिए हम आज वैसे बात भी तो कर रहे हैं कुछ ठंडी ठंडी सी, कितनी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे हैं हम ना। और फैमिली फन का मतलब पता है क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, अप्स एंड डाउन, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते सुनते, बहुत सारी चीज़ें आते जाते रहती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव जो चढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, उसके बावजूद एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। अच्छा, क्या होता है अक्सर हमने देखा है, बाहर के कोई लोग हमारे सर्कल में अगर लगता है कि टॉक्सिक हैं, अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, तो पता है क्या होता है, हम उनको साइड कर देते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते, हम सोचते हैं हमारे टाइप है ही नहीं। लेकिन अगर फैमिली में कोई ऐसा लगता है कि कितना टॉक्सिक है यार ये, उसके बावजूद हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके मूड के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और आज आपके इस बॉन्ड को मजबूत करने के लिए ठंडी हवाओं, खूबसूरत नज़ारों और प्यार भरे सफ़र का सिलसिला लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं बाय चांस, तो मैं आपको कुछ अपने देश के अंदर बेहतरीन खूबसूरत और ठंडी ठंडी जगहों को आपको बताने आई हूँ। जागेश्वर है उत्तराखंड में, जागेश्वर उत्तराखंड अल्मोड़ा में है, आप आसानी से यहाँ पहुँच भी सकते हैं। और ये खूबसूरत जो जगह है ना, देवताओं की घाटी भी कहते हैं इसको। और अल्मोड़ा ज़िले में गंगा नदी घाटी के किनारे और एक बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह है, और बहुत पुरानी है ये। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, सप्तऋषि, इन लोगों ने यहाँ तपस्या की थी, और शैव धर्म का एक प्रमुख केंद्र है यहाँ। और आपको पता है कि यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और बहुत अच्छी स्थापत्य कला को देख पाएंगे, उसे छुएंगे, देखेंगे और देखते रह जाएंगे। खूबसूरत घने ऊंचे देवदार के पेड़ आप देखेंगे, देखते ही आपकी आंखों में एकदम चमक आ जाएगी। और बहुत ही आसान सी आपको बात बताऊं, यहाँ जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, वहाँ तक आप जा सकते हैं ट्रेन से, फिर वहाँ से टैक्सी या बस से हल्द्वानी और अल्मोड़ा होते हुए आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं बाय रोड। और इसके अलावा अल्मोड़ा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे ये खूबसूरत सी जगह है, और ये खूबसूरत सी जगह तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आप तक एक और खूबसूरत गाना भेजा जाए। जब आप पहाड़ों की सड़कों पर ये गाना सुनते हुए जाएंगे तो आप कैसा फील कर पाएंगे?

सुन साहिबा सुन, ये तो आप अपने साहब को कह सकते हैं कि सुनिए ज़रा, चलें क्या ट्रिप की तरफ को और प्लान बनाएं क्या बाहर निकलने का, और ये जो खूबसूरत वादियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या चला जाए क्या इस तरफ। सोचते सोचते बात करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि भाई जागेश्वर अगर आप जाएंगे, मैं फिर से आपको बताऊं, जागेश्वर इतनी खूबसूरत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ जाने का, ठंडी प्लस सुकून भरी और प्लस मतलब इतनी शांत आपको लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए क्या। और आपको पता है बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन टाइप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ भी नहीं रहती वहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊं एक और मंदिर है, बैजनाथ मंदिर, कुमाऊं क्षेत्र की गोमती के किनारे, मतलब बागेश्वर में बसा हुआ बैजनाथ मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी का है, मतलब बहुत ही पुराना शिव मंदिर का एक समूह है। यहाँ भी जागेश्वर की तरह ही लगभग आपको शांत, ठंडा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर माहौल मिलेगा।

चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं, बहती नदी और पत्थरों से बने पुराण मंदिर इसकी खूबसूरती को खास बनाते हैं। यहाँ भी मेरे जाने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप आकर कहेंगे कि भाई वाकई में पैसा वसूल, सारी गर्मी की ठंडक तो दिमाग में, मतलब गर्मी की जगह जो लखनऊ में आप गर्मी सह रहे हैं, अपने शहरों में गर्मी सह रहे हैं, वहाँ जाकर सारी ठंडक वापस आ जाएगी। खैर, इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि गोमती का खास शांत किनारा है, प्राचीन कत्यूरी जो एक शैली है उसकी वास्तुकला है, पत्थरों में डिज़ाइन बना हुआ है, सूर्योदय है, बहुत ही अच्छा सनराइज होता है और शाम को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आसपास चाय के बागान हैं, पहाड़ी गांव हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपका फिर से वही नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, वहाँ से टैक्सी से लगभग 150 से 180 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, और टैक्सीज आराम से पहुंच सकती हैं। और बाय चांस अगर आप बहुत दूर हैं एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है और वहां से फिर से आप टैक्सी से यहां तक पहुंच सकते हैं। और मैं तो कह रही हूं कि क्या हर्ज है प्लान करने में, और अगर बाय चांस इस बार आपका जाने का प्लान नहीं बन पा रहा है घूमने का, तो पैसे बचाइए भाई, रुपया बचाइए, सेविंग कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बाहर निकलिए। और मैं बताऊं आपको, सिर्फ रुपया ही नहीं बचाइए, आज जो ये मैं बात आपसे कर रही हूँ, इस बात का जो गहन चिंतन मनन है अपने बच्चों के साथ बैठ के करिए। यहाँ जाया जाए, एक ही जीवन है, कब जाएंगे हम घूमने। और फैमिली फन का तो मतलब यही है कि बच्चे भी मिलके सेविंग करें, पति भी मिलके सेविंग करें, पत्नी भी करें और सभी लोग सेविंग करें, और सेविंग के साथ साथ जो हो ना वो जीवन सुधर जाए। इतनी खूबसूरत जगह जाने का मतलब मिले अगर सेविंग से, तो क्या क्या मतलब, बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं तो आपको पॉजिटिव वाइब देते रहूंगी, मोटिवेट करते रहूंगी और अच्छी अच्छी बात बोलते रहूंगी कि आप यहाँ जाने का सोचें। मैं प्रमोट नहीं कर रही आपको, गर्मियों के मौसम में फैमिली फन ठंडक भरे अंदाज में करने का एक आइडिया दे रही हूँ। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, सेगमेंट फैमिली फन चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ।

भाई ऐसे ही अगर आप पहाड़ी सड़कों पर चलते जाएंगे और वो जो खूबसूरत वाइब होगी पहाड़ों की, और इतनी खूबसूरत वाइब में आप अगर सोचिए इसी गाने को, मतलब इलाही को एंजॉय करते हुए चलिए, तो कैसा कैसा महसूस करेंगे, कितना मज़ा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से इमेजिन करके मैं कुछ अलग सा फील कर पा रही हूँ. और बात हम जागेश्वर की कर रहे थे, बात हम इस तरफ आए थे बैजनाथ टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे. और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा दूर आपको जाने की और सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला जो लोकेशन है हमारा जिसके बारे में हमें बात करनी है, सोचना है, वो है कटारमल सन टेम्पल. इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं. ये भी अल्मोड़ा में ही है, भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में गिना जाता है. अच्छा ये है कि यहाँ पे धूप थोड़ी मिलेगी आपको, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको मिलेगी, आपको छूकर निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यही जिंदगी है. और यही जिंदगी है, और ऐसा महसूस करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा. मैं आपको बताऊं, पहाड़ों के बीच में बसा, लेकिन थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैकिंग है. और परिवार के साथ ट्रैकिंग करने का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी आफत तो आ सकती है. जो परिवार में थोड़ा कमजोर प्राणी होता है ना, उसका बोझा भी उठाना पड़ता है. लेकिन यही फन है, उस समय पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, महसूस तो होता है कम से कम. अच्छा ऐसे एक ही घर में पड़े पड़े रहे, बैठे रहे, कई दिनों से कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बाहर भी नहीं गए, मतलब कई दिन नहीं, कई महीने, कई साल हो गए, तो मुझे लगता है ना उस समय बड़ी बड़ी बड़ी दिमाग में ये चीजें हो जाती हैं. बच्चों को तो खासकर लगने लगता है कि मम्मी पापा ही मेरे असली दुश्मन हैं और मेरे भाई बहन ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं. लेकिन अगर ऐसे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा ट्रैक कर लिया जाए, तो उसमें उसकी आंखों में इमोशंस के आंसू भर आते हैं और वो सोचता है कि नहीं नहीं यही तो मेरे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी मेरा बोझा उठा लेता. खैर ये जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ये अल्मोड़ा में है, पहाड़ों के बीच बसा है, बहुत ठंडा सुकून देने वाला है. और यहाँ की जो खूबसूरती है, देवदार और चीड़ के जंगल, दूर दूर तक हिमालय की चोटियों का दृश्य, सूर्योदय का जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पाएंगे यहाँ, आप यहाँ बहुत बेहतरीन फोटोज़ ले सकते हैं. ट्रैकिंग के लिए बहुत शानदार जगह है. अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर आपको यहाँ जाना पड़ेगा. काठगोदाम रेलवे स्टेशन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और टैक्सीज यहाँ तक पहुँचती हैं. सड़क मार्ग बहुत सुंदर और पहाड़ी दृश्यों से भरा हुआ है दोस्तों. घूम घूम कर सड़क जाएगी और आपको दूर से कोसी घाटी दिखाई देगी. अब समझ रहे हैं आप, मैं तो सोच रही हूँ कि मतलब कब दोबारा मौका मिले, यहाँ भी मैं जाकर आ गई हूँ. खैर आपके लिए खूबसूरत सा गाना चलाना पड़ेगा मुझे. अब मैं सोच रही हूं कि एक बेहतरीन सा गाना चलाया जाए.

लोकेशन ऐसी है ना, वहाँ जाकर आप मना नहीं कर पाएंगे और कहते रहेंगे और बार बार हर किसी से कहते रहेंगे कि मेरी फ़ोटो खींच दो, प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दो, कब आना होगा यहाँ वापस? ऐसी जगह कहीं होती है क्या?

सेगमेंट फैमिली फन के साथ. और बात करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम आपको बताएं कि अगर आपको उत्तराखंड की तरफ जाने का दिल नहीं है तो आप हिमाचल की तरफ जा सकते हैं. हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना, तो क्या हुआ अगर हम यहाँ गर्मी में हैं. छुट्टियाँ हैं अपने पास तो ठंडी जगह भी तो हैं अपने पास. ऐसे ही थोड़ी हम जो है धरती पुत्र हैं, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है. खैर मजाक की बात दूसरी तरफ है, मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं तो बहुत सीरियसली कह रही हूँ. हिमाचल की तरफ अगर जाएं ना आप, तो आपको मिलेगा टैबो मोनेस्ट्री. हाँ, इसको टैबो मोनेस्ट्री भी कहते हैं और स्पीति वैली में ये टैबो मठ भी कहते हैं, जिसको टैबो मठ भी कह सकते हो आप. हिमालय का अजंता कहा जाता है इसको. लगभग 1000 साल पुराना बौद्ध मठ है. यहाँ का मौसम गर्मियों में भी ठंडा और बहुत शांत रहता है. और यहाँ की खासियत यह है कि मिट्टी से बने बहुत प्राचीन मठ आपको मिलेंगे, बौद्ध भित्ति चित्र मिलेंगे बड़े बड़े से, और मेडिटेशन के लिए बड़ी बड़ी लोकेशंस आपको मिलेंगी. मेडिटेशन के लिए आपको जगह जगह वैरायटी मिलती रहेगी. और इसके साथ आपको पता है, सूखी खूबसूरत पहाड़ियाँ, नीला आसमान, रात में तारों से भरा हुआ एकदम साफ सुथरा आकाश, ऐसा जैसे आपने ड्राइंग बुक में नीला आसमान बनाया हो और उसमें खुद अपने हाथों से तारे जड़े हों. ऐसा ही है बिल्कुल. और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शिमला या मनाली से रोड से पहुँचना है. और सबसे आसान रास्ता पता क्या है, शिमला किन्नौर स्पीति होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचा जा सकता है आसानी से. और जो नज़दीकी एयरपोर्ट है, भुंतर है, कुल्लू है, लेकिन वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क जो मार्ग है वही बहुत ही अच्छा है यहाँ के लिए. ट्यून इन करके रखिए मेरे साथ, मैं आपको गाने भी सुनाऊँगी और साथ में सैर तो करा ही रही हूँ मैं. और मैंने आपसे कहा है कि जाना इसी बार है ज़रूरी नहीं, डिस्कशन तो किया जा सकता है, प्लानिंग तो की जा सकती है.

बिल्कुल, और इसी तरीके से आपको ना खींच मेरी फोटो कहना ही पड़ेगा अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पे जाएंगे तो। 12:42 हो गए हैं और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, हम कर रहे हैं फन।

देखिए एकदम से वक्त और जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगता है ना। एकदम से गाना चला गया, मैं तो उसके एकदम ही अलग ही खुमारी में खोई हुई थी। और जो गाना गया उसका कहने का मतलब ये था कि मालिक जल्दी चलो, समय हो रहा है और भी तो जगह जाना है। मैंने आपसे कहा था कि अगर उत्तराखंड, और देखिए मैं आपको बताऊं, अल्मोड़ा तो नियरेस्ट है, यहां से बहुत पास है, मतलब बहुत दूर नहीं, आपको कई दिन नहीं लगेंगे। आज रात में आप निकलेंगे, कल दोपहर तक आप अल्मोड़ा, जागेश्वर या कटारमल पहुंच जाएंगे। खैर, लेकिन हिमाचल पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा तो चलना पड़ेगा। हिमाचल चलने के लिए आपको मूड, दिमाग, एनर्जी सब कुछ चाहिए, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है भाई, बाय रोड आप आराम से जा सकते हैं। देखिए फन करने के वैसे तो कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप घूमने ही जाएं, जरूरी नहीं है कि आप लंबी ट्रिप ही बनाएं, लेकिन आपस में मिलके, हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है इस बार जाना, अगर तो आपस में मिलके बैठ के डिस्कस करना, प्लान करना, या फिर उस ट्रैक के वीडियोस को देखना, उस लोकेशन के बारे में जानना, आपस में मिलजुल के प्लानिंग बनाना, ये भी फन है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ख्वाब बुनते हैं या किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशंस बनाते हैं, करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है ना। आप कभी नहीं सोचते कि कुछ बुरा हो मेरे साथ, जब हम इमेजिन करते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि आह मेरे पास तो इतना अच्छा कुछ होगा, या वहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी। तो समझ रहे हैं आप, वो जो इमेजिनेशन है आपकी वो ज़रूर सफल होगी, किसी ना किसी रूप में आप तक वहाँ पहुँचते ही हैं, आप वहाँ तक पहुँचते ही हैं। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँ कि एक दूसरी आपको मठ या मोनेस्ट्री के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कुंगरी मोनेस्ट्री है और ये पिन वैली के बीच, कुंगरी मठ, नेचर और एक अलग ही, जिसको कहेंगे अध्यात्म हो, पीस हो, खूबसूरती हो, सबका एक संगम है ये। और यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं, और ठंडक वित्तो है यहाँ पर। शांति चाहने वाले, सुकून चाहने वाले लोगों के लिए, नज़ारा देखने वाले, पहाड़ देखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेडिटेशन करना है आपको, ठंडी ताज़ी हवा, कोई नेल करना है, उफ़ मुझे तो यही सब पसंद है, तो मैं आपके लिए वो चुन करके लाई हूँ। अगर आपको चाहिए ऐसा कि जाएं एकदम मन, मस्तिष्क और क्या, और सबको ठंडक मिल जाए, तो तब तो आपको यहाँ पहुँचना है। कैसे आपको पहुँचना है मैं आपको बताऊँ, काजा से लगभग 45 किलोमीटर तक आप यहाँ तक है, और आप आराम से टैक्सी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोकल जो टैक्सीज हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, लोकल टैक्सीज बहुत सारी हैं यहाँ पर। एक जगह और है मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ, वो जगह है कांगड़ा फोर्ट। भारत के सबसे पुराने और सबसे विशाल किलों में है वह कांगड़ा फोर्ट, और यहाँ इतिहास, पहाड़, हरियाली, शानदार मेलजोल आपको सबका देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती, बाणगंगा नदी का जो व्यू है, उफ क्या खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे ख़ास बात पता है यहाँ का क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और विशाल किला है,

12:56 हो गए हैं और ये खूबसूरत सा गाना जो है ना हम सुन रहे थे आप साथ में, और ये खूबसूरत गाना सुनते सुनते हम कर रहे थे इमेजिन और ये खूबसूरत जगह, ठंडी जगह, शांत जगह पहुंचने की कल्पना। भाई प्लान तो कभी भी बन सकता है, और अगर प्लान और बजट दोनों ही नहीं बन रहे तो डिस्कशन तो किया जा सकता है। जानना तो चाहिए कि इस धरती पे जहाँ पे इस समय हम हैं तप रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश में कितनी खूबसूरत जगह हैं, ठंडी ठंडी जगह। एक और मोनेस्ट्री है, ये जो खूबसूरत मोनेस्ट्री है पेमांगस्टे मोनेस्ट्री, पेलिंग के पास सिक्किम में है आपको बता दूं, और सबसे फेमस बौद्ध मठों में से एक है। बादलों के बीच हिमालय का खूबसूरत सा व्यू, ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत बातें, कंचनजंघा पर्वत का शानदार दृश्य है यहाँ पर, बादलों से ढकी घाटियाँ हैं और खूबसूरत चैंटिंग्स, ठंडी हवा। यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट जो है बागडोगरा है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, और वहाँ से पेलिंग तक टेक

टैक्सी आराम से आपको मिल जाती है। भाई अगर आपका घूमने का प्लान बन रहा है तो मैं आपसे कहूंगी ऑल द बेस्ट, और अगर नहीं बन रहा है तो मैंने आपसे कहा है ना अगली बार के लिए बनाइए, और अगर वो भी नहीं बन रहा है तो डिस्कशन तो कीजिए, जानिए तो सही। शुक्रिया, और यहीं पर आज प्रोग्राम फैमिली फन का सेगमेंट यहीं वाइंड अप करने का समय है। अगला जो प्रोग्राम है होंठों पे तेरी बात, उसके लिए मैं ही हूँ आपके साथ, तो ट्यूनिंग करके रखिए, तुरंत न्यूज़ ब्रेक के उस पार मिलते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी नव नियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। हाल ही में की गई 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कई देशों के साथ समझौते हुए हैं, जिनका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक पहचान प्रदान करना है। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लगभग 330 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को निरंतर गति मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। इस बीच इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने शुल्क वापसी की प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के बैंक खाते की जानकारी दर्ज कराने के लिए नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर एक समर्पित सुविधा उपलब्ध कराई है।

उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन कर जानकारी भर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

एक बजकर के 4 मिनट हो गए हैं, आपकी दोस्त चंद्रकलाएं आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हो चुका है होंठों पे तेरी बात। शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए और खूबसूरत तरीके से हमें मैसेजेस करने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए और कुछ सुझाव भी देने के लिए। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि आप श्रोता हैं और हम सुनाने वाले। ठीक है, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और इस समय आपके होठों की बात हमारे स्टूडियो तक आती है, हम तक आती है और आपके होठों की इन बातों को हम करते हैं ऑन एयर, सभी सुनते हैं आपके होठों की बातों को। ठीक है, तो आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी बात है। भाई मुझसे अगर कोई ऐसा बोले ना, मुझसे अगर कोई ऐसा पूछे बताओ क्या चल रहा है अभी मन में, तो फिर मैं तो शुरू हो जाऊं बोलना। हालांकि कई लोग नहीं होते हैं बोलना शुरू, लेकिन अगर मुझसे कोई अचानक से पूछे कि क्या चल रहा है इस समय तुम्हारे मन में, बोलो बोलो, तो मैं तुरंत बोलना शुरू हो जाऊंगी, बताने लगूंगी भाई मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई इमेजिनेशन, कोई ना कोई कोई ख्याल हमें कुरेद तो रहा होता है हर समय। तो अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में वो आप लिख भेजिए हमें, कोई सुझाव, कोई बात, कोई अपनी कहानी, कोई ख्याल, कोई इमेजिनेशन। अगर आप ये होते, ये सोचते, ये करते तो क्या हो जाता। हमारी FM की मेल ID पर अपने मेल लिख करके भेज सकते हैं, fmakashwani@gmail.com हमारी ये मेल ID है, इस पर आप अपने मेल्स हमें लिख भेजिए और हमें है आपके मेल्स का इंतजार। ये रहा है खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है।
1: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मा लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकरीरनामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वजीर आजम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मरदमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मरदमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को

एक बज करके ठीक 16 मिनट हो गए हैं और ब्रेक के इस पार आपका फिर से स्वागत है अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और 100.7 FM रेनबो लखनऊ आपने ट्यून किया है। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास आया है और इन्होंने लिखा है, स्नेहपूर्वक नमस्कार, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम में आपके मन में क्या चल रहा है? कोई नहीं पूछा तो हम बोलेंगे, हमारे मन में तो कोई नहीं चल रहा है। आपने ऐसा क्यों पूछा कि हमारे मन में क्या चल रहा है? पहले आप बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या बात है सुधाकर जाधव जी, ये हुई ना एकदम चालाकी वाली बात। कई बार थोड़े लोग रसिक भी होते हैं ना, रसिक मतलब खराब नहीं, रसिक मतलब लोग सुनना पसंद करते हैं। कई बार लोग उस बात का आनंद उठाना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही हैं? खैर बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन मैं सुनना नहीं पसंद करती बहुत ज़्यादा। जितना बोल सकती हूँ उतना ही सुन भी सकती हूँ। पर लेकिन अगर कोई परेशान है, किसी को ज़रूरत है, कोई लग रहा है कि हाँ बात करने से ठीक हो जाएगा तो उससे बात की जा सकती है। शुक्रिया हमें मेल करने के लिए सुधाकर जाधव जी। अपने मन की बात आपने बिल्कुल सटीक बात लिखी है। कोई बोलेगा क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तो ये भी बहुत सही बात है कि आप उसे बोलेंगे मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा, तुम बताओ, हम सुन सकते हैं ना। माधव राज जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने लिखा है, लखनऊ टीम आदाब नमस्कार, अभी इस वक्त होठों पे तेरी बात कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आपकी चुनी हुई बातें और गानों का चुनाव सीधे रूह को छू गया। ओह क्या बात है, शुक्रिया। इस शो का जादू ही कुछ ऐसा है कि बहराइच के इस कोने में बैठकर भी मुझे लगता है जैसे मैं किसी महफिल का हिस्सा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के नाम मैं बस अपनी भावनाओं के कुछ पन्ने खोलना चाहता हूँ। होठों पे तेरी बात हो, जुबां पर मेरा नाम हो, रेडियो

उन लहरों में बस प्यार ही प्यार सरेआम हो, ये शो हमें सिखाता है कि खामोशियों में भी कितनी बातें छिपी होती हैं। अब जिस संजीदगी से हमें श्रोताओं के जज्बातों को रेडियो पर आवाज़ देते हैं वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया हमारे अकेलेपन को अपनी सुरीली बातों से भर देने के लिए। आज की इस महफिल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अपना हमनवा श्रोता माधव राज, ग्राम गोबराहा, पोस्ट एलिहा, थाना रानीपुर, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। क्या बात है, आपके खूबसूरत मेल के लिए शुक्रिया। देखिए यही है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात। इसमें क्या है ना, आपके होठों पे जो बात इस समय होती है उसको हम देते हैं अपनी जुबान और ऑन एयर करते हैं उस बात को। वीके गुप्ता जी ने लिखा है, चंद्रकला मैम जी गुड आफ्टरनून। इन्होंने गुड आफ्टरनून जी आपको भी गुप्ता जी। इन्होंने लिखा है लखीमपुर खीरी में, इन्होंने मेल किया है लखीमपुर खीरी से। इन्होंने लिखा है, आपका नियमित श्रोता हूँ विनोद कुमार गुप्ता, गोला गोकर्णनाथ। मेरे मन में इस समय पक्षियों को पानी और दाना डालने का मन कर रहा है, साथ ही साथ मैं आपसे बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। दिल से दिल की बात मैं जानबूझकर कहता हूँ, मेरे मित्र अजय कुमार मिश्रा जी भी आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। अरे विनोद कुमार गुप्ता जी, आपका बेहद शुक्रिया। और आपके मन में जो ख्याल आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है, इसको धरातल पर उतारिए। आप इस बात को ख्यालों में मत रहने दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं पक्षियों को दाना और पानी देने की, तो बिल्कुल दे डालिए। अभी आपने न्यूज़ बुलेटिन में सुना होगा कि हीट वेव की संभावना है, हीट वेव चल रही है दिन में, और ये जो गर्म लू है ये हम इंसानों को ही नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो शुक्रिया इतने अच्छे ख्याल हमसे शेयर करने के लिए। रामराज जी का मेल हमारे पास है होंठों पे तेरी बात, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु। और इन्होंने लिखा है, हमारे गांव में आंधी तूफान आ जाने के कारण हमारे यहाँ बिजली के तार खंबा सभी टूट गए हैं, इसी वजह से चिंता रहती है कब हमारे यहाँ बिजली आएगी। धन्यवाद रामराज जी, आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपने गांव का नाम हमसे शेयर कर लिया है, रायबरेली गांव पहाड़ीपुर। भाई इस गांव में बिजली क्यों नहीं आ रही है, बिजली की व्यवस्था की जाए। भाई रामराज जी, आपकी समस्या मुझे लगता है सुनी होगी लोगों ने, और अगर नहीं सुन रहे हैं लोग तो सुने, कोई वहां तक पहुंचाएं, अर्जी लेके जाएं, फ़ोन करें बिजली विभाग को, समस्या का समाधान करवाएं। देखिए बैठकर इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, पहली बात आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि क्या कारण है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, काम क्यों नहीं हो रहा, इतनी गर्मी में हम कैसे जिएंगे। खैर मुझे पता है रामराज जी, और मेरी दिल से दुआ है, दुआ से भी नहीं काम होगा, लेकिन मेरी पूरी सिंपथी आपके साथ है और मुझे पता है कि बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। मोनू सेठ जी ने हमें मेल किया है, चंद्रकला मैम जी कैसन हैं आप, गर्मी बहुत है, पानी का बोतल आप भी और सभी श्रोता साथ लेकर चलें। क्या बात लिखी है आपने मोनू जी, हम जब सुबह आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही थी कि पानी का जो बोतल है ना वो जो है हमारे झोले में होना ही चाहिए, बिल्कुल हर टाइम। बहुत शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, आपकी दोस्त आपके साथ है, और खूबसूरत मेल्स आप भेज रहे हैं हमें। और अगर आपने बात नहीं सुनी है तो हम आपको बात बता दें कि आपके मन में जो भी बात इस समय चल रही है आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। अच्छी बात हुई तो सीखने को मिलेगा, बुरी बात हुई तो कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे उस बारे में, लेकिन आप हमसे साझा करिए। और हमारी FM की मेल ID है, अगर आप नए लिसनर हैं तो fmakashwani@gmail.com, उस पर आप हमें मैसेज लिख भेजिए, और आपके इस मेल को, आपके होंठों की बात को हम देंगे अपनी जुबान। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक, तुरंत आते हैं।

आपके मन में कभी आता है क्या ऐसा सवाल कि मैंने क्यों प्यार किया, क्यों इकरार किया? कई बार ऐसा पछतावा होता है क्या, कुछ अच्छा सोच के अच्छा करने के बाद भी? पता नहीं, मुझे कई बार होता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने फर्जी इनकी हेल्प कर दी क्या, या फिर मैंने फर्जी बहुत पॉजिटिव सोच लिया इनके बारे में। खैर कोई बात नहीं, कई बार अक्सर ऐसा होता है और मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये मेरे मन की बात थी गाना सुनने के बाद। आपके लिए आपकी मेल अब आपके

घुटनों की बात। महेंद्र देपन जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपको भी प्रणाम शुभकामनाएं। मैं, इन्होंने लिखा है, नियमित श्रोता महेंद्र देपन, गांव रूण, ज़िला नागौर, राजस्थान से। इस समय गुजरात में रहकर आपके बेहतरीन प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का पूरा आनंद ले रहा हूं। इन्होंने लिखा है, आज आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरे मन में सबसे पहला विचार आपकी सेहत को लेकर आया। कुछ समय पहले जो आपको चोट आई थी, अब वो कैसी है? आपकी चोट पूरी तरह ठीक हुई या नहीं? मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा पूरी तरह स्वस्थ, मुस्कुराते और ऊर्जा से भरपूर रहें। बेहद शुक्रिया महेंद्र जी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा, बस हड्डियों को जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, है ना? दिल टूटने में उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है मुझे लगता है, जितना हड्डी जुड़ने में लगता है। अब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ, जब तक हड्डी नहीं टूटी थी तो तब तक मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, दिल टूटना सबसे भयानक दर्द होता है, लेकिन नहीं, हड्डी टूटना ज़्यादा भयानक दर्द होता है। अभी मेरे हाथ में दोबारा से प्लास्टर चढ़ना है, तो अभी मैं इस दर्द से गुजरूंगी कुछ दिन और। खैर, इन्होंने लिखा है आज के सवाल की कि अभी मन में क्या चल रहा है, तो इन्होंने लिखा है, सच बताऊं तो इस वक्त मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ खाने के विचार चल रहे हैं। कोई खाना नहीं, खाने के विचार चल रहे हैं इनके दिमाग में भाई, मतलब फूडी हैं आप। इन्होंने लिखा है, सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि इस समय मैं गुजरात के मशहूर गर्मा गर्म और रसीले खमण और जलेबी का स्वाद ले रहा हूँ, और आपने फोटो भी हमें भेजी है, मतलब आपकी ये हिमाकत की आपने हमें स्टूडियो में बैठे बैठे लालच दिला दिया। इन्होंने लिखा है, खमण और जलेबी का स्वाद ले रहा हूँ, इस मीठे और नमकीन के लाजवाब कॉम्बिनेशन के साथ आपका शो सुनना अपने आप में एक अलग ही सुकून दे रहा है। महेंद्र जी, आपने एक अलग तरीके की कश्मकश जो है में डाल दिया है, एकदम अलग से अंदर से आपने जो फोटो भेजी है हमें, उससे बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ गया है। हाँ, क्या कर सकते हैं, पर शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और इंसान भले टूटा हो, फूटा हो या किसी भी कंडीशन में हो, जब कुछ ऐसा चटपटा बढ़िया सा खाना सामने दिख जाए तो मन तो एकदम से रसदार हो ही जाता है। रोशनी रावत जी का मेल है हमें, इन्होंने लिखा है, आप कैसी हैं, आप हाथ कैसा है? मैं जवाब दे चुकी हूँ रोशनी, आपने उम्मीद है सुना होगा, मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ा सा प्लास्टर रहेगा, पक्का प्लास्टर अब चढ़ना है मंडे को, और अभी मुझे समय लगेगा ठीक होने में, बाकी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न के लिए। इन्होंने लिखा है, जब मुझे कोई कहता है क्या चल रहा है तो उससे ही उल्टा पूछ लेती हूँ, आप बताओ सब ठीक है। ये भी सही है, अच्छी बात है ये भी। आप चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, रोशनी बेहद शुक्रिया हमें हम मेल करने के लिए, अपनी मन की बात बताने के लिए, अच्छी बात आपने बताई। कई बार कोई आपसे पूछे कि क्या चल रहा है, तो उसके बाद पता चलता है कि मेरा बताने का मन नहीं है, क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप बताओ, सुनने का मन होता ना कई बार। और सुधाकर जी, आपका मेल हमने शामिल किया था, आपका मेल हमें जाफराबाद से आया था, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। एमएन नवाब का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून डियर चंद्रकला, इन्होंने लिखा है, खुश रहें, सेहतमंद रहें, अल्लाह से दुआ है, शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। इन्होंने लिखा है, मेरे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मैं अपने मन में इमेजिनेशन बहुत करती हूँ, हमेशा अपने में खोई रहती हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि कहाँ खोई हो, आपने बोला कि कोई आपसे पूछे मन में क्या चल रहा है, आप शुरू हो जाओगे, मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं भी तुरंत शुरू हो जाऊँगी। आपने पूछा मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है खाना बनाना है, किचन में गर्मी बहुत है, पूरे आंगन में धूप फैली है, भूख भी लग रही है, सोच रही हूँ अरहर की दाल चावल चढ़ा देती हूँ, बस मन में यही चल रहा है। मेरा डेली रूटीन छत पर दाना पानी चिड़ियों के लिए रखना और बाहर पानी रखना गाय भैंस बकरी के लिए। संडीला से एमन नवाब ने मेल किया है, बहुत खूबसूरत मेल है आपका, और आपने बहुत सारे ज़्यादातर लोगों के मन की बात बोली है कि जो रूटीन होता है ना उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चलते रहता है दिमाग में, और एंड मोमेंट में कुछ प्लान ऐसा बदलता है कि आप अरहर के दाल के बदले जो है कुछ बढ़िया भी बना सकती हैं। गुलफसा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून सिद्दीकी, गुलफसा सिद्दीकी संडीला से, इन्होंने लिखा है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या सोच रही हो तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त तो खाना पीना तो हो गया, अब शाम को क्या बनाऊं मैं यही सोचती रहती हूँ। हाँ, ज़्यादातर लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि अब क्या बनाऊं, और अगर जिनको खाना है उनसे पूछ लेंगे ना क्या बनाऊं तो वो बोलेंगे तुम सोचो क्या बनाऊं, हमें कुछ नहीं बताना, जो मन है वो बनाओ। अब आपको उसमें पता चलता है कि मन तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या बनाना है। ये बहुत ही फनी कश्मकश है, इससे मैं भी गुजरी हूँ कई बार। रितेश वर्मा जी के मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, नमस्ते जी, कैसी हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हो सके

तो 11 बजे के बाद 4 बजे तक बाहर ना निकलें, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। पक्षियों और घूमने वाले जानवरों के लिए पानी अवश्य रखें, अपनी पसंद का एक गाना। अच्छा, गाना तो इसमें हम नहीं प्ले करते हैं, बहराइच से आपने मेल किया है रितेश वर्मा जी ने, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, लेकिन आपका मैसेज बहुत अच्छा है। वकील अहमद जी का मेल है हमारे पास, इन्होंने लिखा है, नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, मन में हमारे है कि बाग को जाऊं लेकिन धूप बहुत तेज़ है, खाना खा रहे हैं आप भी आकर खा लें। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर साहिबा अंसारी साजिया अंसारी आपने नाम शामिल किया है, लेकिन वकील जी आपने बिल्कुल सच में अपने मन की ही बात शेयर करी है, मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि जिस समय हम होते हैं ना, ऐसे ही कई सारे श्रोताओं ने हमें मेल किया है, जिस समय हम होते हैं जो काम करना होता है या जो करने जा रहे होते हैं उस रिलेटेड ख्याल तो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सुल्तान रजा जी का मेल हमारे पास है, चंद्रकला मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, उम्मीद है बढ़िया होंगी, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा इकबाल रजा, अच्छा आपने नाम शामिल किया, इन्होंने लिखा है मेरे मन में वक्त अच्छा हर वक्त चल रहा है कि मालिक दुआ सुन ले और बारिश हो जाए और गर्मी से बहुत परेशान है हम लोग, FB स्टूडियो से अच्छा FM स्टूडियो से दुआ करो बारिश हो जाए। अच्छा ओके सुल्तान रजा जी, आपकी ये जो दुआ है कबूल हो, हमें भी जो है इसी दुआ किसी न किसी कोने में है, लेकिन बारिश तो संभव नहीं है अभी तो। सुल्तान जी मैं आपको शौक दूँ, 9 तपा शुरू होने वाला है, 9 तपा 25 से 2 जून तक 9 तपा शुरू होना है। अब समझिए कि सूरज की किरणें सीधे स्ट्रॉ लगाकर हमारी खोपड़ी से खून एनर्जी सब चूस रही होंगी। मैं आपको डरा भी रही हूं लेकिन डरा नहीं भी रही हूं, इसको अवेयर करना है। सुल्तान जी ख्याल रखिए, बाकी सारे श्रोताओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है। राहुल जी का मेल हमारे पास है, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, राहुल ऋषभ फ्रॉम बर्रा कानपुर प्ले, अच्छा इन्होंने गाना फरमाइश की है, गाना राहुल जी इसमें हम प्ले नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए आपके रेडियो सेट पर हम भेजने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको जो है ये गाना सुनवा दें और तुरंत वापस आते हैं, और इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो विचार आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। 14.7 FM रेनबो लखनऊ ट्यून किया है आपने, गाना सुनते सुनते मेल टाइप करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com है हमारा मेल आईडी।

1:39 हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो इश्क मारता है इससे ज्यादा गर्मी मार रही है हमें भाई, इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही है ये गर्मी। और मैंने कहा ना आपसे, जब तक मुझे पता नहीं चला था हड्डियां टूटने का दर्द दिल टूटने से ज्यादा भयानक होता है, टूटने के बाद पता चला। ऐसे ही भाई इश्क विश्क ये सब जितना मारते होंगे, जितनी तकलीफ देते होंगे, उससे ज्यादा तकलीफ तो ये गर्मी दे रही है। बाहर निकल के देख, नहीं, बाहर आपको अगर काम ना हो बहुत जरूरी तो बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए। खैर, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। और जल्दी से आपकी मेल्स को पढ़ना शुरू करें। बाबू अंसारी जी का मेल आया है हमारे पास और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून, इन्होंने लिखा है आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ बाबू अंसारी जी, आप कैसे हैं? और इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम ज़बरदस्त लग रहा है, सॉरी मैं आज का टॉपिक नहीं सुन पाया। बाबू अंसारी जी, इट्स ओके, आज का कोई टॉपिक ही नहीं है, बात यह है कि इसमें आपके दिमाग में, आपके मन में कौन से ख्याल चल रहे हैं। प्रोग्राम ही यही है, होठों पे तेरी बात, आपके ज़ुबान पे जो बात नहीं आ पाई है, जो आप बोल नहीं पाए हैं, लेकिन इस समय आपके मन में खूब चल रही है, वो बात आपने शेयर करनी है हमसे। बबीता राव जी का मेल हमारे पास है और बेली कला गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से इन्होंने हमें मेल की है। और इन्होंने लिखा है, मैम मैं आपको 12 बजे से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, हमें आपकी आवाज़ और सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया बबीता जी। इन्होंने लिखा है, आपके हाथ में आई चोट सोशल मीडिया पर देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत शुक्रिया बबीता फॉर योर कंसर्न, लेकिन ये है कि हम अब ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। चोट पटक तो लगते रहती है, बस ये है कि हमारा ठीक होना ज़रूरी है समय से। और मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ बबीता, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। इन्होंने लिखा है, मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, स्पेशली बेजुबानों के लिए। इन्होंने खूबसूरत सी फ़ोटो भेजी है कबूतरों की और खूबसूरत हरियाली के साथ। इन्होंने लिखा है, पंछी मांगते नहीं बस इंतज़ार करते हैं इंसानियत का। क्या खूबसूरत बात आपने लिखी है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग माई ईमेल, शुक्रिया बबीता जी आपके खूबसूरत मेल के लिए। और आप इसी तरीके से अपने मन में नेक विचार लाते रहें, हमारी दुआ है कि आप सेहतमंद रहें और पंछियों को पक्षियों को यूं ही खिलाते रहें। अगली मेल हमारे पास है अरविंद कुमार बुद्ध जी की, विलेज रसूलपुर सुनवती डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद भारत। अच्छा, भारत में बहुत ज्यादा क्या लिखा है आपने, पता नहीं, आपने कुछ लिखा है कि बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने लिखा है, और इन्होंने लिखा है बहुत सारी कि बाकी हमारा माइंड और साइंस होती है, मतलब बहुत सारे 5% 10% ही गॉड वर्क करता है, बाकी हमारा माइंड मून, आपने बहुत टेक्निकल बात लिखी है। और मुझे लग रहा है कि अरविंद कुमार बुद्ध जी, आपके दिमाग में जो टेक्निकल बात चल रही है ना, 20% 10% 80% 5%, ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, इसको आपने आसान बना करके समझाना होगा हमें। और ये जो मेल आपने भेजी है इसके लिए शुक्रिया।

लेकिन हमें कुछ मैसेज ही समझ नहीं आया आपकी मेल का। होता है अरविंद जी, होता है, और बाकी श्रोताओं को भी पता है होता है। कई बार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, कोई वस्तु इस शेप की है तो आखिर इस शेप की ही क्यों है, ये भी चलता रहता है। कोई बात नहीं, राहुल जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है कि मेरा विचार है कि आप कहीं लेफ्ट इंडिकेटर दे के राइट को तो नहीं मुड़ गई थी। अरे वैसे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है राहुल जी, ज़रूरी नहीं है सारी महिलाएं ख़राब ड्राइव करती हों, अच्छा भी ड्राइव करते हैं, और सेफेस्ट ड्राइवर्स तो महिलाएं होती हैं। तो ये महिला पुरुष करना छोड़िए, आप समझ गए, आप मुझे पता है आप मजाक उड़ा रहे महिलाओं का। रामेश्वर जी का मेल हमारे पास आया है। होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी सादर नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, और इन्होंने भी लिखा है कैसे चल रहे हैं, कैसी हैं आप, और मैंने बहुत अच्छी हूँ मैं रामेश्वर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें मेल लिखने के लिए। इन्होंने लिखा है मेरा भी पैर टूट गया है, कम चल पाता हूँ। रामेश्वर जी आपकी मेरी स्थिति एकदम एक जैसी है, नहीं पर आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही आपकी रिकवरी की दुआ करते हैं हम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा, बहुत सारे नाम आपने शामिल किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, अपना ख्याल रखिए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इसमें यही बात चलती होगी कब ठीक होगा, कब जुड़ेगा, हम समझ सकते हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने नमस्कार लिखा है। नमस्कार आपको भी बसंत जी, इन्होंने लिखा है प्रस्तुति सुन रहा हूँ बहुत देर से, आपके प्रोग्राम सुनते सुनते लंच कर रहा हूँ, दोस्तों की बात सुन रहा हूँ, आपको चोट की खबर सुनकर अजीब सा लग रहा है क्योंकि आपको प्रॉब्लम होते हुए भी स्टूडियो में प्रोग्राम पेश करी। नहीं नहीं बसंत कुमार जी, हमने अपना पूरा समय लिया है ठीक होने में, और ठीक होने के बाद ही हमने अपना प्रोग्राम किया है। और इन्होंने लिखा है कि हड्डी टूटने की वजह से ये भी 4 महीने बिस्तर पर रहे और रीढ़ फ्रैक्चर हो गई थी। और आपने लिखा है हमें मेल दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से, बसंत कुमार सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए बसंत जी, और बहुत खूबसूरत शहर से आपने मेल किया है कोलकाता से, और हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, अपनी बात हमसे शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मेल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक मेल और शामिल कर लें और उसके बाद हमें खूबसूरत से गाने की रुख तरफ को रुख करेंगे। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर, इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम सुपर हिट स्वीट स्वीट अच्छा कर रही हैं, आपको शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून, गाने भी अच्छे बज रहे हैं। इन्होंने लिखा है बहुत धन्यवाद, मेरे खेत में अभी, अच्छा खेत में है, आप लोग आए तो अच्छा। इन्होंने लिखा मेरे खेत में अभी गाना है, आप लोग आए तो बर्फ डाला ताज, स्वीट स्वीट मीठा गन्ने का रस, अच्छा ओहो हो गन्ना है आपने लिखा है, वो गन्ने की जगह गाना हो गया है, कोई बात नहीं। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सोचा कि आप हमें अपने गन्ने, ताज़े गन्ने का रस पिलाएं अपने खेत से, तो बहुत शुक्रिया आपका। गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं आप, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, हमारी दुआएं हैं, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपके लिए, आप इसे इंजॉय करिए, तुरंत वापस आते हैं आपकी मेल्स लेकर।

बताइए कितना खूबसूरत गाना है ना, और इस गाने ने भी कई बार कितनी सारी धूम मचाई थी। अलग अलग ओकेजन्स पे ये गाना इस्तेमाल होता गया, और जब ये गाना आया था उसमें भी कितनी धूम थी। समय होता है हर चीज़ का, और जैसे ये समय है हीट वेव का, गर्मी का, और नौतपा आने वाला है। फिर मैं आपको डराए जा रही हूँ, नहीं डरना तो है ही, लेकिन डर के आगे जीत वाला मोमेंट करना है।

मोनू सेठ जी का मेल हमारे पास आया कि इस समय तो बचपन का वो दौर याद आ रहा है कि इतनी तपन में भी घर से निकल पड़ते थे और मैदान में खेल कूद में बीत जाता था पूरा दिन। साथ में मम्मी पापा की मार भी खानी पड़ती थी, बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं समझते थे, बस खेल खेलना होता था। दादी नानी का घर याद आता है, जब बचपन में स्कूल की छुट्टी वहीं बिताते थे। नाना जी के साथ बाजार जाना, कचालू खाना, तरबूज आम नाना जी लेकर ज़रूर आते थे। अब तो बस जीवन में तपन है, मज़ा नहीं है। लेकिन मोनू जी, मैं आपसे कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में तपन है तो आप इस तपन में कुछ बढ़िया सेक कर खा लीजिए। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको पॉजिटिव बात बता रही हूँ। तपन को तपन की तरह नहीं देखना है, गर्मी तो है और होती रहेगी, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी हरकतें हैं उस हिसाब से हर साल ये तपन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए दुखी होने के बजाय खुश होइए, कुछ तरीके ढूंढिए, बढ़िया सा एकदम फैमिली फन करिए, कुछ बढ़िया अपनाया जाए तरीका अपनों के साथ, अपनों को भी खुश करने का, अपने आप को भी खुश करने का। धर्मवीर भारती जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून टू यू एंड फुल टीम ऑफ FM रेनबो लखनऊ टीम एंड ऑल लिसनर्स जो देश विदेश में इस चैनल को सुन रहे हैं। तमाम श्रोताओं में से एक मैं धर्मवीर भारती शुक्लागंज उन्नाव से मेल कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, उत्कृष्ट प्रस्तुति है, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने लिखा है, मुझे लगता है हैप्पी मोमेंट एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम इंसान क्रिएट कर सकते हैं। सौरव मोमेंट तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं और एवरीवन शुड थिंक टू बी हैप्पी एंड क्रिएट हैप्पी मोमेंट्स एंड हैप्पी सराउंडिंग्स नियर बाय। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पॉजिटिव मेल आपने लिखा है। इन्होंने साथ में लिखा है, गेट वेल सून, बहुत शुक्रिया आपका। और धर्मवीर जी, आपकी खूबसूरत और पॉजिटिव बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश यदुवंशी जी ने लिखा है कि मेरे मन में बस यही चल रहा है कि इतनी भयंकर गर्मी में सुबह से शाम तक बस घर के अंदर ही रहें। हाँ, अगर ज़रूरी काम ना हो तो आप घर पे भी रह सकते हैं। अहमद नवाब ने दोबारा मेल किया है कि चंद्रकला, आपने ऐसा पूछा कि भूली बिसरे आप बातें भी याद आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन अपनी चाची के लिए सूट लेने गई थी तो चाचू ने कहा था पैसे बाद में दे देंगे, पता नहीं वो पैसे लिए हमने या नहीं लिए। आपको वो भी याद आ गई, होता है होता है। और बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और अगला प्रोग्राम हमारा हॉटमेल है, और हॉटमेल के लिए आपको मेल करना होगा अगेन हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com पर। आपके दोस्त चंद्रकला आपके साथ एक खूबसूरत सा छोटा सा शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक आएगा, और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक के बाद तुरंत आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल शुरू करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं करना होगा वाइंड अप। टाटा बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लगभग 330 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले के तहत वाराणसी के बरेका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कल आजमगढ़ के सठियाओं में आयोजित बिजली कैंप का दौरा कर जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल की गड़बड़ी और अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए मेगा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग जनता की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता एवं तत्परता से कार्य कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बढ़ती विद्युत मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराई जा रही है तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और गरीबों के अधिकारों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण और उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री मनोज पांडे ने ऑयल एजेंसियों एवं गैस पेट्रोलियम की आपूर्ति सभी आउटलेट और गैस एजेंसी पर सुनिश्चित करने को भी कहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी के बाद ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बार संशोधन है। यह वृद्धि ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। इस बीच इंडियन ऑयल ने कहा

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। सुनते रहिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी सुनने से आप तरक्की करेंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, दिस इज सिमरन आहूजा।
1: दो बजकर के चार मिनट हो गए हैं और आपका स्वागत है, प्रणाम है आपको फिर से आपके अपने प्रोग्राम हॉटमेल में। फिर से इसलिए बोला क्योंकि फिर से मैं हूं आपके साथ। प्रोग्राम तो आज का नया शुरू हुआ है ना, ठीक दो बजे आप सुनते हैं हॉटमेल और न्यूज ब्रेक के उस पार हम फिर हाजिर हो गए आपके साथ। इसलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और पहली ही मेल हमारे पास आ चुकी है जय जी की, होली चौक उत्तम नगर से मेल हमारे पास आई है। और दिल्ली से ईमेल हमारे पास आई है उत्तम नगर, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और गाने की फरमाइश की है साथ में। अब देखिए जो प्रोग्राम हॉटमेल है ना, आपके जो हॉट मेल्स हैं गर्मी के मौसम में भी जो है तापमान और बढ़ा रहे हैं। खूबसूरत फरमाइशें आपकी होती हैं, मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है फरमाइशों को देख करके। और ये हॉटमेल स्पेशली डिज़ाइन भी आप ही के लिए किया है। देश दुनिया से आप जो हमारे FM चैनल से जुड़े हुए हैं और आपकी बातों को आपकी फरमाइशों को पूरा करना तो बनता है। उत्तम कुमार भगत जी का मेल हमारे पास आया है, पाकुड़ झारखंड से आपने हमें मेल किया है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णम जी का नाम शामिल किया है और कुछ नाम आपने पश्चिम बंगाल से भी शामिल किए हैं। दिलीप कुमार जी की मेल हमारे पास है मुंदी चौक भागलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी जी का नाम शामिल किया है आपने और आपने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ। बहुत शुक्रिया आपकी मेल के लिए। मूसा शेख जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने खैरियत पूछी है, हम बिल्कुल खैरियत से हैं, आप कैसे हैं, और इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ सनावत से हमें मेल किया है। बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हमारे पास आया है और आपने हमें मेल किया है, कहाँ से आपने हमें मेल किया है, आपका एड्रेस है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। और बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है और साथ में लिखा है अपनी पसंद से कोई भी गीत सुना दें। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास है फिर से, इन्होंने लिखा है हॉटमेल प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, हमारे पसंद के गीत सुनाए जाते हैं और आपने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से मेल किया है। सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत जाधव और प्रणाली, सानवी, कल्पना, सर्वद, प्रथमेश, संचित, इन सब का नाम शामिल किया है। सिद्धार्थ गोंडाने जी का मेल हमारे पास है और आपने ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से मेल किया है गाने की फरमाइश के साथ। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा जी का नाम शामिल किया है आपने। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है, देखिए आपसे एक गुजारिश है कि आप जो है ये मेल दोबारा ना किया करें, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट मेल्स जो हैं वो दब जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। मेहर अरोड़ा जी का मेल हमारे पास है, पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से आपने मेल किया है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। दिग्दर्शन गौड़ जी का मेल हमारे पास है, मेरठ कैंट से आपने मेल किया है। दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति।

या जया इन सब का नाम शामिल किया है। सुनील पाठक जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है, आदरणीय होस्ट मैडम जी, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, आपका बहुत शुक्रिया। हॉटमेल प्रोग्राम में आपका स्वागत है सुनील पाठक जी। टीडी मल्होत्रा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का नाम शामिल किया है। राजकुमार डूडी जी का मेल हमारे पास आया है फ्रांसी हिसार से, राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार जी का नाम शामिल किया है। शाहरुख नूर अंसारी जी का मेल हमारे पास है, पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान का नाम शामिल करते हुए किसी भी गीत को सुनाने की बात कही है। और अगला मेल हमारे पास है हरजिंदर छिंदा जी का, इन्होंने गांव नथाना पंजाब से मेल किया है। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता का नाम शामिल किया है, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाने के लिए कहा है।

शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान का नाम शामिल करते हुए किसी भी गीत को सुनाने की बात कही है। और अगला मेल हमारे पास है हरजिंदर छिंदा जी का। इन्होंने गांव नथाना पंजाब से मेल किया है। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता का नाम शामिल किया है, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाने के लिए कहा है। सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है, नमस्कार सिस्टर जी, इन्होंने वेलकम टू द प्रोग्राम लिखा है, इफ पॉसिबल प्लीज लेट अस हियर आवर सॉन्ग, और गाने की फरमाइश की है इन्होंने। चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास है। दिनेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी का नाम शामिल किया है। शाहजी बोटके जी का नाम हमारे सामने है, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके जी का नाम शामिल किया है। रामेश्वर जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने नमस्कार लिखा है, नमस्कार रामेश्वर जी, आपको भी और प्रोग्राम सुन रहे हैं। इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, बाबू, वेद, इनका नाम शामिल किया है। कमलकांत गुप्ता जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता जी का नाम शामिल किया है। और अगला जो मेल हमारे पास है, हमारे पास मेल्स का जो सिलसिला है ना, वो एकदम धड़ाधड़ चला जा रहा है। रमेश कुमार जी की मेल हमारे पास है, पटेल नगर मलोट से आपने मेल किया है। डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। और नवी हसन जी का मेल हमारे पास है, आपने हमें लिखा है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नवी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है, बेहद शुक्रिया आपका। अनिल वर्मा जी का मेल हमारे पास है और आपने सदर बाज़ार कुरावली से मेल किया है, अनिल कुमार, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा का नाम शामिल किया है। ताज मोहम्मद जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से आपने हमें मेल किया है। नितेश देवांगन जी का मेल हमारे पास है, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा जी का नाम शामिल किया है। और आपकी मेल्स का ये जो सिलसिला है ना, वो चलता रहेगा खूबसूरत तरीके से, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये खूबसूरत सा गाना जो आपने फरमाइश की है, ये आपके रेडियो सेट पर है, आप इसे सुनिए, एंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं आपकी मेल्स को लेकर।

और मेल्स की तरफ बढ़े आगे आते ही, एक खूबसूरत गाना आपकी फरमाइश में था और इतने खूबसूरत गाने को फरमाइश करने के लिए भी आपका शुक्रिया भाई। और आपकी मेल्स का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं, प्रोग्राम हॉटमेल चल रहा है और रमेश कुमार जी का मेल हमारे पास है और रमेश कुमार जी ने लिखा है, आप सब

बेटी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है मेरा मेल ज़रूर शामिल होगा। और इन्होंने लिखा है, कहाँ से आपने लिखा है, रमेश कुमार, ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट लोहरपुरवा, तहसील कंपियरगंज, ज़िला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। शुक्रिया रमेश जी हमें मेल करने के लिए, आपने गाने की फरमाइश की है। साथ में बबलेश पंवार जी की मेल हमारे पास आई है। बबलेश जी की मेल हमें आई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार जी का नाम शामिल किया है। और अकरम हुसैन प्रिंस जी का मेल हमारे पास आया है महसोल सीतामणि बिहार से। इन्होंने गाने की फरमाइश की नहीं है, इन्होंने लिखा है किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल करें। मसरत जहां, तलत जहां नाज, फरहत जहां, रिफत जहां और नुजहत जहां, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज, इन सब का नाम शामिल किया है। आपका बेहद शुक्रिया। मोहसिन रजा का मेल हमारे पास है सनावत से। शेख मूसा मोहसिन आपने लिखा है नाम अपना। और पूनम गगनेजा जी का नाम हमारे सामने है, इन्होंने लिखा है राम राम जी, प्लीज़ एनी सॉन्ग। जलालाबाद वेस्ट से आपने मेल किया है। सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का नाम शामिल किया है। तनुजा देवांगन जी का नाम शामिल किया है। पाहंदा पलाड़ी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है हमें। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन जी का नाम शामिल किया है। नवी हसन जी का मेल हमारे पास है और आपकी मेल हमने शामिल कर ली है। टीडी मल्होत्रा जी की भी मेल शामिल हो चुकी है हमारे पास। भाई आप दोबारा मेल मत किया करिए क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करता है। नरेश जी की मेल हमारे पास है और आपने खेल बाजार पानीपत से मेल किया है। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इन सब का नाम शामिल किया है। आफ्ताब अंसारी जी की मेल हमारे पास है और इन्होंने शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मेल किया है। आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया जी का नाम शामिल किया है गाने की फरमाइश के साथ साथ। तुलसी मस्किन जी का नाम हमारे सामने है। तुलसी मस्किन जी, इन्होंने लिखा है नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में मेल पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशु खुराना का नाम शामिल किया है। और अगला जो मेल हमारे पास है वो है रामराज जी का। रामराज जी ने मेल किया है हमें गांव पहाड़ीपुर, ज़िला रायबरेली से। रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी, काका, सबसे पहले हमारी तरफ से चंद्रकला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया रामराज जी आपका, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और इन्होंने लिखा है कि आपने हमारा संदेश और ईमेल होंठों पर तेरी बात में भी शामिल किया, बहुत धन्यवाद। उन्होंने गाने की फरमाइश की। रामराज जी बहुत शुक्रिया आपको, आपके लिए भी दुआ है कि आप खूब सेहतमंद रहें, ईश्वर आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और कमलकांत गुप्ता जी का मेल हमारे पास है पिपरिया से और किसी भी गीत में शामिल करने के लिए आपने लिखा है। एक मेल हमारे पास आया है शेड गांव बुल्टाना महाराष्ट्र से। प्यार भरा नमस्कार लिखा है आपने और गानों की फरमाइश के साथ साथ आपने संतोष एस काले, तेजस, लोकेश, गंजन, राजू, इन सब का नाम शामिल किया है। साई गायकवाड़ जी का मेल हमारे साथ है, हमारे पास है। इन्होंने लिखा है हॉटमेल करने वाली दीदी को हमारा नमस्कार। ओके, नमस्कार जी आपको भी, और आपकी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए। गाने की फरमाइश के साथ आपने लिखा है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। राधे श्याम जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है मास्टर राधे श्याम कासगंज से और गुड आफ्टरनून लिखा है। और इन्होंने कैसे हो लिखा, मैं बहुत अच्छी हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर 41 डिग्री है और ऐसे में ठंडक प्रदान करने के लिए एक सॉन्ग सुना दीजिए। ठंडक प्रदान करने के लिए एक गाना आपको सुनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और राजेश यदुवंशी जी ने हमें मेल किया है और इन्होंने लिखा है तजुर्बा और ठोकर दोनों इंसान को सिखाते हैं, ठोकर अचानक लगता है और तजुर्बा धीरे धीरे समझ में आता है। और बहुत शुक्रिया राजेश जी, यदुवंशी जी, हमें मेल करने के लिए। आपने हमारी तस्वीर भी

जी हमें क्या बात है, कहाँ से ढूंढ लिया आपने? प्रवीण रणपारा जी का मेल हमारे पास है, गुजरात गांधीग्राम से आपने मेल किया है। प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौहारी जी का नाम शामिल किया है, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए शुक्रिया लिखा है। और जो अगला मेल हमारे पास है सुदर्शन शाह जी का है, इन्होंने हमें लिखा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र जी का नाम शामिल किया है। वकील अहमद जी की मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, गाने की फरमाइश की है। और अहमद मंसूरी, कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया, शमा, रिंकी पिंकी, इन सब का नाम शामिल किया है। स्वर्ण सिंह जी का मेल हमारे पास है गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह जी का नाम शामिल किया है। और अगली जो मेल हमारे पास है इरफान खान जी की है, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वो मेल हमारे पास है राजू मिगलानी जी की, इन्होंने हमें मेल किया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। और बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वो है दीपेश वर्मा जी की, दीपेश वर्मा जी ने हमें मेल किया है पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश का नाम शामिल किया है गाने की फरमाइश के साथ। समशुल कमर राही जी का गाना है, गाने की फरमाइश तो नहीं है, इन्होंने लिखा है कोई भी गीत सुना दे, गंज डुडवारा से। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान का नाम शामिल किया है। अगली मेल हमारे पास है हनुमंत शिंदे जी की और इन्होंने लिखा है प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, और शिरटे जिला सांगली महाराष्ट्र से मेल किया है हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे जी का नाम शामिल किया है। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है वीके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता जी का, इन्होंने लिखा है विनोद कुमार गुप्ता, गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी, मैं अपने मित्र अजय कुमार मिश्रा जी के साथ आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूं, आज आपके कार्यक्रम में जीता हूं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी। और राजेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कार्यक्रम गीत आपके नाम, अपनी पसंद कोई भी गीत सुना दें, गोल्डन श्रोता संघ, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है राजेश कुमार वर्मा। प्रीति कार्तिक आर्यन जी का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वो अगली मेल है हीरा मणि वर्मा जी की, आपने भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से मेल किया है, दोबारा कृपया मेल ना करें, ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपकी ही पसंद का।

2:35 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपकी जो मेल्स है ना वो फटाफट से हमारे पास आए जा रही हैं, और इतनी सारी मेल्स हैं कि मतलब ढेर सारी हैं, कहने का मतलब ढेर सारी। और अगली मेल की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगली मेल हमारे पास है अभिजीत गुहाणकर जी की, और अभिजीत जी की मेल हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गुहाणकर, सरिता गुहाणकर, आपने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्जुन गुहाणकर और वैशाली शैलेश, प्रिंच एकांश, कुमारी ध्वनि, इन सब का नाम शामिल किया है। थोड़ी सी कभी कभी कुछ राइटिंग्स जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं। अगला जो मेल हमारे पास है रविंद्र मोहन जी का मेल, इन्होंने लिखा है कोई सा भी गीत सुना दें, किशनगंज बिहार से आपने मेल किया है। रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का मेल हमारे पास, नाम इन्होंने शामिल किया है। संतोष नामदेव जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ हमें लिखा है बघेरा दुर्ग से। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव जी का नाम शामिल किया है। संदीप मक्कर जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ ज्योति मक्कर, संदीप, मन्नत, भरत, कमल साहनी, और बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। अगला जो मेल हमारे पास है बबीता राव का है, इन्होंने लिखा है पता बेली कलां गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से, प्यार भरा नमस्ते लिखा है। बबीता जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। इन्होंने लिखा है वैसे सच कहूँ तो आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं। बहुत शुक्रिया बबीता जी, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूँगी है कि मेरा 7 महीने से कोई भी रिक्वेस्टेड सॉन्ग प्ले नहीं हुआ है, बताइए आखिर ऐसा हमसे कौन से खता हो गई है। आप चाहें तो सिस्टम पर चेक कर लीजिए मैं सच कह रही हूँ या झूठ। वैसे बबीता जी ढेर सारे श्रोता हैं, इतने सारे श्रोता हैं ना कि ये सब देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हो सकता है आपसे छूट गया हो आपका, मतलब ये जो मेल है गाना हो छूट गया हो। और इन्होंने लिखा है आप सभी आरजे इतने अच्छे न होते तो कब का सुनना छोड़ दिए होते, बस आप लोगों की वजह से छोड़ नहीं पाते। अरे बबीता जी, गाना प्ले नहीं हो रहा इसके लिए आप रेडियो ही छोड़ देंगे, ये तो गलत बात है। कई बार हो जाता है ऐसा, और बबीता जी हमेशा जो है अग्रेशन को छोड़ करके दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए कि रेडियो हो सकता है कभी आपकी फरमाइश पूरी होने में देर लग रही हो, लेकिन रेडियो तो आपके लिए पूरी तरीके से फायदेमंद है। सिर्फ गाने के लिए तो आप रेडियो नहीं सुनती होंगे, है ना, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप हमारी बहुत पुरानी लिसनर हैं। और इन्होंने लिखा है कि बहुत हर्ट होता है कभी कभी, बस आपकी मेल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप दुखी मत होइए, खुद को दुखी मत करिए आप, इसलिए क्योंकि आप बहुत प्यारी इंसान हैं, बहुत अच्छा दिल है आपका, आप श्रोता हैं, आप सुनती हैं, और आप सुनती हैं इसलिए आपको बहुत ज्ञान भी है, और आप अपने से छोटों को बड़ों को उनकी ज़रूरत के समय समझा सकती हैं, उनका सहारा बन सकती हैं, मतलब इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। जब आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगे।

काटेंगी तो फिर। खैर, तो इन सारी बातों को अपने मन में रखिएगा, बिल्कुल भी दुखी मत हुआ करिए आप। इस तरीके से अगर आप डिमोटिवेटेड और दुखी रहेंगी तो बहुत बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका गाना ज़रूर प्ले होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका गाना प्ले होगा, बस हमारी बातों को प्लीज़ दिल से लगाइए आप, कि डिमोटिवेट होकर के जीवन नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों के लिए आप बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ देंगी।

अगला जो मेल है हमारे पास वो अगला मेल है बोधराज खोरवाल जी का. इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से मेल किया है. कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल जी का नाम शामिल किया है. जाकिर जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मेल किया है. मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी जी का नाम शामिल किया है. अजमत अंसारी जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने लिखा है अजमत अली फ्रॉम सुल्तानपुर. इन्होंने लिखा है गाना प्ले करने के लिए और गाने की फरमाइश की है. रविंद्र सिंह जी का मेल हमारे पास है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से. रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा जी का मेल नाम शामिल किया है और गानों की और प्रेजेंटेशन की तारीफ की है. बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका. अगली जो मेल हमारे पास है मोहम्मद फैजल जी की मेल है. गाने की फरमाइश के साथ आपने हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमें मेल किया है. फैसल इस्लाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा प्रवीण जोहानुल खुदा का नाम शामिल किया है. विजय महोबिया जी का मेल हमारे पास है रामगंज खंडवा से और आपने नाम शामिल किया है कविता महोबिया विजय महोबिया सोनू मोनू रानू सपना शिवा सलोनी. बहुत सारे नाम आपने शामिल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. हितेंद्र दास जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने लिखा है नमस्कार हाउ आर यू हैवी रेनफॉल इन आर एरिया. कहां कहां है आप, कहां से आपने मेल किया है जहां बारिश हो रही है. इन्होंने लिखा हैवी रेनफॉल इन आर एरिया बट आई एम ट्यून इन डरकोन लखनऊ. फ्रॉम नेम हितेंद्र दास एड्रेस सोनबिल कुडेल असम. ओ आज हम प्रोग्राम भी कर रहे थे हितेंद्र दास जी और बहुत शुक्रिया हमें उतनी दूर से नॉर्थ ईस्ट से हमें मेल पहुंचाने के लिए और बारिश का नाम सुन के एकदम मन में ठंडक सी आ गई हितेंद्र जी. मतलब मजा आ गया सुन के. मतलब सोचिए ना हम यहाँ तप रहे हैं भाई, हम तप रहे हैं, हम यहाँ नौ तपा चलने वाला है लेकिन उससे पहले हम 10 तपा में तप रहे हैं. बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारा प्यार हितेंद्र दास जी आपको और आसाम के जितने भी सुनने वाले हमें हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी गर्मी हम अपनी तरफ से आपको भेज देना चाहते हैं ताकि आप बारिश में ज़्यादा ठंड ना फील करें कहीं. मजाक की बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है. आप दुआएं करिए कि हमें भी आपकी तरह ठंडक महसूस हो जल्द ही. और अगला जो मेल हमारे पास है सुमेरा परवीन का. इन्होंने लिखा है रिस्पेक्टेड सिस्टर होस्ट जी आपका इंतज़ार करते रहते हैं. आज पहली बार मेल किया है, शामिल कर लीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत बार प्लीज़ लिखा है. गाने की फरमाइश के साथ आपने ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मेल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा जी आपका हमें मेल करने के लिए. और हुक्म करमाकर जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने बेरड़ी मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है. हुक्म करमाकर सुनीता करमकर हार्दिक करमकर प्राची तनु जी का नाम शामिल किया है. सुमेरा जी आपसे मेरी विनम्र निवेदन विनती है कि आप कृपया इस तरीके से 10-15 मेल मत किया करिए. अगर आप इस तरीके से मेल बॉक्स भर देंगे तो हो सकता है हम नहीं कोई और आपको ब्लॉक कर देगा यहाँ से, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है, थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है. रितेश जी की मेल हमारे पास है. रितेश जी आपने हमें मेल किया है, अच्छा लग रहा है. और गानों अच्छा दोस्तों के नाम एक गाना आपने जो है लिखा है. अंकित अरुण दीपक सूरज सुनील शुभम और आसिफ जी का नाम लिखा है. अगली जो मेल हमारे पास है वो है किसकी है भाई. फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरीके से बार बार मेल ना करें, हो सकता है हम नहीं कोई और आपको यहां से हटा देगा. सभी की बारी

दिलीप रामेकर जी की मेल हमारे पास है, रहाट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका जी का नाम शामिल किया है। अहमद भागवान जी का मेल हमारे सामने है, अपनी पसंद का गीत कोई भी सुनाने के लिए लिखा है, और बागवान मंजिल छोटी बलिया से इन्होंने मेल किया है। नूर आयशा, इकबाल, अखलाक, आमना, आशु, जूही, सदफ, छतरी टोल, तेघड़ा बाजार बेगूसराय से अदीफा, इस्माइल, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज, इन सब का नाम शामिल किया है। रोजी डिकेस्ट्रो का मेल हमारे पास है, जनकपुरी सहारनपुर से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है और साथ में लिखा है या किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लें। आपकी इन सभी मेल्स के साथ शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का, और इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं आपकी फरमाइशों को लेकर।

2:49 हो गए हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नागिन, ये जो धुन सुनी ना हमने, ये कुछ यूनिक नहीं थी, एकदम से अलग। आगे बढ़ते हैं, मेल्स का सिलसिला शुरू होता है फिर से और जो अगली मेल हमारे पास है वो किसकी है? मोहम्मद सादिक खत्री जी की मेल है हमारे पास और इन्होंने सिर्फ मोहतरमा जी लिखा है। मोहम्मद सादिक जी, क्या लिखना चाह रहे हैं आप? अब्बासी जी की मेल हमारे पास आई है और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, हद हो गई है सब्र की। अब्बासी जी, आपके सब्र की हद होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें लगातार लगातार एक ही मेल कॉपी करके सैकड़ों बार भेज रहे हैं और कुछ मेल्स पीछे छूट जाती हैं। हमारे भी सब्र की हद होनी चाहिए, है ना अब्बासी जी? बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से आपने हमें मेल किया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, इनका आपने नाम शामिल किया है। और अब्बासी जी, आपको बताएं कि अगर आप दोबारा मेल हमें नहीं करते अभी, तो हमें दिखती भी ना आपकी मेल, क्योंकि कई लोग इस तरीके से परेशान करते हैं कि वो एक ही मेल कई बार कॉपी करके भेजते हैं और जो नुकसानदायक है। अरविंद कुमार बुद्ध जी का मेल हमारे पास आया है, रसूलपुर सुनवाटी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। इन्होंने गाने की फरमाइश की है और खूबसूरत गाने की फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया।

और अगली जो मेल हमारे पास है वो मेल है किसकी है, सुधन बाबा जी की, और इन्होंने लिखा है नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड लखनऊ से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हॉटमेल का हमेशा इनको इंतजार रहता है। हम लोग 3 लोग काम करते हैं, रेडियो आपका सदाबहार सुनते रहते हैं सुबह 6 से रात 12 बजे तक। नाम है सुधन बाबू, पप्पू नरेश पंडित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधन बाबा जी, हमें मेल करने के लिए, किसी भी गाने में नाम शामिल करने के लिए लिखा है, बहुत शुक्रिया। अमित बहेलिया जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा, हेलो मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अमित जी, आप कैसे हैं? डीके जी का मेल हमारे पास आया है, कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु, गाने की फरमाइश की है और नई दिल्ली से हमारा मेल आया है। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है महेंद्र देपन जी की, और इन्होंने राजस्थान नागौर से हमें मेल किया है, गाने की फरमाइश की है, और गाने की फरमाइश के साथ इन्होंने लिखा है, आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आपने इस शानदार प्रोग्राम में मेरा ये पसंदीदा गाना ज़रूर शामिल करें और इसे बजाकर मेरा भी नाम बोल दीजिए। महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो गाना है वो प्ले हो।

और अगला नाम हमारे सामने जो है वो है, मैं ये देख पा रही हूँ कि कितने सारे मेल रिपीटेड हैं और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये देख करके, क्योंकि बाकी लोगों की तो बारी आती ही नहीं, उनमें हम मेल्स खोजते रह जाएंगे। शिवम जाटव जी का मेल हमारे पास है सीतारामपुर महोली सीतापुर से, और मुझे इन्होंने गाने सुनाने के लिए कहा है। और शिवम जाटव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और बाकी सारी मेल्स जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी रिपीटेड हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल हमारे पास है, हॉटमेल प्रस्तुतकर्ता दीदी को नमस्कार लिखा है, आपको भी नमस्कार यादव जी। और इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, ढेर सारी तारीफ लिखी है, गाने की फरमाइश की है, किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित यादव, बेबी वनुका वनिका, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से मेल किया है, गुरुग्राम हरियाणा में ये सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।

तेज बहादुर जी हमें मेल करने के लिए और हमें सुनने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी का मेल हमारे पास है। भीषण गर्मी के इस मौसम में हमें अपने साथ साथ समाज और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए अधिक पानी पीजिए, हल्के कपड़े पहने, दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। वेदांत सिंह निवासी तेलवारी रामनगर बाराबंकी। साथ ही जरूरतमंद लोगों, मजदूरों, बुजुर्गों, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाएं और पानी की बर्बादी रोकें। सुरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। अगला आनंद कुमार शुक्ला जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है श्यामदासपुर महमूदाबाद से। उद्घोषक जी को नमस्कार लिखा है और गाने की फरमाइश की है। आनंद कुमार जी आपका बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। सावित्री देवी जी का मेल हमारे पास आया। कैसे हो आप, प्रोग्राम मस्त चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सावित्री जी। इन्होंने लिखा हमारे यहाँ कुछ देर पहले धूल भरी आंधी चली और बादल भी गरजने लग गए। ये सब देखकर मेरा भी तन मन डोलने लगा। अफसोस थोड़ी देर बाद फिर से चिलचिलाती धूप आ गई। सावित्री जी ये मजाक हमारे साथ मौसम अक्सर करता है। हम कई बार छेड़छाड़ मजाक करते हैं ना एक दूसरे के साथ, थोड़ा बहुत उसे तंग करते हैं और मजा आता है। हालांकि ठीक हो जाता है, नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, पर आपको बताएं ये जो छेड़छाड़ होती है, जो तंग करने का तरीका होता है, ये नेचर हमारे साथ करती है और हम इसमें बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। नहीं, हमें भी आपकी बात सुनकर बुरा लगा। सरिता जी का मेल हमें आया है भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से, और थैंक यू सरिता जी हमें मेल करने के लिए। ओ माफ कीजिएगा, ये तो सावित्री देवी हैं, सरिता हम पढ़ रहे थे। सावित्री जी बेहद शुक्रिया आपका नाम गलत पढ़ने के लिए, हमें माफ कीजिएगा। और दिलीप रामेकर जी आपका मेल हम पढ़ चुके थे, आप शायद सुनना भूल गए उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमें प्रोग्राम हॉटमेल में मेल करने के लिए। हमारी तरफ से सारी मेल्स पढ़ी जा चुकी हैं और अगर कुछ बहुत अननेसेसरी मेल्स के दबाव में बोझ के तले नीचे दब गई हैं तो उसके लिए हमें माफ़ करें। और इस समय प्रोग्राम हॉटमेल को यहीं वाइंड अप करने का समय है। यह खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश, आखिरी गाना आज के प्रोग्राम हॉटमेल का। इसी गाने के साथ प्रोग्राम हॉटमेल को करते हैं वाइंड अप। अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में आपसे होती है मुलाकात। ट्यून इन करके रखिए, न्यूज़ ब्रेक के तुरंत उस पार मिलते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वें रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को निरंतर नई गति मिल रही है। वहीं आगरा के रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। रोजगार मेले में मंत्री एसपी बघेल ने 213 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में कल विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं और इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने रोजगार परक योजनाओं में बैंकिंग स्तर पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवातीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एवरेस्ट शिखर पर पहला महिला पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये बल की पर्वतारोहण उपलब्धियों में प्रमुख उपलब्धि है। बल ने कहा कि 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की। अभियान को 19 अप्रैल के बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तीन बजकर के चार मिनट हो गए हैं। वेलकम बैक। आपको वेलकम बैक इसलिए कहा क्योंकि मैं तो कहीं गई नहीं, आपको दोबारा दूसरे प्रोग्राम में स्विच होना पड़ा। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ 100.7 FM रेनबो। आपने ट्यून किया है लखनऊ स्टेशन और 3:05 होने का समय कहता है कि अब ठीक 3 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है सतरंगी दुनिया। और सतरंगी दुनिया में कुछ यूनिक साज है आपके लिए। भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी से हम आपसे बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, विश्व के किसी कोने में नहीं। ढेर सारी बातें आपसे करने के लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्रोग्राम का जो आगाज होना चाहिए वो खूबसूरत, रोमांटिक और दिल खुश करने वाला होना चाहिए। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपकी दोस्त की तरफ से आपसे सुनिए। तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं क्या लाए हैं आज आपके लिए सतरंगी सा।

जी हाँ, आज सतरंगी दुनिया में भी ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा आपके लिए लेकर के आए हैं, और वो खूबसूरत सी बात क्या है? आज पता है यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें लेकर के आई हूँ जो शायद दुनिया के किसी कोने में देखने या सुनने को नहीं मिलेगा यूपी के अलावा। और शायद हो सकता है आप अवेयर हो तो आपको पता भी हो, जानकर आपको गर्व भी होगा, हम यूपी वाले हैं जनाब। खैर, वैसे यूपी की ही बात नहीं है, पर ये तो जीएस की भी बात है ना। जीएस की बात इसलिए है क्योंकि ये चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए थी। आपने खुद भी नोटिस की होगी कई सारी बातें जो भारत में सिर्फ यूपी में ही देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिर चाहे वो हिस्टोरिक इमारतें हों या फिर कुछ धार्मिक स्थल हों, तो आपको बता देती हूँ कि उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था यूपी को। जी हाँ, ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था, और साथ ही इतिहास के कई पन्नों में आपको उत्तर प्रदेश का जिक्र देखने को मिलेगा जो इस राज्य के साथ साथ भारत के लोगों के लिए भी गर्व की बात करते हैं। चलिए आज मैं आपको बता ही देती हूँ यूपी की उन चीजों के बारे में जो आपको दुनिया के किसी कोने में देखने या सुनने को नहीं मिलने वाली हैं। वैसे आपको पता ही होंगी ये बातें, लेकिन आज हम बात करते हैं गर्व से इन बातों के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है आप ही बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला होता है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मेले का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम कुंभ की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कुंभ का मेला ही एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, और मेले का आयोजन इलाहाबाद में होता है, आपको पता है। आपको बता दें कि हर साल 2000 जैसे इस साल नहीं, मैं कुछ और कहने वाली थी। आपको ये बताना है कि 2019 में जो कुंभ हुआ था उसमें ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, और मेले में भारत के साथ साथ विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी जो है भूमिका निभाते हैं, अपनी दूर दूर से लोग आते हैं 2019। वैसे तो हर साल यहाँ पर छोटा मोटा कुंभ जो है उसी समय उन्हीं दौरान जो है छोटा मोटा मेला ये सब लगते रहता है, लेकिन कुंभ जो है वो खास है, उसके बारे में आपको पता होगा। अभी जो रिसेंटली हुआ कुंभ वो देखा होगा आपने, वो देख के भी आपको पता चला होगा कि कितनी ऐसी चीजें हैं अपने ही देश में हमको उन्हीं के बारे में नहीं पता है। और खैर, ये सारी बातें जानते जानते, बात करते करते इन सारी बातों के बारे में, ये तो मैंने बहुत आसान वाली बात आपको बता दी ना, यही सब बातों के बारे में बात करते करते आगे बढ़ते बढ़ते खूबसूरत गाने भी हमको सुनने हैं। इतने आपके मेल्स हमने हॉटमेल में शामिल किए हैं कि गला हमारा सूख रहा है, ये बताइए आप। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

भाई ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे जो यूपी के से जुड़े हुए हैं और यूपी के अलावा किसी और जगह देखने को नहीं मिलता है। और मैं अब आपको बताऊं दूसरी चीज़, आप ही मुझे बताइए, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है जिसमें सबसे ज्यादा छात्र रहते हों? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ बताने के लिए। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े स्कूल की बात करें तो वो यूपी में ही है, अपने लखनऊ में ही है, लेकिन उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसका नाम आपको सर्च करना पड़ेगा खुद। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं से भी किसी भी सर्च इंजन से ढूंढ सकते हैं या पता कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल

लखनऊ में है, यूपी में है अपने, और उसका नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि यहाँ सिर्फ एक स्कूल में 45,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और तो और मज़ेदार बात आपको बताएं, लखनऊ के इस स्कूल में, इस स्कूल का सबसे अधिक स्टूडेंट्स वाले स्कूल के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। समझ रहे हैं आप, नाम उस स्कूल का हम आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप ढूंढिए ढूंढिए उस स्कूल को, आपके शहर में है वो। एक और बात आपको बतानी है, आगरा में भी तो दुनिया का अजूबा है। अब आप कहेंगे ये तो मुझे पता ही था। हाँ पता था, लेकिन हम बात करें यूपी के अजूबी और अनोखी चीजों के बारे में, तो भाई आगरा का नाम लिए बिना तो रह नहीं सकते ना हम। यूपी की अनोखी और अनकही दुनिया जो है उसके बारे में अगर बात करें, तो हम अजूबे ताजमहल को कैसे छोड़ सकते हैं। 7 अजूबों में से एक है भाई, ऐसी खास इमारत दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, आप बताइए। खैर ये फैक्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन आपके लिए जो गाने हमने क्यों करके रखे हैं ना, वो गाने भी चलते रहेंगे। और ये खूबसूरत सा गाना जो है आपके रेडियो सेट पर तुरंत पहुँचता हुआ, सर्च करिए, देखिए देखिए आप, देखिए कौन सा है वो स्कूल।

3:34 हो गए और सतरंगी दुनिया प्रोग्राम चल रहा है. आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ. और प्रोग्राम सुनते सुनते आपको फिर बता दूं, आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ स्टेशन. और पिंगा सुनते सुनते मैं आपको बताऊं, हम जहां से बात कर रहे हैं ना, उसका अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है. वैसे बताऊं, सतरंगी दुनिया ही रंगीन है. ऐसे स्टूडियो के अंदर बैठ करके रंगीन बातें करने में जो मजा आ रहा है मुझे, यही सोच करके मेरा दिल घबरा रहा है कि अभी जब बाहर जाना पड़ेगा तो ये जो बाहर की दुनिया होगी वो क्या सच में रंगीन होगी, या बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से आंखें एकदम बंद हो जाएंगी. मतलब पता नहीं क्यों, पर सुबह होते ही मेरा दिल ये करता है, आंख खोलते ही जब मॉर्निंग होती है ना गुड वाली, तुरंत ही ऐसा दिमाग में आता है कि मतलब हे भगवान, हे ऊपर वाले, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस क्यों. मतलब हम मोबाइल में ब्राइटनेस एकदम जीरो कर देते हैं, आंखों में चुभ रहा है ये सोच के, पर ऊपर वाला देख क्यों नहीं रहा कि ये जो ब्राइटनेस है नीचे वाली बड़ी, सबसे बड़ी टॉर्च जो है ना दुनिया की, उसकी ब्राइटनेस एकदम फुल है. मतलब 100% होती है लेकिन 200% की ब्राइटनेस चल रही है. मुझे ये सोच सोच करके बड़ा बड़ा दुख लगता है कि इस ब्राइटनेस को हम अपनी उंगली से कम नहीं कर सकते. बस चलता मोबाइल की तरह उस ब्राइटनेस को भी बिल्कुल जीरो कर देते, टॉर्च जला के चलते, लेकिन ये वाली ब्राइटनेस बर्दाश्त नहीं होती है ना. खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए गर्मी के समय में. जो जो आपको एहतियात रखने हैं उन सब का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको पसीना भी पोंछना है, पसीने में भी नहीं डूबे रहना है पूरे टाइम. और ये जो बॉडी से मिनरल्स पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं, बीच बीच में आपको पानी पीते रहना है. अगर हो सके तो आप कुछ इस तरीके का पानी पीजिए कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल बना करके नींबू पानी पीते रहिए. बीच बीच में कोई जूस हो सके वो पिए. पर अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गर्मी है एकदम से सुन्न करके चली जाएगी और जब लगेगी तो बहुत नुकसान करती है. और आगे बढ़ते अगर बात करें यूपी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था, प्रचार हुआ था, अपने यूपी से ही हुआ था. बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोग आपको दुनिया में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके प्रसार की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी. अब आप देखिए ना, हमारे प्रदेश में कितनी अच्छी खूबसूरत बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जगह हैं जहां पर आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. वैसे मैं आपको पता है एक गेम की तरह ये प्रोग्राम कर रही हूं कि आप देखेंगे, आप इन चीज़ों के बारे में सोचना, जानना, सर्च करना बहुत ज़रूरी समझने लगेंगे थोड़ी देर बाद. खैर आपसे बात तो होती रहेगी मेरी, लेकिन अपना ध्यान रखिए और इस गर्मी में ना खुद को बचा करके रखिए, बस यही कहूँगी. और ये गाना आपके सेट पर भेजूंगी ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे ना, गाना सुन के थोड़ा सा ठंडक तो फील होती है.

देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन 3:43 हो गई. गर्मी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तबीयत की बात करें, तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है ना. और ऐसा लगता है पूरे टाइम की कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है. और क्या फ़ायदा परेशानियों के बारे में बात करने का? नहीं, बहुत परेशानियों के बारे में बात करना भी अच्छा नहीं है. जो होना होगा वो तो होगा ही. हमारे हाथ में जो समाधान और सुविधाएं हैं, उन्हीं का इस्तेमाल और उन्हीं के लिए दिमाग लगाना आवश्यक है. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि गर्मी से परेशान होकर के खुद ही के सर के बाल नोच लेने से अच्छा ये है, थोड़ा लंबी गहरी सांस लें, पानी का इंटेक ज़्यादा लें, हल्का हल्का खाना खाया जाए. इस तरीके से जो है गर्मी से सामना कर पाया जाएगा. कायदे से देखा जाए तो 30 दिन जो है वो काफ़ी कम होते हैं. तो इसलिए खुद का मानसिक स्थिर होना बहुत ज़रूरी है. मैं ये अपने आप को भी समझा रही हूँ.

खुद ही के बाल नोच लेने का दिल करता है जितनी देर आप बाहर ट्रेवल करते हैं। खैर मैं सच बता रही हूँ आपको। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के यूनिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और बातें हमने बहुत हल्की फुल्की रखी हैं ताकि आपको गुस्सा ना आए कि कौन सा ज्ञान चल रहा है भाई, हमें तो गाना सुनना था। तो इसीलिए आपके लिए तो इंटरेस्टिंग सी बात हमने रखी है और वो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर भी अपने ही प्रदेश में है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में उत्तर प्रदेश का वाराणसी आता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो काशी है इसका अस्तित्व करीब 3,000 साल पुराना है। अब बताइए कि मतलब इतनी बड़ी धरोहरें अपने आसपास हैं, इतना बड़ा ज्ञान अपने आसपास छुपा हुआ है और हम ढूंढते फिरते हैं कुछ अच्छा मिले, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिले। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर जो है वो कौन सा माना जाता है? वाराणसी माना जाता है। जी हाँ, गए हैं आप कभी? बात तो करनी थी मुझे इस शहर के बारे में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गर्मी में आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए। ये खूबसूरत सा गाना बनारसिया आपके रेडियो सेट पर, मैं सोच रही हूँ कि इस गाने को सुनते सुनते जो है बनारस की सैर कर ली जाए मन में, सोचने में क्या जाता है। तो इतनी गर्मी में अगर ठंडा ठंडा कुछ सोच लिया जाए तो क्या जाता है, अच्छा ही है। ट्यूनिंग करके रखिए 100.7 FM रेनबो चंद्रकला के साथ।

3:55 हो गए हैं और ये जो फितूर है ना, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के चढ़ते रहते हैं। खैर, मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन ऐसे ही नहीं चले जाऊंगी, आपको बता देती हूँ। बहुत सारी चीजों में यूपी जो है सबसे आगे है, सबसे पुराना शहर, चाहे किसी धर्म का सृजन होना हो, प्रसार होना हो, दुनिया का सबसे बड़ा मेला हो, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल हो, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन एक चीज में जो है वो यूनिक चीज में, उसमें भी सबसे आगे है अपना यूपी। पता है, प्रदूषण में भी सबसे आगे है। ये सच है कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हर साल यूपी के भी कई शहर लिस्ट में होते हैं, और उसकी सबकी जिम्मेदारी, इस सबकी और इस लिस्ट में हमारा नाम आने की जिम्मेदारी के जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। तो प्रदूषण को कम करने में आप थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए, कूड़ा कम फैलाइए, नदी नहरें जो हैं उनकी सुरक्षा कीजिए। नदियों की, नहरों की, तालाबों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं आपकी जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि सिर्फ पानी ही नहीं ख़राब कर रहे हैं आप, सांस हवा ख़राब कर रहे हैं आप, ज़मीन की उर्वरता ख़राब कर रहे हैं आप, सब कुछ ख़राब कर रहे हैं आप और हम, मैं भी हूँ उसमें मतलब, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, मैं अवेयर हूँ और जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभाती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी निभाएं। ढेर सारी बातें हैं कहने को, लेकिन अगली बार के लिए छोड़ देते हैं कुछ, और अगली आवाज़ जो आपसे जुड़ने वाली है वो भी आ चुकी है आपके बीच। मैं जाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, गर्मी से बचने का प्रयास करती हूँ, बच बच के घर निकलती हूँ। टेक केयर। प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को यहीं करते हैं वाइंड अप, फिर मिलेंगे।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, सेवा मित्र व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रधानमंत्री रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 330 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं के को नई उड़ान देने का माध्यम बन रहे हैं। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आज इटावा में भाजपा के प्रशिक्षण महाभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में 2 दिवसीय महाभियान से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इस दौरान संगठन की कार्य पद्धति और सरकार की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित, गुणवत्तापरक और चिकित्सीय मानकों के अनुरूप है। 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के लिए विशेष सत्र सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया जा रहा है। बलरामपुर के थाना तुलसीपुर में थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक कुमार विकास कुमार द्वारा फरियादियों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी गई। अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जांच करने के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

और इस खूबसूरत गाने के साथ आपके साथ जुड़ गई है आपकी आरजे अलका। जी हाँ, लेकर आएंगे आप सभी के लिए कुछ खास बातें जो मैं ट्यून रखूंगी 100.7 FM रेनबो पर आप सभी के लिए। आज बात होगी हमारे यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, तो करने वाले हैं बहुत सारी बातें जो होंगी आपके फायदे की, लेकिन उसके लिए आपको ट्यून रखना होगा 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

सो माय डियर लिसनर्स, करने वाले हैं बहुत सारी बातें स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई आज के एप्स प्रोग्राम यूथ वेव में। जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट की चलिए करते हैं शुरुआत इस शब्द से ही। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो आपको आपकी पर्सनालिटी को निखारने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन कौशल सिर्फ पढ़ने से कभी नहीं आता। कौशल प्रैक्टिस प्लस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट इन सभी के मेल से आता है। यानी कि बोलने का जो कौशल है वो लेखन से नहीं आएगा, और जो लीडरशिप का

कौशल है वो टीम संभाल कर ही आएगा। यानी कि अगर आपने टीम वर्क करना है, आपको टीम को लीडरशिप के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, लीडरशिप के अकॉर्डिंग आप उसे संभाल रहे हैं, तब तो आपके अंदर वो कौशल आएगा। अदरवाइज जब तक आप प्रैक्टिकली फील्ड पर नहीं उतरेंगे, आपको वो चीज़ें समझ में कभी नहीं आएंगी। अब कौशल के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ कि दो तरह के ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को भी आप चुन सकते हैं अपने इस स्किल को डेवलप करने के लिए। लेकिन वो क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, आप उनका चुनाव कैसे कर सकते हैं, इस पर भी और भी बहुत सारी बातें अभी करेंगे। फिलहाल एक खूबसूरत से गाने को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

तो चलिए बात करते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया स्किल डेवलपमेंट को आप दो तरीके से आप इन रास्तों को चुन सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश की है तो आपको हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, इन दो रास्तों पर आप जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपका अपना शौक है या आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी स्किल है, आप उसे और ज़्यादा निखार सकते हैं जो हार्ड स्किल से रिलेटेड है। अब इसमें आता है आपके अकॉर्डिंग कोडिंग, डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, ये जो नौकरियां हैं इनसे जुड़ी, वो आपको ये सारी जो स्किल्स हैं ये जॉब्स दिलाती हैं, नौकरियां दिलाती हैं। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपके लिए सॉफ्ट स्किल का है, यानी कि आपके व्यक्तित्व कौशल का होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ये आपको करियर में आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह के जो स्किल जब आपके अंदर डेवलप होते हैं तो उन्हें हम सॉफ्ट स्किल की कैटेगरी में रखते हैं। एक स्किल आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है, बहुत सारे रास्ते खोल देता है। जैसे कि आप में कम्युनिकेशन स्किल अगर है, थोड़ा बहुत भी है, और आपने उसे और निकाल लिया तो आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया, तो आप इस कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। कैसे? आप इंटरव्यूअर हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे डेवलप हो सकते हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सकती है, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। और ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो ये मान के चलिए कि आपको इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, फील्ड में आपको इसके लाभ बहुत ज़्यादा मिलते हैं।

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल BOP डिविजन MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रूपए से 70,000 रूपए। जहाँ तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहाँ आप भेज सकते हैं। 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुँच जाने चाहिए। सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड, प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम। इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, पदों की संख्या 2 होगी। YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, पदों की संख्या यहां पर भी 2 होगी। YP डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इत्यादि, 1 पद यहां रिक्त है। YP कंपनी सचिव, 1 स्थान यहां रिक्त है। YP सामग्री प्रबंधन, 1 स्थान रिक्त है। YP मार्केट रिसर्च, डेटा व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण, 1 स्थान रिक्त है। YP सिविल इंजीनियर, 1 स्थान रिक्त। YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 1 स्थान रिक्त है। YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, 1 स्थान रिक्त है। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में 2 पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: अब से कुछ ही देर में 4:25 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: वे कमलिया, वे कमलिया,
2: खूबसूरत गानों का सिलसिला भी लगातार इसी तरह जारी रहेगा यूथ वेव में, क्योंकि हल्का है आपके साथ 100.7 MHz FM रेनबो पर, और बात हो रही है आज स्किल डेवलपमेंट के बारे में।

यूथ फेव में। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे तेज स्किल सीखने का क्या फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो अप में लेते हैं तो आपको इसके डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि रोज़ कम से कम कुछ नया सीखना, कुछ नया कहना, कुछ नया लर्न करना होता है। दूसरा स्टेप जो आता है वो है डू, जी हाँ, कुछ करना। जो सीखा है आप उसे सीख कर यूं ही बिल्कुल ना छोड़ दें, तुरंत उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है। देन तीसरा स्टेप आता है इसका रिपीट। अब आपने जो सीखा है वो आपको दोहराना भी बहुत ज़रूरी है। आप यूँ समझ लीजिए, कभी आप अपने चाइल्डहुड की तरफ नज़र दौड़ाइए और सोचिए कि जब आप कुछ लर्न करते थे, लर्न करने के बाद जब आप उसे रिपीट नहीं करते थे तो डेफिनेटली उसे भूल जाते थे। जब हम कुछ लर्न किया हुआ पार्ट जब हम उसे याद करते हैं तो हम उसे रिपीट करने के बाद अच्छी तरह से उसे हम याद रख पाते हैं हमेशा। फोर्थ स्टेप की तरफ अगर बात करें तो फोर्थ स्टेप इसका होता है रिफ्लेक्ट। अब ज़रूरी है कि ये पहचानना कहाँ पर गलती हुई है आपसे, ये सोचना, फाइंड आउट करना कि आपने जो कुछ किया, आपने जो रिपीट किया, जो प्रैक्टिस की, उसमें कहाँ गलती हुई है, और उस गलती को सुधारना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए नंबर 5 पर रखा जाता है इम्प्रूव, जी हाँ, धीरे धीरे बेहतर बनना, जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करना, जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारना और इम्प्रूव करना। यानी कि इन 5 स्टेप के फॉर्मूले की तरफ अगर आप चलेंगे, इनको आप फॉलोअप मिलेंगे तो बिल्कुल आप एक बहुत अच्छे तेज़ी से स्किल जो आप सीखना चाह रहे हो उसे सीख पाएंगे। सबसे पहले लर्न, देन डू, इसके बाद रिपीट, उसके बाद रिफ्लेक्ट, एंड लास्ट में इम्प्रूव। इसलिए इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है।

सो माय डियर लिसनर्स, अब आपको बताते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा मांग वाले स्किल्स कौन से हैं और किन की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, जिन्हें अगर आपने सीखा तो आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बता देते हैं और इनमें से चूज करना आपकी अपनी चॉइस होगी। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आज का समय AI का है। अगर आप इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो इसके ढेरों फायदे आपको मिलने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा स्किल है, जिसे डेवलप करना आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। इसके अलावा वीडियो प्रोडक्शन जो है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। इस समय में अपने अंदर इस स्किल को अगर आप डेवलप करते हैं तो आप मार्केट में, इस फील्ड में आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। सेल्स एंड नेगोशिएशन भी एक इसमें ऑप्शन के तौर पर आता है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, जैसे आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI, वैसे ही आप इस कैटेगरी में इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रख सकते हैं, यानी कि इसे हम शॉर्ट में EQ कहते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि अगर आप ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं या इन्हें आप सीखते हैं तो आपको ढेर सारे फायदे इसके मिल सकते हैं। अभी और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, फिलहाल एक गाने को एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

तो दोस्तों धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है, 7:47:33 हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं आज यूथ वेव में स्किल डेवलपमेंट की। तो आज की दुनिया में अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री से ज़्यादा कौशल की वैल्यू है, स्किल की वैल्यू है, और ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ स्किल है तो उन्हें इस भीड़ में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पूछा जाता है। अगर आपके सॉफ्ट स्किल आपके अंदर है, यानी EQ, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड लिसनिंग कैपेसिटी, तो आपको लोगों के बीच एक अलग पहचान मिलने में देर बिल्कुल नहीं लगती है। तो चलिए किसी एक सॉफ्ट स्किल को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं और आपको बता दें कि कैसे ये आपकी पर्सनालिटी को चमका देता है, क्योंकि इसके सीखने के तरीके क्या हैं। अगर बात कम्युनिकेशन स्किल की करें तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले रोज 5 या 10 मिनट जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर कुछ कोई प्ले करता है तो वो है आपके घर का शीशा। वो शीशा नहीं, मिरर की बात कर रही हूँ मैं, जिसके सामने खड़े होकर आप अपने बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मिरर प्रैक्टिस इसे कहते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। वॉइस क्लियरिटी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके शब्दों का, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश में, उच्चारण अगर सही नहीं है तो आप सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, या जिस लेवल का करना चाहिए उस लेवल का नहीं कर सकते हैं। इसलिए वॉइस क्लियरिटी एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी होती है। एक चीज़ इसमें और भी शामिल कर सकते हैं और वो ये है कि हिंदी प्लस थोड़ी सी इंग्लिश की मिक्सिंग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाती है, जॉब्स, इवेंट्स, मीटिंग्स में आपको इसके ढेर सारे फायदे भी मिलते हैं। फिलहाल एक गाना आइए एंजॉय करते हैं, फिर वापस आएंगे और इन बातों को करेंगे कंटिन्यू। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

लूलू फैशन स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को वैसे तो वाइंड अप करने का टाइम हो गया, लेकिन चलते चलते कुछ बातें हैं जो रह गई हैं आपके साथ शेयर करते चलते हैं। स्किल की बात कर रहे हैं आपके साथ, तो ये स्किल आपको लोगों को अट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद करता है। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप बना सकते हैं लोगों के बीच में। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो स्ट्रांग कनेक्शन भी है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, यानी कि आप अपने आप को स्ट्रांगली मेंटेन कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक प्रॉपर सीढ़ी को फॉलो किया तो फिर डेफिनेटली आपको इसके फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सीढ़ी है कम्युनिकेशन, देन पब्लिक स्पीकिंग, देन इंटरपर्सनल स्किल, देन लीडरशिप। और इसके फॉलो करते चलिए इसे, और देखिए कि पर्सनालिटी जो है वो 100% कैसे इम्प्रूव हो जाती है, बदल जाती है। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें ज़रूर अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। फिलहाल प्रोग्राम हो गया है अब वाइंड अप करने का टाइम, तो चलिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते चलते हैं, वापस आपके पास लेकर आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। जी हाँ, आपका अपना फेवरेट टॉप 10। फिलहाल खूबसूरत सा गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ 2026 के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और इसके लिए भारत सरकार के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। श्री शाही ने कहा, कल लखनऊ में कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीज निगम बिक्री केंद्रों पर समय से बीज नहीं पहुंचाता तो इसके लिए जिम्मेदार सभी कार्मिकों और अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जो बीज राज्य में उपलब्ध नहीं है उनका प्रबंध अन्य राज्यों से तत्काल किया जाए और किसानों को एडसोर्ट सब्सिडी देने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। हमीरपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक गोयल द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठक कर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी विभाग मिलकर दुर्घटना नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधार, अवैध पार्किंग नियंत्रण और स्कूल वाहनों की जांच पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। भीषण गर्मी से यहां लोग बेहाल हैं। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स के साथ हो रही है। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पंजाब किंग्स को हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लखनऊ की टीम पहले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के

0: बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
1: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं वो इंसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
0: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
2: हमारे जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
0: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
3: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकले, और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
0: शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
4: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी सीएचसी पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था की।
0: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं, जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
5: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, उसके नजदीक एक

0: ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहां पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, दो चार कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालु

0: आरंभ हो जाती है। किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, दो चार कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
2: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
3: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जन जीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
7: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
8: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
7: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
9: पांच बजकर 12 मिनट और ये देखिए सेकंड्स के बाद कैसे मिनट्स चेंज हो जाते हैं और हो गए हैं पूरे 5:13 और 4 सेकंड। 100.7 FM रेनबो पर आपका वेलकम करती है आपकी रेडियो साथी अलका। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है टॉप 10 और जल्दी जल्दी आपको आज के टॉप 10 गानों को इंजॉय कराना है। लेकिन गाने कहाँ से लेकर आई हूँ सबसे पहले तो ये बताना है। 90 का दौर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1990 की। 90s का जो दौर था वो बॉलीवुड संगीत का सबसे सुनहरा और सबसे सदाबहार दौर माना जाता है। जुलाई के सुहाने और मानसून के मौसम के मिजाज के गानों को आज चुनकर लाई हूँ मैं आपके लिए। जी हाँ, यहाँ खूबसूरत आवाजों ने खूब धूम मचाई और आज हम आपको लेकर चलेंगे सीधे 90s के दशक में, उस जादुई दौर में जहां नूडल्स से ज्यादा गानों के रिमिक्स नहीं बनते थे बल्कि सीधे दिल को छूने वाले ओरिजिनल मेलोडीज बनती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। खूबसूरत गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

और परदेसी परदेसी नंबर 10 पर उस वक्त जम कर रहा था। और बात आती है अब नंबर 9 की। 1992 में आई सबके दिलों की धड़कन बनने वाली फिल्म बेटा। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी ने भी धमाल मचाया, और कहानी ने जितना धमाल मचाया उससे कहीं ज्यादा इसके गानों ने धमाल मचाया। माँ और बेटे के प्यार को झलकाती ये फिल्म, जिसका गाना था उस वक्त नंबर 9 पर। तो आइए इस खूबसूरत गाने को इंजॉय करते हैं।

सो आज आप 90s के ट्रैक्स को एंजॉय कर रहे हैं अलका के साथ आज के टॉप 10 में, और अभी फिलहाल नंबर 10 और नंबर 9 को हम एंजॉय कर चुके हैं और अब बारी आ रही है नंबर 8 की। जी हाँ, तो 90s के जुलाई मंथ के इन टॉप 10 सॉन्ग्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। बाहर सोचिए आप कि जुलाई मंथ में झमाझम बारिश हो रही होती थी और हाथ में गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ और प्याली होती थी, बैकग्राउंड में कुमार शानू और उदित नारायण का कोई नगमा, उफ क्या बात है ना, दिल तो पागल हो ही जाता है। बस नंबर 8 पर रही चार्टबस्टर फिल्म और उसका टाइटल ट्रैक। अब कौन सी थी ये चार्टबस्टर मूवी और उसका क्या था टाइटल ट्रैक, आइए आपको इस ट्रैक की तरफ ले चलते हैं।

तो फ्रेंड्स, काउंटडाउन का सिलसिला इसी तरह लगातार चल रहा है। नंबर 10 से शुरुआत कर अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 8 को भी एंजॉय कर चुके हैं और बारी है नंबर 7 की। और इसके बाद 1995 में आई सिमरन और राज की वो जोड़ी जिसने हर दिल को अपना दीवाना बना दिया था। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ फिल्म DDLJ की। और इसके जो सॉन्ग्स थे, जो स्टोरी थी, वो लोगों के दिलों को पूरी तरह से छू चुकी थी। होता यूं था कि जैसे ही ये ट्रैक प्ले होते थे उस वक्त हर लड़का खुद को राज और लड़की खुद को सिमरन समझ बैठती थी। तो चलिए उस दौर के इस खूबसूरत गाने को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, और आ गए हैं अब नंबर 6 पर हम। तो नंबर 6 की बात करते हैं 1991 में उस फिल्म की, जिसके गानों ने उस वक्त हर कैसेट की दुकान पर लाइन लगवा दी थी, और वो फिल्म थी साजन। नदीम श्रवण का संगीत, समीर साहब के लिखे बोल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की वो मखमली सी आवाज। तो सुनिए ना नंबर 6 पर ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ, गाने ही कुछ ऐसे हैं कि प्यार आपको हो ही जाएगा इन खूबसूरत गानों से। और एक के बाद एक चलते हुए हम पहुंच गए हैं इस वक्त कहां पर, नंबर 5 पर। चूंकि नंबर 6 के बाद बारी अब नंबर 5 की आई है। अपने पैरों पर ये पैर अपने साजन फिल्म ने ही जमा रखे थे, नंबर 6 पर भी और नंबर 5 पर भी। बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर से खो जाते हैं यादों के इस सफर में फिल्म साजन के इस खूबसूरत गीत के साथ।

सो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है नंबर 4 की। जी हाँ, चूंकि ये दौर बारिश का उस वक्त था, क्योंकि आज हम 90s के जुलाई मंथ के टॉप 10 सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय बारिश का मौसम था, तो बारिश के जो गाने थे वो लोगों को खास पसंद आते थे, इसीलिए नंबर 4 पर जगह बना रखी थी उस वक्त फिल्म नाजायज के इस सॉन्ग ने। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस काउंटडाउन शो में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: सो फ्रेंड्स, 5:46 और 23 सेकंड हो चुके हैं नंबर 10 से चलते चलते हम पहुंच गए हैं नंबर 3 पर। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे ट्रैक्स आप इंजॉय कर चुके हैं 90s के इन ट्रैक्स को, जो कि जुलाई मंथ में जिन्होंने धमाल मचा रखी थी, बरसात के मौसम में धमाल मचा रखी थी, उन ट्रैक्स को आप इंजॉय करते आ रहे हैं लगातार मेरे साथ आज के टॉप 10 में। बात करें अगर 1942 लव स्टोरी की, तो ये एक जो सॉन्ग था उस वक्त सबकी जुबा पर सबसे ज़्यादा टिका हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। और ये खूबसूरत सा गाना नंबर 3 पर उस वक्त इसने बहुत अच्छी तरह से जगह बना रखी थी। और फिलहाल इस ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन नंबर 3 पर जो जगह बनाई हुई थी वो इस खूबसूरत गाने ने बनाई हुई थी। ये भी 1942 अ लव स्टोरी का था, रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन। तो आइए इस ट्रैक को इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और इसके बाद नंबर टू की आती है बारी, जहां पर एक ट्रैक ऐसा था जिसने जाकर अपने पैरों को जमा रखा था, और मैं बात कर रही हूँ लगान फिल्म की। तो लगान फिल्म के इस ट्रैक को जगह मिली हुई थी उस वक्त नंबर टू पर।

जो बारिश का मौसम रहा था, जुलाई का जो महीना चल रहा था, उस वक्त जो भी मूवीज थी जिन्होंने धमाल मचा रखी थी, जो लेटेस्ट थी, जो कुछ मंथ पहले आ चुकी थी, जो आने वाली थी, उनके ट्रैक्स ने चारों तरफ धमाल मचा रखा था। और अगर अपनी आंखों को बंद करें तो 90s के दशक का जो वो कॉलेज का दौर था वो आपको बेझिझक याद आ ही जाता है। बिल्कुल। वैसे दोस्तों, जब जुलाई और बारिश की बात हो और पीले रंग की साड़ी में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की याद ना आए, नॉट पॉसिबल। 1994 में एक फिल्म आई मोरा, फिल्म एक्शन थी लेकिन इसके गानों ने जो है वो बहुत धूम मचाई थी और देश के लगभग हर दिल में आग लगा दी थी। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं जो उस वक्त था नंबर वन पर, और इसी काउंटडाउन शो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इन टॉप 10 सॉन्ग्स को आपने खूब एंजॉय किया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए एरा के, नए दौर के कुछ 10 खूबसूरत गाने टॉप 10 के इस प्रोग्राम में। फिलहाल आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट शो कुछ ही देर में। शाम अवध, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

का शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, सेवा मित्र व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव में इस अभियान की शुरुआत की। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत तालाबों को नया रूप दिया जाएगा। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां को पहले सुनवाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 5,00,000 रुपए किया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। उनके 50,000 के जुर्माने को बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं जो समाज सेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। अमरोहा के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसी क्रम में थाना बछरायों में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों और शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
3: शाम होने को है।
2: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत

0: के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ फास्ट ट्रैक्स को एंजॉय करने के लिए पूरा एक घंटा रहिए हमारे साथ। जी हाँ, 100.7 FM रेनबो पर आरजेल का आपके साथ रहेगी शाम अवध में, बात होती रहेगी कुछ खास अपडेट्स की, लेकिन साथ साथ इन फास्ट ट्रैक को एंजॉय करते चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है आपको अगली अपडेट की तरफ लेकर चलें। तो इस वक्त आपको बता दें कि भाई 25 और 26 मई को एक खास ट्रेन चलाई जाएगी, और वो क्यों चलाई जाएगी वो भी आपको बता दें। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर जो गंगा दशहरा मेला है उसके लिए हरिद्वार से 25 और 26 मई को विशेष ट्रेन चलेगी। इसका जो समय होगा वो भी आपको बता दें, 4:35 पर ये ट्रेन वहाँ से चलेगी और अगले दिन सुबह 3:30 पर ये लखनऊ जंक्शन पहुँचेगी। इसके अलावा सिर्फ हरिद्वार से लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ से हरिद्वार के लिए भी 26 और 27 मई को 5:30 चलकर ट्रेन जो है वो हरिद्वार 4:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन की जो सभी बोगियां हैं वो आपको जनरल कैटेगरी की मिलेंगी, यानी जनरल श्रेणी की ही मिलेंगी। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी नहीं मिलेगा। जनरल कोच के साथ ये ट्रेन जो है सुविधा देने के लिए, यात्रियों को, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर। फिलहाल अभी और भी एजुकेशनल बहुत सारी अपडेट्स होंगी आज के शामी अवध में। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अगली अपडेट का, आपको आगे ले चलने का कि कुछ एजुकेशनल जानकारी है मेरे पास आपके लिए, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजन होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की जो संभावित तिथियां हैं वो जारी की हैं। अभी इन डेट्स को कन्फर्म डेट्स नहीं माना जाएगा, ये एक संभावित तिथियां हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से ये प्रस्ताव जारी किया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो 23 जून से 25 जून तक आयोजित की जाएंगी। तो परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल अब ये जानकारी आपको बता दें कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई वो काफ़ी स्पीड अप है, लेकिन आपको डेट्स आने के बाद और भी तेज़ी के साथ पढ़ाई की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। ये प्रवेश परीक्षाएँ संभावित तिथियों के साथ बताई गई हैं, 23 से 25 जून। अभी इन तिथियों में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अरे गाड़ी रोको, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, चालान काटना पड़ेगा तुम्हारा तो। अरे नाम बताओ अपना।
2: याज्ञवल्क्य दास रामानुजम स्वामी युधिष्ठु।
1: क्या क्या? अच्छा चलो चलो चलो, अब की बार छोड़ रहा हूँ, फिर कभी सिग्नल नहीं तोड़ना।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

सो फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए अपडेट की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि 6:27:22 हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 मई को प्रदेश भर में 7,994 पदों के लिए जो परीक्षा लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित की थी उसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी गई है। ये आयोग की जो वेबसाइट है upssc.gov.in पर 28 मई तक उपलब्ध रहेगी। अभी ये उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, 28 मई तक इसकी उपलब्धता इस साइट पर रहेगी upssc.gov.in पर। परीक्षा जो है ये 21 मई को करवाई गई थी और अपनी सुविधा के अनुसार आप इस वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। फिलहाल इस परीक्षा में 3,66,712 अभ्यर्थी फिलहाल शामिल हुए थे। उत्तर कुंजी आप विजिट कर सकते हैं जिसके लिए आपको 28 मई तक का टाइम दिया गया है।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
4: हाँ मुझे आती है।
3: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी है कम है।
5: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
6: रंग दे तुम्हें गेरुआ।
5: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
7: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
5: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।

0: दीपिका के साथ और शहर की कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं हमारे पास और हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं विकास सिंह जी। तो आइए करते हैं उनसे बात और लेते हैं उनसे जानकारी कि क्या है ट्रैफिक अपडेट्स इस वक्त लखनऊ में, क्या हलचल है। हेलो। हाँ जी सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। जानना चाहेंगे लखनऊ में इस वक्त ट्रैफिक का हाल क्या है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं क्योंकि पीक आवर है, तो ऐसे में कुछ प्रमुख मार्गों पर हल्का प्रेशर रहता है। परंतु अभी हम हर जगह ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की मदद से यातायात को सामान्य बनाए हुए हैं। जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि आईपीएल मैच है और इस दौरान आईपीएल मैच में हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रेशर रहता है वो शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड रहता है
0: जी।
1: इस दौरान जो हमने ट्रैफिक व्यवस्था कर रखी है उसमें डायवर्जन हमारा अहमा मऊ चौराहा से डायवर्जन रहेगा और दूसरी तरफ हमारा डायवर्जन कमता तिराहा से रहता है। तो प्रमुख रूप से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पिक एंड ड्रॉप पॉइंट की व्यवस्था है वो कमता के पास में अवध बस अड्डे के आसपास तथा अगर आगे बढ़ेंगे तो सुशांत गोल सिटी थाने के पास में पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रहता है और हमारा 200 सैया मातृ अस्पताल है वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है। दूसरी तरफ हम अगर एसटीएल की बात करें तो एसटीएल से अंदर सुशांत गोल सिटी थाने के अंदर तथा एसटीएल से दाहिने तरफ अगर आप आए तो इकाना की तरफ जो है हमारा पार्किंग व्यवस्था के लिए हमने प्रावधान रखा हुआ है। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप मैच देखने आ रहे हैं तभी कोशिश करें कि आप शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड का प्रयोग करें, अन्यथा आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, ज्यादा उचित रहेगा कि इस मार्ग के प्रयोग करने से बचें। शाम के समय में हमारा ये जो ट्रैफिक रहता है ये लगभग जो है 9-10 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक 10 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक लोड रहेगा। तो इस दौरान जो है इस रोड को अवॉइड करें। भारी वाहन चालकों के लिए ये अनुरोध है कि कृपया आज हम नो एंट्री हमारा 11 बजे से ज्यादा बढ़ करके रहेगा, ऐसे में आप किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर किसी को आकस्मिकता की स्थिति है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 94-44-51-55 पर संपर्क कर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके बेहतर यातायात सुरक्षित यातायात के लिए प्रतिबद्ध है, तत्काल आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी
0: थैंक यू सो मच विकास जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।
0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि आगे बढ़ चलें और आपको खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जो है वो लगातार एंजॉय आप करते रहें, लेकिन अभी अपडेट्स रहेंगे आप सभी के लिए अभी भी बहुत सारी। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की 100.7। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

सो लखनऊ वासियों के लिए अगली जो अपडेट है वो आपको बता दें कि लखनऊ से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें इस वक्त निरस्त कर दी गई हैं। अगर आप इन ट्रेन्स में सफर करने की सोच रहे हैं या सोच रहे थे या फिर आप कहीं जाने वाले थे इन ट्रेन्स के जरिए, तो आपको बता दें कि ये ट्रेन फिलहाल निरस्त चल रही है। गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस 6 से 10 जुलाई तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा गोमती नगर गोरखपुर एक्सप्रेस 7 से 11 जुलाई तक निरस्त रहेगी। गोरखपुर लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस 8 से 9 जुलाई और 8 और 9 जुलाई को ये निरस्त रहेगी। इसके अलावा ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो 7 से 10 जुलाई तक निरस्त रहेगी। इतना ही नहीं, गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस 8 से 11 जुलाई तक निरस्त रहेगी। दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा विशेष गाड़ी 8 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं आएगी। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन बरौनी एक्सप्रेस 9 जुलाई को बुड़वल जरवल रोड और करनालगंज नहीं जाएगी। कुछ इस तरह के बदलाव किए गए हैं अभी फिलहाल IRCTC की तरफ से। अभी फिलहाल ट्रेनों में कुछ टाइम में चेंजेस भी किए गए हैं, रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, निरस्त भी किया गया है। तो संभावना यह है कि कहीं भी जाने से पहले आप अपनी संभावित जो भी ट्रेन है उसकी जो करंट लोकेशन है वो ज़रूर जान लें, उसकी जो स्थिति है वो ज़रूर जान लें कि ट्रेन कहीं निरस्त तो नहीं है, उसमें कुछ रूट डाइवर्ट तो नहीं किया गया है या फिर उसका जो टाइम है उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। तो इस तरह की जानकारी लेने के बाद ही आप ज़रूर प्रस्थान करें, अन्यथा आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल गाने अभी लगातार जारी हैं। श्यामे अवध में ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो हल्का के साथ।

वेल फ्रेंड्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है क्योंकि 6:54 हो गए हैं और आज के शामी अवैध को यहीं पर अलका करती है वाइंड अप। कुछ ही देर में आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर आ रही हूं। अपनी पसंद के ट्रैक्स को एंजॉय कीजिएगा, मिलाएगा 2238852 या 2238845 और अपने ट्रैक्स को एंजॉय कीजिएगा 100.7 FM रेनबो पर। चलते चलते बस यही कहूंगी कि इस बदलते मौसम में, इस जलती धूप में और इस परेशान करती गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काम सर्वोपरि होता है जरूर है, लेकिन सेहत जो है वो उससे भी बढ़कर होती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आप काम पर ध्यान दें, जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि घर के छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग, अगर उन्हें आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अनावश्यक घूमने से कुछ भी हाथ नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो कोशिश कीजिए कि जिनको जरूरत हो वही घर से चलती धूप में बाहर निकले। 12 से 4 का समय वेरी क्रिटिकल टाइम होता है हमारी इस वक्त इस तेज धूप में हमारी सेहत के लिए। तो कोशिश कीजिए अच्छी डाइट के साथ, बचाव के साथ इस बड़ी कठिन, मुश्किल और तेज धूप से भी बचा जा सकता है। फिलहाल खूबसूरत गाना आप सभी के लिए, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के साथ बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए भारत विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रोजगार मेले में शामिल हुई। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक की। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के निर्देश दिए। दो पैन कार्ड

मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल तक कर दिया है। साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दिया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से अभियान की शुरुआत की। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। लखनऊ में नया भव्य और आधुनिक तकनीक से लैस विधान भवन का निर्माण कराया जाएगा। ये नया कॉम्प्लेक्स गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट चयन का टेंडर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंधक निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में दिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्यवाही 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी तथा आलिम बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। 55,788 छात्र छात्राएं सफल घोषित किए गए। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये टॉप 10 समाचार समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

बिल्कुल, बताने से ही पता चलता है, छुपाने से कुछ भी पता नहीं चलता। तो जल्दी से बताइए अपने पसंद के गाने, आप क्या सुनना चाहते हैं आज हेलो एफएम में, और उसके लिए मिलाइए 2238-852 और 2238-845। तो इस वक्त हेलो एफएम में आरजे अलका आपके साथ है, पूरा एक घंटा रहूंगी और आपके पसंद के ट्रैक्स को प्ले करती रहूंगी। तो देर किस बात की है, गाने को एंजॉय करते जाइए और मिलाते जाइए नंबर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम हेलो एफएम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी वेलकम है आपका भाई। जानी पहचानी सी प्यारी सी आवाज किसकी है
3: जी? सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम जी। मेरा नाम है दीदी, आपको दीदी सबसे पहले प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
2: आपको भी सलाम प्यार भरा और
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो बताएं भाई फैज, मैंने तो पहचान लिया आपको।
3: जी जी जी दीदी, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
2: मैंने पता है आपका जो अंदाजे बयां है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब जो एक रिदम में आप बहुत रिदम में शुरुआत करते हैं और अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो काफी रिदम वाला होता है, बिल्कुल डिफरेंट। सो फैज बताएं आज क्या सुनना चाहते हैं
3: जी? दीदी आज सुनेंगे तो पहले ये बताइए दीदी, आपके लखनऊ का मौसम कैसा है?
2: बहुत ही बेकार है फैज, बस क्या ही हाल है मत पूछिए, बदहाल है पूरा लखनऊ इस वक्त। इनफैक्ट बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा
3: यहाँ मैं मान के चलो 3:30 बजे आंधी थोड़ी आई थी, उसके बाद मौसम थोड़ा खुशमा हो गया, तो उसके बाद फिर मतलब गर्मी पड़ने लगी।
2: वो तो बारिश का इंतजार तो सभी को है, थोड़ा बहुत पानी गिर जाना चाहिए ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ तो बताइए भाई, अब एक थोड़ा सा गाने से मूड चेंज किया जा सकता है।
3: दीदी गाने के बोल हम गुनगुनाना चाहते हैं, थोड़ा गाना थोड़ा गुनगुनाना चाहता चाहूंगा।
2: वो तो मुझे पता है आप हमेशा गुनगुनाते हैं, बताएं
3: जी।

0: फैज फैज फैज सुनिए मेरी बात, पहली चीज तो आपने गाने को बिल्कुल चेंज कर दिया, तू प्यार है किसी और का ना कि किसी और की, अब आपने डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली बोल ही दिया है, तो अब जल्दी से नाम बता दीजिए किसको किसको आप सुनवाना चाहते हैं।
1: सबसे पहले गाना सुनवाना, सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे अलका दीदी को,
0: थैंक यू,
1: और मोहम्मद साहबू भाई है, और मोहम्मद सद्दाम भाई है, मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, आतिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन अप्पा है, गुलाब साप्पी है, साहिब अंसारी है, साबिया अंसारी है, और यासिर हमीद भाई है, सुरभी सिंह है, बाबू अंसारी है, अकबर भाई है चौखंडी वाले, और वकील अहमद मंसूरी है, और मोहम्मद अमजद भाई है,
0: सभी को डेडिकेट। थैंक यू सो मच भाई फैज,
1: थैंक यू सो मच।

0: सलाम भाई है, मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, आतिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन अप्पा है, गुलाब साप्पी है, साहिब अंसारी है, साबी अंसारी है, और यासिर हमीद भाई है, सुरभी सिंह है, बाबू अंसारी है, अकबर भाई है चौखंडी वाले, और वकील अहमद मंसूरी है, और मोहम्मद अमजद भाई है।
1: सभी को डेडिकेट, थैंक यू सो मच भाई फैज।
0: थैंक यू सो मच।

0: सो माय डियर लिसनर्स, नेक्स्ट कॉलर को लेने का हो गया है टाइम, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, मेरी प्यारी सी क्यूट सी अलका दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं आप?
1: जी मैं आपकी वही जानी पहचानी दोस्त पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से।
0: ओके पिंकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है आपका भाई। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है पिंकी।
1: जी जी मैम, बहुत मैं आपको
0: हेलो
1: लेकिन बहुत जी मैम हेलो
0: हाँ बताएं क्या कह रही हैं
1: मैम। ये बोल रहे हैं कि कॉल लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल से कॉल लगती है मैम।
0: ये बात तो है, मतलब ये होता है ना, सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो लाइन आपको बिजी भी मिलती होगी, कभी कभी फोन नहीं भी उठता होगा।
1: मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो श्रोता शिकायत करते हैं कि मेरी कॉल नहीं लगती, आप कंटिन्यू प्रयास करिए, आपकी कॉल जरूर लगेगी। किसी शिकायत करने से मैम किसी की कॉल नहीं लग जाती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करते रहना चाहिए। तो पिंकी बताएं आज कौन सा गाना सुनेंगी?
1: मैम जिगर मूवी से चला दीजिए, प्यार के कागज से, दिल की कलम से, और मैम गाना डेडिकेट भी करना।
0: हाँ बिल्कुल, बताइए किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी मेरी अलका दीदी,
0: थैंक यू सो मच।
1: मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी रीता मौसी है जो रामपुर से सुन रही है, उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। और हमारी दोस्त है पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक अंसारी और ममता गौतम, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर और नीलम वर्मा है और वकील अहमद भाई है और मैम जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको।
0: पिंकी कोई रह तो नहीं गया
1: श्रोता सब लोग

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित्य नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना

0: जताई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
1: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, 7:31 और 14 सेकंड हो चुके हैं और हेलो एफएम में अलका है आपके साथ. आज एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, खूबसूरत गानों को आपकी पसंद के. तो फिलहाल हमने अभी एक कॉलर को लाइन पर लिया हुआ है, आइए जानते हैं इन्होंने कहां से हमें कॉल की है और इनकी आज क्या है पसंद. हेलो.
2: हाँ बहन जी, श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से बोल रहे हैं.
1: श्री प्रकाश जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका, कैसे हैं आप?
2: हम बहन जी इतनी गर्म पड़ रही है,
1: बिल्कुल
2: कूलर भी फेल है.
1: कूलर एसी सब फेल है, सभी बहुत परेशान हैं. बिल्कुल सही कहा आपने, बदहाल अवस्था हो गई है सभी की. तो बताएं बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे.
2: हम कटी पतंग का एक शाम मस्तानी मधोस किए जा. और सबसे पहले बहन जी आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं.
1: थैंक यू सो मच श्री प्रकाश जी.
2: ओंकार भाई हैं हमारे, संतोष भाई हैं, बाबू अंसारी, परवीन अंसारी, रिंकी पिंकी मेरी बहन, और हरिकेश भाई और अनिल भाई. थैंक यू बहन,
1: थैंक यू सो मच शिवका जी.

0: और मुझे इस डोर ने खींचा अपने कॉलर की तरफ और देखिए कॉलर से बात करने का मौका मैं तो बिल्कुल नहीं खोऊंगी. देखिए लाइन पर कौन है उनसे करते हैं बात. हेलो
1: हेलो गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग कौन बोल रहे हैं
1: जी. मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा बारह.
0: तालिब बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका. कैसे हैं तालिब
1: जी. बढ़िया है ठीक है.
0: तो बताइए
1: आज थोड़ा सा राहत मिली है जो आंधी वगैरह आई थी तो उसमें.
0: ये तो अभी बाराबंकी से हमारे फैज जी ने भी कॉल की थी. उन्होंने भी बताया कि शाम को आंधी वगैरह आई थी लेकिन वापस से गर्मी वैसी हो गई थी.
1: वापस फिर से उबाल मारने लगा.
0: मतलब हालत बहुत बुरी है. बिल्कुल
1: अच्छा,
0: सही.
1: सभी लोग कहते हैं कि हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए लेकिन हम कहते हैं हम इस मौसम को एंजॉय
0: कैसे एंजॉय करें. बिल्कुल नहीं सही बात है. तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण भी हम सभी है ना. ये तो हम नहीं नकार सकते इस बात को. इतनी गर्मी का बढ़ना लगातार हर साल रीजन भी तो हम सभी हैं इसका.
1: बिल्कुल लोग हैं.
0: बिल्कुल तो बताएं तालिब आज क्या सुनना चाहेंगे.
1: आज का एनवायरनमेंट जो हिसाब से बदल गया है आने वाले वक्त में बदलेगा तो उस हिसाब से बहुत दिक्कत होगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. लगातार जो बदलाव हो रहा
1: है जी बदलाव.
0: बताइए तालिब क्या सुनना चाहेंगे आज.
1: हम गाना सुनेंगे फिर हेरा फेरी मूवी का है. हिमेश रेशमिया भाई साहब का गीत है.
0: हाँ बिल्कुल. और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी. हमारे आसिफ अंसारी भाई हैं और साबिर अंसारी भाई हैं और अकबर भाई हैं जी. बस
0: ओके थैंक यू सो मच.
1: कॉल लग गई तो और भी अच्छे हो गए. अब
0: बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच तालिब कॉल करने के. थैंक यू.
1: बाय बाय.

0: 7:41 18 सेकेंड अगले कॉलर के साथ लेते हैं उन्हें लाइन पर। हेलो
1: हेलो मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, संजू कौन बोल रहा हूँ, ग्राम सिकोरी जिला हरदोई से, संडीला से।
0: संजू जी हरदोई से, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। संजू कैसे हैं आप?
1: जी मैम बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए मैम जी कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैम जी, आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेड प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो बात है बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच संजू जी, और बताइए आज गाना क्या सुनना चाहेंगे और किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मैम, गाना दिलवाले फिल्म का बताया था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
0: हाँ।
1: और डेडिकेट ये है कि हमारे अरमान चाचा चाची दोनों लोग सुन रहे रेडियो, हमारा बाहर रखा अंदर घर के।
0: अच्छा।
1: और मोनू जी हैं, सुनील भाई हैं, विनीत भाई हैं, ओंकार भाई हैं, संतोष भाई हैं, इन सभी लोगों को डेडिकेट है और आपको।
0: थैंक यू सो मच संजू जी, आपका ट्रैक रहा रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: सो वक्त बढ़ गया आगे, 7:46 हो चुके हैं और कॉलर हमारे साथ अगले जुड़ गए हैं। चलिए उनका नाम पता जानते हैं, उनकी पसंद जानते हैं। हेलो,
6: हेलो,
5: कौन बोल रहे हैं?
6: जी मैं मोहम्मद सद्दाम।
5: सद्दाम जी कहाँ से बोल रहे हैं?
6: जिला बारामती से बोल रहा हूँ।
5: ओके, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। कैसे हैं आप?
6: जी आपका प्रोग्राम सुनते बहुत अच्छा लगता है।
5: थैंक यू सो मच। और बताइए क्या कहना चाहेंगे?
6: टिकट करना चाहता हूँ।
5: हाँ जी
6: जी, समा परवीन है, गुलाब साफी है, साहिबा है, सादिया है, यासिर भाई, मोहम्मद आमीन है और मोहम्मद फैज भाई है, सब मोहम्मद कपिल भाई।
5: ओके, सभी को डेडिकेट किया है, लेकिन गाना बताएं कौन सा गाना?
6: गाने के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए।
5: ओके, हिना फिल्म का ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत
6: जी।
5: तो चलिए आपके साथ एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स 7:51 हो चुके हैं और चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, उनकी पसंद क्या है और कहाँ से उन्होंने हमें फोन मिलाया है। हेलो
1: हेलो दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। बहुत दिनों के बाद कॉल मिलाया आपका।
0: हाँ जी बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है जी। भगवान जी बताएं कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, गर्मी काफी पड़ रही है, हमारे इधर 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है दीदी।

0: ये तो बात सही है, ऑलमोस्ट सभी जगह टेम्परेचर ऐसा ही जा रहा है, कहीं 42, कहीं 43, कहीं 45 और बहुत जगह तो इससे भी ज्यादा। और बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है कुली नंबर वन और गाने के बोल है जेठ के दोपहर में पांव जले हैं और आकाशवाणी रेनबो के आरजे हैं। दीदी हमारी तालनी दीदी है, चंद्रकला दीदी है, मोना दीदी है, अलका दीदी है, प्रीति दीदी है, तरन्नुम दीदी है और शिल्पी दीदी है। आप सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को ऑलमोस्ट वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है. 7:55 हो चुके हैं और अनवारो ला चुके हैं. प्रोग्राम आगे आप इंजॉय करेंगे इनके साथ अगले कुछ घंटे 100.7 FM रेनबो पर. लेकिन अभी हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं वो रह गए हैं, इनसे चलिए करते हैं बात. हेलो.
1: हेलो, नमस्ते मैम.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं? ममता जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका. बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी? सिर्फ तो मूवी का ट्रैक. ओके, तो किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको.
0: थैंक यू.
1: संदीला से हैं गुलाब्ता देवी जी, पिंकी मिट्टी है, सीमा रावत से है मतलब से,
0: सभी लोगों को. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए ममता, थैंक यू. तो इस ट्रैक के साथ एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो. मैं जा रही हूँ, वापस मुलाकात होगी आपसे सेम प्लेटफॉर्म 100.7 FM रेनबो पर. स्टे ट्यून्ड.

नमस्कार, 8 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों का मौके पर जाकर त्वरित निस्तारण किया जाए तथा ग्राम सभा और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, साफ सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित की जाए। बस्ती की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कहा कि गौ संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौ संरक्षण के लिए गठित अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक की। बैठक में जनपद के विभिन्न गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बीच मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के ग्राम भैंसा स्थित अस्थायी गौशाला में दूषित भोजन खाने से 12 गौवंश की मौत हो गई, जबकि करीब 7 गौवंश की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वृंदावन और नंदगांव के पशु चिकित्सालयों में रेफर कराया गया है। वहीं गौशाला में शेष बचे 128 गौवंश

राल गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार लिखे जाने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

खोल कर रखे थे आपने दरवाजों के पट, और हल्की सी हवा चली और एक आवाज जानी पहचानी आपसे मुखातिब है। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। गर्म हवा की साजिशों को बेनकाब करती ठंडी फुहार आबशार, नफरत की तेज आंधियों के बीच टिमटिमाता पुरनूर प्यार आबशार। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में मैं हूं आपके साथ आपका हम सफर अनवारुल हसन। कबूल कीजिए हमारा आदाब।

जिंदगी की तरह भी, जिंदगी के साथ भी, हमेशा हमेशा के लिए भी। लेकिन कुछ खास लोग भी होते हैं, मोहब्बत सिर्फ वो नहीं जो किसी छोटी सी मुद्दत में ख़त्म हो जाए। ये तो एक ऐसी चिंगारी है और इस शिद्दत से लगती है कि शायद इसकी जो गर्माहट है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और इस मोहब्बत को बनाए रखना, बरकरार रखना भी कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी भी है कि इस गर्मजोशी को कायम रहने दें, हमेशा कायम रखें। कभी कभी कुछ तलखियां आ जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ आसानी से ख़त्म भी होती हैं, क्योंकि

वक्त एक ऐसा मरहम है जो धीरे धीरे चीजों को ठीक कर देता है। कहते भी हैं कि जब कोई साथ छोड़ देता है, दिल समंदर निचोड़ देता है, आ जाती है आसमानों तक जब कोई दिल को तोड़ देता है। तो दिल क्यों

आसानी से खत्म भी होती हैं, क्योंकि वक्त एक ऐसा मरहम है जो धीरे धीरे चीजों को ठीक कर देता है। कहते भी हैं कि जब कोई साथ छोड़ देता है, दिल समंदर निचोड़ देता है, आ जाती है आसमानों तक जब कोई दिल को तोड़ देता है। तो दिल क्यों टूटे अगर ये मोहब्बत बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ इस जिंदगी में नहीं, अगर आगे भी कभी रहे, जिस तरह से भी रहे, तो ये मोहब्बत भी बरकरार रहे, बनी रहे, कायम रहे हमेशा हमेशा।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

हम तो यही दुआ करेंगे कि ये गुरबत हमेशा बनी रहे, हमेशा आप हमारे साथ रहें ऐसे ही। ये साथ कहीं ना कहीं से तय होकर आता है, कौन कितना वक्त किसके साथ गुजारेगा शायद ये भी, और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर इसीलिए पहले से महफूज रहती हैं, कुछ यादें भी ऐसी जो हमेशा साथ चलती हैं, कुछ रिश्ते भी ऐसे जिन्हें अगर हम चाहें तो एक लंबे दौर तक जी सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी है, चाहे कितने भी दिन हो हमारे पास, कम वक्त हो, लेकिन उसमें एक साथ हर लम्हे का बना रहे, वक्त चाहे कितना बदल जाए, ये यादें ये रिश्ते ऐसे ही रहे। मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि ये मुस्कान ऐसे ही कायम रखो और

कभी अगर लगे भी कि अलग हैं, तो भी उन यादों को आहिस्ता से हम एक यादों के तकिए की तरह से इस्तेमाल करें, जिसमें जब हम अपनी ख्वाबगाह में हो, आराम फरमा रहे हो, नींद में हो, तो भी जो खूबसूरत ख्वाब हो वो हमारा साथ ना छोड़ें। तो जब भी खुशी में है तो भी याद करें, तो भी वक्त निकालें दूसरे के लिए, और कभी अगर अकेलापन है तो उस मुस्कुराहट को यूं ही कायम रखें जैसे हम हमेशा साथ हों, और ये मोहब्बत यूं ही बनी रहे, ये साथ यूं ही कायम रहे, यही तो दुआ कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही रिश्ता होता है जब ये भी उम्मीद रखी जाती है कि अगर अकेले में तुम्हारी यादें भी मेरे पास मेरे सामने आकर बैठ जाएं तो दिल को करारा

और ये बेकरारी आज की नहीं है, बहुत बहुत लंबे वक्त से। अगर आपने उन किताबों को फिर से उठा लिया है जो एक लंबे अरसे से आपने कहीं पर रख दी थी और उनमें कुछ खास मिल गया आज जब अकेले में आपने उन्हें पलटा, तो किताबों में महफूज कुछ सूखे हुए से फूल सामने आ गए। लेकिन उन फूलों में आज भी वक्त की खुशबू है जो वैसे ही बाकी है। ये सूखे हुए फूल नहीं है, पीले पन्ने नहीं है, बल्कि यादों के वो नर्म से निशान है जो दिल को आज भी छू जाते हैं। कभी इन किताबों में मोहब्बत के गुलाब रखे गए थे, कभी किसी की याद में चुपके से कुछ लफ्ज सजाए गए थे। वो फूल अब भले ही सूख चुके हैं, लेकिन उनकी महक अब भी रूह में वैसे ही जिंदा है। हर किताब एक दास्तान है, हर फूल एक एहसास है, और हर पन्ना जैसे किसी बीते हुए लम्हे की आवाज बन जाता है वक्त के साथ। कुछ भूली भूली सी चीजें, मगर किताबों में महफूज ये फूल आज भी बताते हैं कि कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, हमेशा साथ चलते हैं मोहब्बत की तरह। 8:35:35 आबशार सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

और इतना और जोड़ूंगा मैं इसमें कि ये हक है तुम्हें मुझको जो चाहे सजा देना, पर मुझको मेरा पहले अपराध बता देना। और कुछ यादों को ऐसे ही महफूज रहने दीजिए, कोई कहता है हटा दीजिए, मत हटाइए उन्हें। इन यादों को आईना बना लीजिए वक्त के साथ, और ये हम पर बिल्कुल कि हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, भले ही वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हों, वो चीज़ें ऐसी हों जो तकलीफ देती हों, लेकिन उसको हम एक बेहतर पॉजिटिव वे में अगर ले जाएंगे, सोचेंगे, तो उन चीज़ों से हम काफ़ी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। और वैसे ही हमें आपको करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखें और वक्त के साथ आगे बढ़ते चलें, यादों को अपनी धरोहर समझकर, संवार कर, सजा के हमेशा अपने साथ रखिए। इजाजत लेने का वक्त आ रहा है प्रोग्राम आबशार से। 8:40 हो चुके हैं और 8:45 पर हम आपको समाचार प्रभात के लिए, माफ कीजिएगा, समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे। 9 लौटेंगे हम, और तब रेनबो कैफे में जो हलचल मचेगी उसका अंदाजा बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप रहते हैं अक्सर मेरे साथ। तो आज आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ काफी लंबे वक्त तक रहने वाला है। 12 तक हम रजनीकंदा की खुशबू में भी महकाएंगे, 10 से लेकर 12 तक। तो फिलहाल तो इजाजत दीजिए, बस एक रोशनी कायम रखिए उम्मीद की, तो फिर लौटेंगे वापस 9। इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को, शब्बा खैर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक

0: मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्व

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीराम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश

में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी दिल तो आपका भी फिदा हो गया है रेनबो पर और इसीलिए आप लगातार रेनबो सुनते रहते हो और आज हमारा भी फिदा हो गया। देखिए हम भी आ गए काली साड़ी वाली पहन के नहीं मतलब लेके किसी को देना है इसलिए 9:03 और 38 सेकंड हो चुके हैं और आपके बहुत सारे मेल भी आ चुके हैं हमारे पास। अभी से ही शुरुआत हो गई है रेनबो कैफे का। आज मंच सजा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर कैफे सजा हुआ है। मेरे पास बोतल वोतलें रखी हुई हैं पानी यानी रखा हुआ है पी के बैठा हुआ हूँ मैं मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ हैं मेल जो आप भेजते हैं उनके जरिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि एकदम से प्रकट हो रहे हैं 9:03 पर तो 4 मेल अचानक से हमारे पास आए। भाई वाह क्या टाइमिंग है 9:02 दो मेल अचानक से आए अचानक से पहला मेल किसने किया था मैं यहाँ से देखना शुरू कर रहा हूँ। इतने मेल हैं इसमें जो इस प्रोग्राम में हमारा पहला मेल आया वो 8:45 पर ही आपने हमें भेज दिया कोमल तिवारी जी, क्योंकि उस वक्त आपने बस रेडियो ट्यून कर लिया था और लगातार आप सुन भी रही थी और आपको गजलों वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था तो आपने कहा कि हम इसको भी लिख देते हैं उसके बाद इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बिल्कुल शामिल रहिए इसमें और आप जो भी कहना चाहते हैं कुछ खूबसूरत सी बातें वो हम पहुंचाते रहेंगे। और हमेशा की तरह से मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर दिन भर कुछ ऐसा खास गुजरा है आपके साथ के आपको लगता है कि जैसे ही मैं किसी के साथ इसको शेयर करूंगा या करूंगी तो उसके बाछे खिल जाएंगी कहते हैं ना, तो बस ऐसे ही। तो आप ऐसी ही कुछ बातें हों तो आप हमें ज़रूर भेजिए ज़रूर बताइए तो उसको और भी हम ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आपको प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है आपके आने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है और हम सब लोग एकत्र होकर कार्यक्रम सुन रहे हैं और अच्छा प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद इंद्रपाल मिश्रा जी ने हमें ये मेल ग्राम अमृता सीतापुर से किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई इसके लिए कि आप लोग सारे लोग मिलके सुन रहे हैं। सुल्तान रजा साहब आपने भी अपनी बात कह दी है, लिखा है कि अनवारुल सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से और लिखते हैं कि जब बारिश होती है तब लोग छतरी तान लेते हैं और तान और प्यार में मुझको लोग अच्छा अजी ये तो बात समझ में आई नहीं आपके यहाँ बारिश हो गई है क्या, यानी आपने ये वाली बात आज क्यों उठाई है ये कि अचानक से प्यार से मुझको लोग कहते हैं सुल्तान इकबाल रजा, ज़ीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, सुल्तान रजा, मम्मी पापा, छोटा सा अमान, तो वो सारे लोग मिलके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अच्छा नीचे कुछ और लिखा है आपने है ना, देखिए मैं पहले पढ़ लूँ। लिखे हैं कि हाय क्या शायरी है ना, और उदासी में चेहरे की शान चली जाती है, टूटे हुए दिलों की पहचान चली जाती है, हम तेरी ज़िंदगी से ऐसे चले जाएंगे जैसे किसी हादसे में जान चली जाती है। भाई ऐसा ना कहिए है ना, आप हमेशा साथ रहिए, उनको धमकाते भी रहिए, प्यार भी करते रहिए, आंखें दिखाते रहिए, लेकिन मोहब्बत को कायम रखिए। मोहब्बत ऐसे ही छोटी छोटी से जो झगड़े होते हैं ना जो प्यार भरे जो होते हैं उससे कायम रहती है, तो बस उसको कायम रखिए और बार बार धमकी मत दीजिए। ये जो बार बार धमकी देने से होता ही है ना कि फिर अगर आप बार बार देंगे ना तो थोड़ा सा असर होगा शुरू में, लेकिन फिर उनको भी पता चल जाएगा अरे ये करे रहेगा कुछ नहीं ऐसे ही कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। पाप का टाइम भी नहीं है। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी। अब कहाँ पॉज लगाना है कहाँ पे नाम पूरा हो गया ये समझ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने एकदम से पूरा रनिंग

लेटर लिख दिया काका पवन कुमार आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो और भी दिल खुश हो जाता है। भाई वाह क्या बात है और हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। भाई रामराज जी आपको भी नमस्कार और सारे लोग जो गांव पहाड़ीपुर में हमें सुन रहे हैं उन सबको मेरा भी राम राम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हैं और इस प्रोग्राम को आप लगातार सुन रहे हैं। रणधीर गुप्ता जी का भी मेल प्रकट हो चुका है। शुभ संध्या अनवारुल हसन जी सप्रेम नमस्कार। गजलों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा आबशार और रजनीकंदा के गाने भी पसंद आ रहे हैं। इन्होंने अभी से लिख दिया देखिए अभी हमने बजाए नहीं है। मुझे समझ में ये नहीं आ पाता है कि प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाता आप सुन कैसे लेते हैं। रजनीकंदा भी नहीं चल रहा है 10 बजे शुरू होगा है ना तो तब बताइएगा। हालांकि तब उसको हम लोग ऑन एयर नहीं कर पाएंगे और खुद ही होता है कि उस वक्त हम मेल देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि जब मेल वाला प्रोग्राम होता है ना तब हम लोग मेल देख रहे होते हैं। फ़ोन हमारा लगातार बिलिंग करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी कुछ लोग इसमें शिकायत करते हैं कि देखिए अभी एक दिन हुआ यही था कि अभी इससे पहले ही मैं बता दूं पिछले हफ्ते में कि कुछ लोग बहुत बाद में हमें मेल करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं मैं भी तो हमेशा कोशिश करता हूं कि सब लोगों का जो भी आपने जो मैटर है आपके मेल में मैं ज़रूर पढ़ दूं और अगर लास्ट में मैं अगर सारे मेल ना भी पढ़ पाए तो सबके नाम ज़रूर शामिल हो जाए। एक साहब का मेल बहुत देर में आया 9 बज चुके थे तब उनका मेल आया उन्होंने बहुत बाद में किया होगा। देखिए अगर आप आज अब हमारा प्रोग्राम ये 9 बजे तक चलने वाला है 9 बजे तक नहीं 10 बजे तक सॉरी 9 बजे तो हमने शुरू किया है इसको तो 10 बजे तक आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे और अगर आपका मेल बहुत देर में आ रहा है जब 10 बजने वाला है और 4 मिनट बचे तो जाहिर है हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि तब तो हमारा गाना बज चुका होगा हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर चुके होंगे। तो एक हमारे भाई साहब ने तो मुझे ये भी लिखा कि आप बहुत आपका ईगो बड़ा हाई है और देखिए आप हमने हमारा मेल नहीं पढ़ा तो हमने उसको बाद में पढ़ लिया तो ईगो तो था ही नहीं वरना हम उसको बैठा देते कहीं पर। यहाँ कुर्सियाँ भी कई सारी रखी हुई है तो रणवीर जी आपने और भी कई लोगों के नाम लिखे उनको भी ले लूँ वरना फिर आपको लगेगा क्या देखिए आपने नाम ही तो रणधीर गुप्ता बबीता रानी गुप्ता सत्यम गुप्ता सुंदरम गुप्ता और ये एक बड़ा प्यारा सा नाम भी है ओखला संगम विहार दिल्ली में आप हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। एक मेल और पढ़ देता हूँ उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहें लिखने वाले विजयपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरे से और लिख रहे हैं कि अनवारुल हसन भाई जी कैसे हैं। एक शिकायत है कि आप काफ़ी दिनों के बाद आते हैं प्लीज़ ऐसा ना किया करें। हमने आपको पहले ही बताया कि मेरा तो मन यही करता है कि मैं यहीं रह जाऊं अंदर से कुंडी लगा लूं किसी दूसरे को भी ना आने दूं यहीं से बोलता रहूं तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जल्दी जल्दी आया कीजिए आपका बहुत इंतज़ार रहता है। इंतज़ार कीजिए मुझे भी मेरा भी जो है वो अंदर से पेट गड़बड़ रहता है जब आप याद कर रहे होते हैं ना तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है मुझे लगता है कोई याद कर रहा है लोगों को हिचकियाँ आती मेरा पेट खराब हो जाता है। आपको प्रोग्राम लगातार अच्छे लग रहे हैं और आपने कुछ नीचे लिखा है हमारे पड़ोस में चोखा बाटी बनी हुई है महाशय जी खा चुके थे पत्नी रह गई थी पानी लेने गई हुई थी कि अचानक से ओहो वो देख नहीं पाई और गली में कोई वो जो भौं भौं करता ना वो आ गया और वो सब खा गया अब पेट उनका खाली है अब वो क्या खाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। ये घटना इनके आसपास कहीं घट गई है तो भाई देखिए रहकर ये दरवाज़ा बंद कर रखिए हाँ अगर खिड़कियाँ हैं उनको खुला रखिए वहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। विजयपाल यादव जी के साथ बबलू यादव ग्राम वापोस्त लहुआ जिला खीरी से ये मेल किया है और हम जल्दी से एक गाना बजा देते हैं वरना एक मेल ये भी आ जाएगा तो कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे गाना आहा।

चलिए, जो छैला है वो तो उसने ले लिया है थैला और चला गया है बाजार कुछ सामान वामान लेने। तो फिलहाल तब तक आप रेनबो तो लगातार सुनते ही रहते हैं, तो सुनते रहिए। और इस वक्त रेनबो कैफे अब तक पहुंच रहा है, मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं। मैं कह रहा था ना कि जब आप याद करते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ना आए तो पेट ख़राब हो जाता है। तो अभी अभी एक साहब ने मुझे तुरंत इलाज बता दिया आप ही में से। देखिए, लालपुर से, सीतापुर में जो लालपुर है वहाँ से अयोध्या प्रसाद जी ने मुझे तुरंत इलाज बताया कि अगर आपको लोग याद करें और आपका पेट गड़बड़ हो जाए, तुरंत तरबूज लीजिए और उसमें काला नमक लगा के खा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। और ये पीछे से, हाँ, ये बजना चाहिए, मुझे इससे लगता है खालीपन, लगता है कि अकेले हैं। और ये बजता रहता ना पीछे से म्यूजिक ऐसे, तो लगता है कि अकेले नहीं है, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो बजा रहे हैं, तो डर नहीं लगता अकेले में। आपके और भी बहुत सारे मेल हम तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मिस्टर जय की आईडी से मेल किसने किया है? जयराम जी ने किया है। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने धन्यवाद हमें कहा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और कहा है कि किसी भी प्यारे से गीत में हमारा मेल ज़रूर शामिल कर लेना। तो चलिए, हमने तो शामिल कर लिया आपका मेल। और आपका मैं देख रहा था कि मेल गया कहाँ। चलिए, हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं जब तक ये। अब देखिए, बहुत से मेल हम तक और भी पहुंच चुके हैं। गुलफ़शा सिद्दीकी, आपका ही मेल आपका आ चुका है हमारे पास। सलाम अलैकुम अनवारुल भाई, मैं गुलफ़शा सिद्दीकी संडीला से। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको चलिए आबशार भी बहुत अच्छा लगा इसके लिए भी। और इस वक्त मैं अपने घर की छत पर हूँ, धीमे धीमे हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। साहिब अंसारी, सादिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, हम सब लोग सुन रहे हैं। चलिए, क्या बात है, ये लगता है इसी हवा में जो हल्की हल्की सी चल रही है ना, इसी से हम आप तक पहुंच रहे हैं, इन्हीं हवाओं के ज़रिए, फ़िज़ाओं के ज़रिए। और ऐसे ही ये महक कायम रहेगी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। बाबू अंसारी, आपने भी देवकली अहमदपुर बाज़ार से हमें ये मेल कर दिया है, क्या बात है। एक फ़ोटो भेजिए, वाली फ़ोटो नहीं होती है जो जिन्हें जो है बढ़िया, जिसमें आप देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक डांसर उन्होंने हमको भेज दिया है और हम उसको देख रहे हैं। भाई भाई वाह, क्या पैर चलाए हैं इन्होंने। चलिए, अच्छा लगा। और कह

कि कैसे हैं आप। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ नाम जरूर शामिल कर लीजिएगा। अरे आपने लिखे हैं तो क्यों नहीं शामिल करेंगे, नसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता, इनके भी नाम आपने कहा है शामिल करने के लिए, तो हमने चलिए शामिल कर लिए। और विवेक कश्यप जी, आपका भी मेल अभी अभी हम तक पहुंचा। गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज़ आपको बहुत अच्छा, मेरी आवाज़ इनको बहुत अच्छी लग रही है। मेरे दोस्त हैं ऋषि, जितेंद्र, रोहित और मेरी बहन है शिवांगी कल्पना। विवेक कश्यप और सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर फुलवा चिटैन। अच्छा, कुछ गाने वाने का आपने लिख दिया, भाई गाने की फरमाइश देखिए ना करिए, है ना, क्योंकि फरमाइश प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर किसी फरमाइश प्रोग्राम में आप करेंगे मेल तो आपको आपका गाना ज़रूर सुनाया जाता है और आपको सुनाया भी जाएगा। और 8 से 9 के बीच में आप सुन भी रहे थे मैं जब यहाँ पर आया था, तो चलिए हो सकता है वो जो गाना आपने कहा अगर अपने आप बच जाए, क्या बात अपने आप बच जाए, हो सकता है हमने यू ही लगा रखा हो पहले से, तो आप तक पहुँच जाएगा। गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा। अच्छा, सब लोग ये लाइनें लिख रहे हैं, वो हमको भी अच्छा लग रहा है ये सुन सुन के। आपने भी एक फरमाइश कर दी है, ग्राम चकुमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से, तो हो सकता है कि आपकी फरमाइश पूरी हो जाए, क्योंकि आपने गाना नहीं लिखा बल्कि आपने एक लोक भाषा का नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसका गाना बजा दें। वकील अहमद साहब का मेल आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, इस वक्त रेनबो कैफे सुन रहे हैं आप, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खा रहे हैं आप या कर खा रहे हैं, ले हमको भी इन्होंने बुलाया है खाना खाने के लिए, अब बताइए हम कैसे खा लें, अगर हमने खाना खाया मुँह में कुछ रखा तो बोलेंगे कैसे, है ना। तो चलिए हमारी तरफ से आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिएगा, है ना, या बचा के रखिएगा, कभी उधर से गुजरे तो हम ले लेंगे। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी जिला, क्या बात है, क्या मतलब इसमें तुकबंदी कितनी अच्छी है, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी, वही वाह, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, अंसारी शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी और अहमद नवाब, इतने लोगों के भी आपने नाम लिख दिए हैं, यानी इनको अंदाजा है कि ये सारे लोग मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। टाइगर खान, माय नेम इज सबरीन नरगिस, और साथ में शादाब तैयब भी है। गुड इवनिंग सर, सदीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई, हरदोई से मैंने हरदोई पर दिया क्योंकि इंग्लिश में लिखा है HARDOI, तो हरदोई हो गया, हरदोई से मेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मेल शामिल कर ले प्लीज़, नरगिस ने ये मेल हमको किया है और इतना खूबसूरत नाम है आपका, भाई वाह क्या नाम है, और मेल हमने शामिल कर दिया है। रोशनी रावत जी, आपका भी मेल पढ़ देते हैं और फिर हमें गाना बजा देते हैं। नमस्ते अनवारू सर जी, आप कैसे हैं, आपने भी जो प्रोग्राम आप सुन रहे थे 8 बजे से उसकी तारीफ़ की है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से मुझे इंतज़ार था आपका। अच्छा, सुबह तो हमको भी नहीं पता था कि हमको आना है, सच बता रहे हैं। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम बापुर बहमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। नीलू शर्मा दीदी और बबीता राव को भी राधे राधे बोल दीजिए, तो राधे राधे भैया आपको इन्होंने बोला है, बबीता जी और नीलू शर्मा जी, तो आप बस खुश रहिए ऐसे ही और हमारे प्रोग्राम ऐसे ही सुनते रहिए। गाना आ गया।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी, तो बस कभी कभी ऐसे सवाल पूछे आते हैं कि कहाँ गए थे इन्होंने, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए इस गाने अगर मैं अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो। 9:28 हो चुके हैं और रेनबो कैफे आप तक पहुंच रहा है। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ और आपके बहुत सारे मेल हैं जो हम पढ़ रहे हैं और आप तक पहुँचाते जा रहे हैं जो आपने लिखा है। बीच में एक मेल किसी का रह गया, देखिए फिर मैं इसलिए स्टार्ट करता चलता हूँ ताकि कोई मेल रह ना जाए। और विनीत कुमार जी का ईमेल है, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपने हमें मेल किया है। गुड इवनिंग आपने लिखा है, आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपका फ़ोन भी लग चुका है विविध भारती पर, यानी आज आपका दिन बड़ा अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इनके दोस्त हैं ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी और सुरभि, और सीतापुर से ही सीमा रावत जी, आप उनका भी नाम साथ में लिखा हुआ है और एक फरमाइश भी आपने इसमें भेज दी है। फरमाइशी प्रोग्राम ये है नहीं, इसलिए हमने उसको चुप्पे से पढ़ लिया है। शिवम शुक्ला जी आपका भी मेल है, नमस्कार सर, हम ग्राम कटार गिलौला श्यावस्ती से मेल कर रहे हैं। हम लोग पूरा दिन रेडियो सुनते हैं, सुबह से शाम तक बजता रहता है सर आपका कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मम्मी डैडी और ममता दीदी, साधना दीदी, अन्नू दीदी और छोटी बहन जूही के साथ आपके प्रोग्राम का, आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। चलिए सब परिवार सुनते हैं, अब यही हमारी खासियत भी है, हमारे रेनबो की खासियत है, हमारे आकाशवाणी परिवार की खासियत है कि हम जो कुछ भी करते हैं कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार के लिए करें। और चलिए गलती सुधार दी है किसी ने, मेल करके बता दिया है। अगला मेल एमन नवाब संडीला से भेज रही हैं हमें, लिख रहे हैं कि आदाब दर्दमंद दोस्त, अभी दर्दमंद नहीं, थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, दर्द भी वक्त के साथ आता है धीरे धीरे, जो चोटें लगती हैं ना वो जब पक जाती हैं तब थोड़ा सा असर करती हैं। और जो दर्द आता है ना वो वक्त के साथ भी आता है और अनुभव के साथ भी आता है, और तब भी आता है, और कभी कभी उस दर्द को छुपाने के लिए कभी कभी ऐसा ही हंसना पड़ता है जैसे मैं इस वक्त हंस रहा हूँ। लिखा है इन्होंने कि अनवारुल हसन सर जी, गर्मी में हाल चाल कैसे हैं? हाँ ये अच्छा सवाल पूछ लिया, गर्मी में हमारे चाल ऐसे हैं, हमें गर्मी जब बहुत लगती है तो हम जबान निकालते हैं बाहर ऐसे और ऐसे हाँफने लगते हैं। इससे गर्मी कम हो जाती है, कभी करके देखिएगा जब लाइट वाइट ना आए आपके आसपास तो ऐसे करके हाँफ के देखिएगा। लिखा कि जब आप आते हैं बहुत मज़ा आता है, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हूँ उसमें मेरी हंसी की आवाज़ भी आ जाती है। हंसा ना करिए, देखिए जब हमारी रिकॉर्डिंग करिए तो बहुत साफ़ सुथरी करिएगा, हाँ नहीं तो ख़राब कर देती हैं उसको। लिखा कि आपने बोला कुछ मज़ेदार बात बताओ, तो बात आज की नहीं 2-3 दिन पहले की है। अरे कोई बात नहीं है, बातें चाहे 4 दिन क्या 4 साल पुरानी हो, जब बताइए तो ऐसा लगे कि बिल्कुल लगे कि अभी भी कुछ हुआ था और आपने बताया, यही तो खासियत है। लिखती है कि दादू जी ने 1,000 रुपये दिए थे, दादू से बोला दादू जी मेरे हाथ में अब भी खुजली हो रही, तो दादू जी ने 1,000 रुपये और दे दिए, क्या सर एक बार और मुझे हाथ में खुजली बोलना चाहिए? खुजली सर में नहीं होगी फिर, आप समझ लीजिए दादाजी के पास वो पुराने जो लोग होते थे ना, वो दादाजी आपके टीचर रहे हैं मुझे पता है, तो उनके पास एक वो होगा, एक बेंत होता था है ना, या नीम की छड़ी, तो अगर फिर वो अगर दादू जी ने उठा ली तो फिर हम कुछ नहीं बताने लायक रहेंगे यहाँ से, ठीक है? तो अब रजनीगंधा सुनिएगा, आपने लिखा कि रजनीगंधा मैं आपके साथ रहूँगी, तो चलिए अब रजनीगंधा सुनिएगा, उसमें साथ रहिएगा, दादू जी को परेशान ना करिएगा दादा, नहीं तो। रंगनाथ अवस्थी जी आपका भी मेल आ गया है, गुड इवनिंग, आपने लिखा है प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग फॉर्म, अच्छा वो तो नहीं हो सकता, देखिए जो आपने लिख दिया इस वाले है ना।

0: क्योंकि इसमें वाले फिल्मी वाले वाले बचते नहीं है, है ना। तो भाई माफी चाहते हैं आपसे, यही कह सकते हैं, यमुना अवस्थी, ईशान अवस्थी, हुसैनगंज, लखनऊ से आपने लिखा है, यानी हम आपकी बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं, हमने इसीलिए माफी मांग ली क्योंकि हमको बाहर भी निकलना है, समझ रहे हैं आप। वैभव प्रकाश सिंह, आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास। आज की ये पंक्तियां अपने फेवरेट आरजे के लिए, हाँ ये अच्छा किया आपने। वैभव जी ने नागपुर से, महाराष्ट्र से लिखा है, क्या खुशनसीबी है हमारी जो आपका दीदार हुआ, यानी रेडियो पर आपने दीदार कर लिया, चेहरा बना लिया, आवाज़ सुन के मैं समझ रहा हूँ, हम उसको उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ा है हमने बचपन में, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ पढ़ के उसको कैसे बड़ा किया जाए, तो वही अब कर लेते हैं यहाँ बैठ के। तो क्या खुशनसीबी है हमारी जो आपका दीदार हुआ, जाने कितनी बार और कितना बेकरार हुआ, मिले तो इस कदर कि ज़र्रा ज़र्रा मेहताब हुआ, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कभी देर तो कभी सवेर, मेरा दिल दोस्तों के लिए यूं ही धड़कता रहेगा। अच्छी बात है भाई, इस मोहब्बत को आप यूं ही कायम रखिए और बताते रहिए हम लोगों को, हम उसको शामिल करते रहेंगे। एक मेल और आ चुका है जावेद अख्तर साहब आपका, और कौन वाला पढ़ना है, आपका मेल कुछ अलग तरीके से आता है, आपके इसकी कुछ सेटिंग अलग तरीके की है, आपके सारे मेल हमें एक साथ दिखाई पड़ते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं उसको खोलते हैं तो सारे मेल हमें, 8 दिन पहले का मेल सबसे ऊपर मेरे इस वक्त है, कभी कभी हम लोग गलती से ऐसे ही पढ़ जाते हैं, फिर उसको सबसे पहले 8 दिन वाला है, फिर 11 घंटे पहले आपने लिखा है वो है, फिर आपने 7 घंटे पहले लिखा है वो मेल है, 7 घंटे पहले आपके 3 मेल हैं, 4 हैं, 5 हैं, और 1 7 मिनट पहले है, यानी ये वाला हमको पढ़ना, ये आपने अभी लिखा है, बिल्कुल वाह क्या वाह, सही ढूंढा हमने, हम भी कभी कभी बड़े होशियारी काम करते हैं। लिखा है, गुड इवनिंग अनवारुल हसन भाई, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आपने ऐसा लिखा है कि आपकी रसभरी आवाज़ में एंजॉय करें, गानों का जो इंतखाब आपने किया है वो बेमिसाल है, हम तो आपको शिद्दत से याद किया करते हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया है, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन, ये सारे लोग एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लिखा। मैं वक्त भी देखता चलूँ, 9:35 हो चुके हैं, मेल बहुत सारे आ रहे हैं, गाने भी बहुत सारे बचे हैं अभी बजाने के लिए, तो बजा दें एक पहले, है ना, उसके बाद ये वाला बजाते हैं, देखिए कैसा लगता है आपको बताइएगा।
1: की होया है?
2: कैर लगता है।
1: पानी?
2: जहर लगता है।
1: की होया है?
2: कैर लगता है।
1: पानी?
2: जहर लगता है।
1: या किसे दी कबर ते असी
2: रख दिता पैर लगता है।

हम भी पानी पीने जा रहे थे लेकिन इस गाने में जैसे ही सुनाई पड़ा कि पानी जहर लगता तो फिर हमने रख दिया। आप पी लीजिएगा, है ना, पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। मौसम जो है इसमें जब बाहर निकलना है तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए, और अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश तो करिए कम से कम कम किया जाए, तब किया जाए जब आपको लगे कि हाँ बाहर काफ़ी देर तक नहीं निकलना है तो आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और पानी के बारे में ये ज़रूर कहना है, और कल भी मैंने थोड़ा सा पानी पर बात यहाँ नहीं की थी, कहीं और मैं कर रहा था, तो मुझे ये ख्याल आया कि अक्सर हम लोग जैसे मिलने जाते हैं किसी से तो ज़्यादातर पानी पूरे पूरे गिलास में भर के आ जाता है, और बहुत सारे लोग पूरा पानी नहीं पीते, अक्सर छोड़ देते हैं तो वो पानी फिर वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर यही है कि पानी के गिलास छोटे इस्तेमाल किए जाएं, और पानी या कोई भी चीज़ है उतनी ही ली जाए। पानी की ख़ास तौर से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलाके हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं कहीं ना कहीं जहां पर बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है साफ़ पानी को, पीने वाले पानी को हासिल करने के लिए। जो तो हमें मुफ्त में जब कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हम उसका मोल नहीं समझ पाते, अक्सर पानी भी उसमें शामिल है। आप खुद देखते हैं कि शादी ब्याह में जो बॉटल्स का इस्तेमाल अब होने लगा है तो प्यास अक्सर नहीं भी लगती है तो भी पी लेते हैं, कभी कभी केवल एक घूंट पानी पीना होता है, बहुत से लोग उसके में भी उस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बोतल कहीं पर रख के आप यूँ ही रख देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी जागरूकता दिखाते हैं कि उसको अपने पास रखते हैं या उसी से पानी पीते हैं, तो बहुत सारा पानी ऐसे बर्बाद हो जाता है। सिर्फ पानी ही बर्बाद हो रहा है, जिसके हम गए हैं जो मेहमान नवाजी हमारी कर रहा है हम उसके यहाँ भी तो बर्बादी कर रहे हैं ऐसा करके, है ना। कभी ये भी सोचे कि अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा होगा तो शायद हमें बहुत तकलीफ़ होगी देखकर, तो इन चीज़ों का हम तभी ख्याल रख पाएंगे जब हम दूसरों को भी वैसे ही समझेंगे जैसे हम खुद भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें उपदेश ना लगें, हमें करना चाहिए। मुझे याद आ गया इस गाने से तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे। सुल्तान रजा साहब ने लिखा है कि अनवारुल सर आज आपसे एक बात पूछनी थी, आज स्टूडियो में सारे आरजे जो आए हैं वो आ नाम से आए हैं, सुबह आरजे आकांक्षा, आरजे अंजू, 4 बजे आरजे अलका, और आखिर में 9 बजे आरजे अनवारुल। कितने ध्यान से आप लोग सुनते हैं और किस किस एंगल से चीज़ों को देखते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। ये तो हम लोग भी नहीं देख पाते इस तरीके से। अच्छा आपने ध्यान दिलाया है, और इसीलिए आपका एक मेल आ चुका था लेकिन दूसरा मेल आपका मैंने इसीलिए पढ़ भी दिया। तालिब अंसारी साहब आपका भी मेल पढ़ देते हैं। राजा कटरा बाराबंकी साहब ने लिखा है, हेलो सर जी, हाउ आर यू, आपको अच्छा अच्छा इस गर्मी में कूल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं, बस एक हार्ड गर्मी में, भाई वाह, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा तो गर्मी कम लगेगी। वैसे भी गर्मी तभी लगती है जब आप उसको ध्यान करते हैं ना कि बड़ी गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर हम कभी कभी ये बात कहता हूँ कि अगर कभी ठंडक में बहुत ठंडक लग रही है, ये एक बहाने भी होते हैं बात करने के, क्या बात की जाए ठंडक में, जैसे हम लोग मिलते हैं तो आज ठंडक बहुत है, बारिश होगी तो बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है तो हमारी शिकायत ये रहती है कि पानी नहीं बरस रहा है, बताओ फलाना मौसम चल रहा है अब तक तो इतना पानी बरस जाना चाहिए था, और जब बरसना शुरू होता है तो हम लोग की का विषय फिर बदल जाता है, फिर परेशानी होती है कि अरे पानी बरसे चला जा रहा है, तो शायद संतोष नहीं हमारे अंदर, ये सारी दिक्कतें इसलिए भी आती हैं। और हम मौसम को भी चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, हमको घर से बाहर ना निकलना हो तो फिर पानी बरसे, और पानी जैसे ही बरसना शुरू हुआ और आप निकले तो आपको लगेगा अरे अभी बरसना था, तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो, क्योंकि हम भी उसके हिसाब से नहीं चलते हैं।

अगर अब भी चल रहे होते उसी हिसाब से, सूरज के हिसाब से, चांद के हिसाब से, रात के हिसाब से, सुबह के हिसाब से, कभी कभी मजबूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमने इसका अनदेखा भी किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी था तो मैंने करा दिया। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, अरुषि नामदेव, सौम्या नामदेव, विलेज एंड पोस्ट खनौज, अब मैं देखिए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, KHNNOUDHI, खनौडी डिस्ट्रिक्ट शहडोल, MP से आपने लिखा है, मेरा ख्याल मैंने सही पढ़ा होगा, और कह रहे हैं कि कोई भी डांस वाला गाना बजा दीजिए। अब खाना खा लिया हो तो डांस ना करिएगा, देखिए सब बाहर आ जाएगा, गर्मी भी चल रही है, और गर्मी है तो खाना कम खाइए भाई थोड़ा सा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग बचे रहेंगे, सेहत हमारी अच्छी रहेगी। शैलेश कुमार जी, आपका भी मेल आ चुका है, टाइगर शर्मा रूपपुर चंदेला से, यूँ तो मिलते हैं ज़माने में बहुत, लेकिन तेरा मिलना सबसे अच्छा लगे है। अनवारुल भैया को मेरा नमस्कार, भैया गाने कम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बनाते तो बहुत अच्छा, हम इसी तो अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा गाना बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने बनाया था। सारा पीहू, रोशनी, बबीता, अंजू, रिचा, स्नेहा, सोनी, मनु, वंदना, यासिर भैया को मेरा नमस्कार, अलका दीदी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, और आपने समरीन मैडम के लिए लिखा कि वो भी जल्दी आने की कृपा करें। अब देखिए कोशिश सब अपने हिसाब से आते हैं, है ना। विपिन कुमार पांडे जी का भी मेल हम तक पहुंच चुका है, और अमान विहार कॉलोनी लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुड इवनिंग सर, हेलो FM रेनबो 100.7, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको लगता है, और चलिए आपको लगता है कि ये प्रोग्राम यूं ही चलते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो बस यूं ही प्रोग्राम हमेशा चलते रहेंगे, एक बढ़िया सा गाना आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, देखिए आ गया।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

52 मिनट हो चुके हैं 45 सेकंड भी, और आपके बहुत सारे मेल अभी भी बाकी हैं पढ़ने के लिए। ज़िशान खान साहब, आपका भी मेल हम तक पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम ज़िशान खान संडीला से, लेकिन इस वक्त मैं बाहर हूँ, आप वहाँ से आप हमको सुन रहे हैं, आप देश के बाहर हैं और वहाँ भी आप हमारे मेल के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये, और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र दीपन जी, आपका भी मेल आ चुका है, कैसे हैं आप? मैं महेंद्र दीपन, प्यारे गाँव रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से। ये बड़ी प्यारी बात है कि आपने अपने गांव के लिए प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, यानी आपको इतनी मोहब्बत है, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, माटी से जुड़े रहना, ज़मीन तो बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है ये। और कैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपसे मिलकर आपके यहाँ पहुँच कर और भी ज़्यादा खूबसूरती से हम अच्छे हो गए, मतलब खुश हो गए। मुलाकात होती है तो, और आपने एक बड़ा सा पोस्टर बना के भेज दिया है मुझे, लिखा है कि आज मेरे साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ जिसे साझा ये बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। अभी खाना खा रहा था कि अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से हिचकी आने लगी। मैंने खूब पानी पिया और हिचकियाँ रुकने का नाम ले रही थी, तभी अचानक मुझे ध्यान आया और मैंने तुरंत अपना रेडियो ऑन किया, और जैसे ही रेडियो पर आपकी जादुई आवाज़ गूंजी, मेरी हिचकियाँ चुटकियों में गायब हो गई। क्या बात है, हिचकियाँ और चुटकियाँ अच्छे शब्द हैं, कोई शायर सुनेगा तो इसमें शायरी करेगा। तभी मुझे समझ में आया कि खाने के टेबल पर यह हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। मेरी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आपने भेजी है साथ में, और आए हाय खाने की एक प्लेट ही भेज दी, कितना सारा खाना भेज दिया है आपने भाई। और इस वक्त आप नवासारी गुजरात में हैं और वहाँ से हमें सुन रहे हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए और इस खूबसूरत से संदेश के लिए भी जो आपने अभी हमको भेजा है। और जल्दी से मैं और भी मेल पढ़ देता हूँ। शैलेन कुमार जी, आपका भी मेल है। अनवारुल भैया, मैं अच्छा, ये नीलू शर्मा जी ने भेजा है हमें मेल। अनवारुल भैया, मैं एफएम सुन रही हूँ, सभी लोग बता रहे हैं कि मेरे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ आजकल बहुत बर्फ़ गिर रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है, मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ आजकल। अच्छा, आप कहाँ रह रही हैं ये नहीं बताया आपने, है ना? ऐसा होता है वैसे, जैसा सोच लो वैसे ही होता है। हम भी सपने में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, जो देखना होता है सोच के सो जाते हैं, अपना देख लेते हैं, इसी में खुश हो जाते हैं। अनवारुल चाचा सलाम भाई, वाह क्या बात है, चाचा जी बना दिया आपने मुझे। हाँ, कार्यक्रम सुनकर बहुत तो प्यारा लग रहा है, क्योंकि आप उसमें जो खर्राटे नहीं ले रहे थे, हम कुछ और बता रहे थे, लिख रहे हैं कि उसमें आप जो खर्राटे ले रहे हैं ना, वही बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि कहाँ पर किस बात को कैसे बोलना है ये तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी कला है। भाई क्या बात है, मेरी बड़ी अच्छी तारीफ हो रही है आज, मुझे भी सीखनी है, साथ में आपसे मुझे उर्दू भी सीखनी है। चलिए बिल्कुल, मुलाकात करिए बातचीत में, हम कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखा देंगे, उससे ज़्यादा हम सीख लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे सीखना जो है बहुत अच्छा लगता है, और लोगों से मिलना, लोगों से सीखना, लोगों से बात करना, लोगों को पढ़ना, है ना। चिंटू ने एक आदमी चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? तो चिंटू ने कहा, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा है मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। हम बताएं, एक बार सुना था हमने, लेकिन हम हंसेंगे। ठीक है, मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरवा ज़िला लखीमपुर खीरी से भी लिख रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, राम राम कहा है, आपको भी राम राम, और हर घंटे आप लगातार इसको सुनते रहते हैं, और सुबह से शाम बज रहे गाने कमाल, आरजे की बातें सुनकर हो जाएं सब निहाल, रेनबो कैफे का अपना ही जलवा है, सुनने वाले बोले वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। भैया मोनू से आपने केवल इतना लिखा है, बढ़िया ज़बरदस्त, और चार ठो फूल भेज दिए। चलो अच्छा है, गर्मी में आपने फूल भेजे, हम कोशिश करेंगे, मुरझाए ना, पानी डालते रहेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिया नवाजुल सर जी, कैसे हैं आप? अजय कुमार, अजय सिंह जी ने हमें मेल लिखा है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अभी घर पहुंचे हैं, तुरंत आपको मेल किया, अभी कपड़े नहीं उतार, अब कपड़े ना उतारिएगा, देखिए लिख दिया अभी कपड़े नहीं उतारे हैं, अभी हमको क्यों बता रहे हैं आप? आपसे लगाव है सर, आज आप गुड मॉर्निंग, अच्छा आज आप गुड मॉर्निंग वाली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं ये गुड इवनिंग वाली बातें हैं ये, है ना, गुड मॉर्निंग भी करते हैं सर। टाइम से डिनर करके अच्छे प्रोग्राम पेश कीजिए, पानी पीते रहिए, और हम 12 बजे तक आपके साथ हैं। हमें कहाँ मिल रहा है कुछ खाने वाने को, चलिए कोई बात नहीं, खाने की बात मत करिए। देखिए अब जो महेंद्र दीपन जी ने थाली भेजी है, बस उसी से काम चलाएंगे, जल्दी से दो मेल और पढ़ देते हैं। अब मेल करना बंद कर दीजिएगा, देखिए इसके बाद तेज बहादुर यादव जी, आपका भी मेल हम तक पहुंच चुका है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, और मैं आप 12 बजे तक साथ रहने वाले हैं, मऊ शर्की ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं, और गुरुग्राम में आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अतुल कुमार जी, आपका ये अंतिम मेल है, आपने लिखा है कि इसमें लास्ट में भी शामिल कर लो, तो लीजिए हमें लास्ट में शामिल कर लिया, और मनोज विश्वकर्मा जी आपको

शुक्रिया कि आपने जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से हमें ये मेल किया है। जल्दी से गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद रजनीगंधा की खुशबू महकेगी जब 10 बजे लौटेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए और एक गाना हम बजा के जाते हैं, यूं गए यूं आए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर, कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, बल्कि ये देश के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने और राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र माध्यम है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब न्यायपालिका में भी दिखाई देने लगा है। आज सहारनपुर में अपर जिला जज विकास गुप्ता ऑफिसर कॉलोनी स्थित आवास से साइकिल चलाकर न्यायालय पहुंचे। न्यायालय परिसर में उनकी पहल की अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों ने सराहना की। लोगों का कहना है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के प्रति जागरूक हैं। अपर जिला जज ने इस पहल से लोगों को अनावश्यक पेट्रोल डीजल की खपत करने, कम करने और प्रदूषण मुक्त वातावरण के प्रति जागरूक किया है। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जिला पंचायत सभागार में आगामी पर्व के दृष्टिगत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं व वरिष्ठ नागरिकों एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में उपस्थित सभी लोगों से मिलजुल कर रहने तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मनाने एवं आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। जैसे रंगों की खूबसूरती दिल को छू जाती है, वैसे ही मोहब्बत की गहराई जिंदगी को रंगीन बना देती है। हर रंग एक कहानी कहता है, हर पल एक याद बन जाता है। मोहब्बत का ये रंगीन सफर हमें जिंदगी के हर पल को खूबसूरती से जीने का सलीका भी सिखाता है, सबक भी देता है। तो क्यों ना इसी सफर में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे रंग हैं मोहब्बत के, जो झलकेंगे, ढलकेंगे, छलकेंगे और बिखर भी जाएंगे, और इन रंगों को संभालने की जिम्मेदारी रजनीगंधा में आज आपके दोस्त अनवारुल हसन के ऊपर है। हम रहेंगे आपके साथ, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर आपको नींद आ जाए तो नींद के आगोश में चले जाइएगा। फिलहाल स्वागत है सफर में, नमस्कार।

वो आएंगे और चांदनी रात होगी, न ये बात होगी न वो बात होगी, कटी उम्र सारी इसी कश्मकश में, अगर वो मिलेंगे

वो आएंगे और चांदनी रात होगी, ना ये बात होगी ना वो बात होगी, कटी उम्र सारी इसी कश्मकश में, अगर वो मिलेंगे तो क्या बात होगी। तो जरूरी ही क्या है कि कुछ बात की जाए। थोड़ी दूर से देखते रहिएगा उन्हें, अगर लफ्ज कम पड़ते हैं ना कभी कभी तो फिर बातें करती हैं आंखें, तो उन आंखों को बातें करने दीजिए। आपको मुश्किल भी नहीं होगी, आराम से बहुत सारी चीजें यूं ही हल हो जाएंगी। रस्ते में मिल गया था जो बाका सराहजन, वो किस खुलूस से मेरा दमसाज हो गया, इतना निडर तो दिल मेरा पहले कभी न था, तेरी गली में आके नजरबाज हो गया। तो इन आंखों को बातें करने दीजिए, ऐसे ही चुपके चुपके।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।
1: लहराते हुए बलखाते हुए एक रास्ता है हमारी आंखों से गुजर कर जो दिल के चोर दरवाजे तक जाता है, और यहीं अगर आपका बसेरा हो गया तो फिर शायद जिंदगी आसान हो जाए। आंखों से उतर कर दिल में समा जाते हैं और बहुत सारे लम्हे काफी कुछ सिखा भी जाते हैं। तुमसे मिलने का वो पहला लम्हा अभी भी याद है, वैसे ही उसी एहसास के साथ तुम्हारी मुस्कुराहट ने खामोशियों को भी शायरी में बदल दिया था। अब तुम जब भी देखती हो तो हर रात रोशन हो जाती है, मगर मैं वैसे ही चुपचाप सब कुछ देखता रहता हूँ, महसूस करता रहता हूँ। तुम्हारी बातें, छोटी छोटी सी वो अदाएं, सब कुछ मेरे ख्वाबों में अभी भी, मेरी यादों में अभी भी वैसे ही महफूज है। कभी कभी सोचता हूं शायद लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी जो नजर है वो सब कुछ महसूस करा देती है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी आंखों का एक छोटा सा कोना, जहां से एक पुरानी सी तस्वीर झलकती है कभी कभी एक चमक के साथ। और जब इस तरह की बातें आए मन में, इस तरह के ख्याल आए, तो इसका मतलब यह भी होता है कि शायद मोहब्बत जवां हो रही है। कभी कभी डरते हैं, छुपाते हैं जमाने की नजर से, और कभी कभी कहा जाता है कि क्यों छुपाएं, सच तो छुपता ही नहीं है। इश्क और मुश्क कहते हैं कि छुपाए नहीं छुपते, लोगों को पता चल ही जाता है। तो फिर जो चर्चे चले हैं जमाने में, चलने दीजिए, लोग कुछ कह रहे हैं तो कहने दीजिए ना उन्हें, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है तो छुपाना कैसा। 10:21 हो चुके हैं, रजनीगंधा की खुशबू मोहब्बत की गलियों में गुलजार कर रहा है आपका दोस्त जी हाँ, अनवारुल हसन।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

मुद्दत के बाद उसने लिखा मेरे नाम खत, मुद्दत के बाद उसने लिखा मेरे नाम खत, मेरी शिकायतों से भरा है तमाम खत। घबराना इस कदर दिले बेताब सब्र कर, आता है कोई रोज में अब सुबह शाम खत। लिखा हुआ है खास तुम्हारे ही हाथ का, पहचानता हूं खूब तुम्हारा गुलाम खत। तहरीर उनकी सीनों पे रख दीजिए मेरे, बदले जवाब नामा के आएगा काम खत। खत लिख के आज डाक पे पहुंचेंगे यार को, खत लिख के आज डाक पे पहुंचेंगे यार को, पहुंचाएगा हमारा पयामो सलाम खत, पहुंचाएगा हमारा पयामो सलाम खत।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।

0: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स।

और कभी आप ये सोचते भी होंगे कि ये खूबसूरत सा जो मोहब्बत भरा एहसास है ये इतना खूबसूरत और क्यों हो जाता है वक्त ढलते ढलते शाम को या कभी कभी इन पलों में जब थोड़ी सी रात गहराती है, क्यों खूबसूरत लगती है इतनी शामें? शायद इसलिए भी कि दिन भर की भाग दौड़ थम जाती है, शायद इसलिए भी कि हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका भी मिलता है। बहुत आराम से बैठकर कभी कभी चाय की चुस्कियों के साथ, कभी खाना वाना खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ, और फिर वो बातें याद आती हैं, वो मोहब्बत वाली शामें भी याद आती हैं जब दिल धड़कता था किसी एक नज़र के इंतज़ार में भी कभी कभी। तो शाम का तो ऐसा ही एहसास होता है, एक खूबसूरत सा ठहराव होता है वो पल जब जिंदगी थम कर मुस्कुराती है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी उलझनों से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी उलझन में हैं तो थोड़ी सी खिड़कियाँ खोलकर, और ये जो खिड़कियों की बात कर रहा हूँ ना, ये खिड़कियाँ ख़ास तौर से जो हम अपने मन की बंद कर लेते हैं, अपनी सोच समझ की बंद कर लेते हैं, अगर ये खुल जाए ना धीरे धीरे और वो खूबसूरत सी साफ सुथरी सी ताज़ी ताज़ी सी हवाएं अंदर आएं, तो वो ख्याल भी जाग जाएं जो हमने कहीं दफन कर लिए हैं। और फिर कुछ ऐसे ख्याल भी जो आपको गुदगुदाते हैं, उनके बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए जिनको भुला दिया है, उनके बारे में भी जिनसे कभी कभी मुलाकातें हुआ करती थी। ज़रूरी नहीं कि हर मुलाकात का जो अंजाम है वो बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन यादें तो खूबसूरत होती ही हैं, कभी कभी कुछ ऐसी भी। जैसा गाना हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, 10:50 हो चुके हैं, मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ, आप सुन रहे हैं रजनीकंधा 107.7 FM रेनबो पर।

मन में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत सी बातें उसके बाद भी रह गईं। कभी कभी कह नहीं पाए, वक्त गुजरता चला गया। तो कहते हैं कि गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना, बस मुझसे कहना। जो राज है दिल के कोने में छुपा, वो राज ना बांटना किसी और से, सिर्फ मुझसे कहना। और अगर नहीं कह पाए कुछ बातें, तो फिर जब अकेले होते हैं आप, तो कभी कभी तो कुछ बातें याद आती ही हैं कि काश तब ये किया होता, यू कह दिया होता, ये बात हमने कह दी होती। जाते जाते किसी को पलट कर रोक लिया होता शायद। तो ऐसा नहीं कर पाए तो वो चीजें जो परेशान करती हैं, वो परेशानी आखिर कहां तक ले जा सकती है? और जब वो परेशानियां पैदा होती हैं तो क्या होता है? समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:56 हो चुके हैं और हमेशा की तरह मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। हाँ, हम लौटेंगे समाचारों के बाद, क्योंकि रजनीकंधा का ये सफर जारी रहेगा जिसे आज आप सुन रहे हैं अनवारुल हसन के साथ।

नमस्कार, रात के 11 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद आम जन के जीवन, किसान हितों और सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। आगामी बकरीद पर्व, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अमरोहा के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन गौड़ व पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा शिकायतों को सुना गया। समाधान दिवस के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतों का मौके पर ही अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के उचित, गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जन सुनवाई के दौरान कुछ प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। फिरोजाबाद में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आगरा के दो अभियुक्तों की 37 लाख से अधिक की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में अभियुक्त प्रदीप कुमार की अचल संपत्ति व अभियुक्त गौरव सिंह की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

बहुत से ख्याल, बहुत सी बातें मन के अंदर पैदा होती हैं और कभी कभी किसी को सुनाई नहीं पाती। बाहर आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं दिल की दीवारों के पास ही कहीं। और इसीलिए कहते हैं कि गैरों से मत कहना मन की बात। मैं कहता हूं तुम मुझसे कहना हर बात। जो राज है दिल के कोने में छुपा, वो राज न बांटना किसी और से, लेकिन मेरे कंधे पर सर रखकर सुना देना मुझे। तुम्हारी आहें, तुम्हारी फरियादें, सब कुछ। जिंदगी की इस भाग दौड़ में कई साए हैं जो बस सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन मैं वो दोस्त हूं जो हर बात को दिल में समेट लेता हूं। तो आज रात ही अगर वक्त मिले, दिल के खाली कोने में कुछ जज्बात हो तो उंडेल दीजिएगा। रजनीगंधा में मैं हूं आपके साथ, आपका दर्दमंद दोस्त, जी हां, अनवारुल हसन।

मोहब्बतों में था जो वो खुमार जाता रहा, बुरा ना मान मगर एतबार जाता रहा। और जब एतबार टूट जाता है तो कुछ नहीं बचता, क्योंकि उम्मीदें भी फना हो जाती हैं। कभी सोचा है चीजें कितनी बदल जाती हैं, किस तरह से फिर हमें अकेले कदम बढ़ाना होता है हर मोड़ पर। कभी खुशियां होती हैं, कभी कुछ छिन जाने की तलब भी होती है। और अकेले में जब आपको अपने ही साए बड़े लगने लगते हैं तो दिल पूछता है कि रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगे, कोई ऐसा मोड़ तो नहीं आएगा जहां अकेले बढ़ जाओगे आगे। कसमें तो बहुत खाई थी साथ निभाने की, साथ चलने की, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं बार बार।

आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर तय हुआ है मिलने का, आज फिर मुझको टालने आना, मुझको गिरने दो पहले चलने से, शौक से फिर संभालने आना। मेरी आंखों में फैले सहरा से थोड़े आंसू निकालने आना, रंग चेहरे का उड़ गया है मेरे, रंग चाहत का डालने आना। मेरे अंदर का जब मरे पंछी लेके पिंजरा तू पालने आना, मैंने इज्जत बहुत कमा ली है, मेरी पगड़ी उछालने आना। खाक हो जाऊं देख मैं जिस दिन, खाक पे खाक डालने आना, लेकिन आना जरूर।

आओ बिछड़ने से पहले एक बार वादा कर लें, दिल की धड़कनों में खोकर आंखों में बसा कर ये लम्हा। आओ बिछड़ने से पहले एक बार फिर ये वादा कर लें। जिंदगी की राहों में चाहे तूफान आए या सन्नाटा, तुम्हारी यादों का सायबान रहेगा ये कसम खा लें। दूरियां तो बस एक बहाना है, दिल से दिल का सफर कभी न रुके न कभी रुकेगा।

हर शाम तुम्हारी ही बातों, तुम्हारी ही ख्वाबों को सजाएंगे, और ये इकरार भी हो जाए कि फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, कभी ख्वाबों में कभी ख्यालों में। कुछ रास्ते कभी जुदा नहीं होते, आप नहीं होते तो भी आपके पांव के निशान वहां जरूर मौजूद होते हैं, भले ही वो साफ दिखाई ना दे, लेकिन जिंदगी की जो धूल है वो उन्हें धुंधलाने नहीं देती, वो वहां महफूज रहते हैं, उन्हें महसूस करना पड़ता है, वैसे ही जैसे हम फंसे हैं आपके साथ, आपकी मोहब्बत में। 11:34 हो चुके हैं, रजनीगंधा और उसमें छुपे हुए कुछ एहसास झलक उठे हैं आज आपके दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन के साथ। यही रहेंगे हम हमेशा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: दक्कन लखनऊ की।
1: हर शाम उनकी याद के बादल घिराएंगे, हम भीगने से खुद को कहां तक बचाएंगे। शाम होते ही दिल की दहलीज पर आकर बैठ जाती है तुम्हारी याद, वो साया जो आज तक शायद वही महफूज है। तुम तो चले गए लेकिन वो साया गया नहीं है कभी। हर शाम यही ख्याल आता है कि अगर तुम ऐसे ना जाते, अगर ये जुदाई इतनी तेज ना होती तो शायद आज भी तुम्हारी आवाज मेरी सांसों में गूंज रही होती। शहर तो भरा है रोशनी से लेकिन अंदर सन्नाटा है और कभी कभी अंधेरा भी। यादों के इन पलों में दर्द एक अजीब सी आदत बन जाता है अक्सर, और जब तुम्हारी याद आती है तो यादों से ये और भी ज्यादा रोशन हो जाता है। लेकिन रुकता नहीं है कहीं। अक्सर मैं ये भी कहता हूं कि यादें अजाब होती हैं, यादें अजाब होती हैं, सब भूल जाइए, इस जिंदगी में कौन मिला कौन खो गया।

दुनिया है, जिंदगी है और बहुत सारे रिश्ते हैं, तो कभी भी जब मन उकताए तो उनकी तरफ देखिए जो अपनी बंद आंखों से खुशियां तलाशते हैं, कुछ सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसलिए जिंदगी में खुशहाल जो है वो जिंदगी कैसे बने, बस इस जद्दोजहद में रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनों की आंखों के उन सपनों को पूरा करने की फिराक में आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाएगी। इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में राहत आयुक्त कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित तथा जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है, इसलिए चेतावनी तंत्र को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रयागराज में अखिल भारतीय साहित्य परिषद काशी प्रांत की ओर से राष्ट्र साधना के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जिला पंचायत सभागार में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमंत्रित कवियों ने राष्ट्र प्रेम और त्याग की कविताओं में समा बांध दिया। कवि अभय निर्भीक ने त्याग तपस्या ज्ञान संघ है, क्षमता का उत्थान संघ है, मातृभूमि को सदा पूजता भारत का सम्मान संघ है के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की पंक्तियां पढ़ी। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:15 पर और सूर्यास्त 6:50 पर होगा। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात के 12:02 हो रहे हैं। हमारी ये सभा अब सम्पन्न होती है।